सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। इसमें स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हुए हैं। हम उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है गांधी विचार।
1: महात्मा गांधी किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है, और कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से नहीं बल्कि अपने विचारों से ही महान होता है। गांधी जी के विचारधाराओं ने उन संस्थानों और प्रथाओं के निर्माण को आकार दिया है जहां निरपेक्ष और निष्पक्ष रूप से हर किसी की आवाज और दृष्टिकोण को व्यक्त किया जा सकता है, परखा जा सकता है और रूपांतरित किया जा सकता है। गांधी जी सिद्धांतों को प्रतिपादित ही नहीं करते थे बल्कि स्वयं उसका अनुसरण भी करते थे। उन्होंने अपने जीवन में एकादश व्रत का संकल्प लिया था जो उनके निरपेक्षता और निष्पक्षता के आधारशिला पर टिका था, और इनके दो मुख्य स्तंभ

0: सत्य और अहिंसा है। आज वर्तमान युग में जब हर व्यक्ति अपने अहंकार, स्वार्थ और पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो रहा है और निरपेक्षता का अस्तित्व विलुप्त हो रहा है, ऐसे में गांधी जी की विचारधारा गहराते अंधियारे के बीच एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो हमें निरपेक्षता या निष्पक्षता का महत्व समझाती है। गांधी जी सत्य के दो रूप मानते हैं, एक सापेक्ष सत्य और दूसरा निरपेक्ष सत्य। गांधी जी के अनुसार समय या परिस्थिति विशेष में अंतरात्मा की आवाज ही सापेक्ष सत्य है, परंतु निरपेक्ष सत्य ईश्वर या परमात्मा है जिसे कोई मनुष्य पूरी तरह से समझ नहीं सकता, जबकि सापेक्ष सत्य वह है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव, तर्क और नैतिक विकास के आधार पर अनुभव करता है। महात्मा गांधी जी के विचार में ईश्वर और ईश्वर के नियम अलग अलग नहीं है, बल्कि ईश्वर ही नियम है। उनके अनुसार निरपेक्ष सत्य का यह सिद्धांत कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, सार्वभौमिक और निर्विवाद रूप से सर्वत्र मान्य है। उनके लिए निरपेक्षता का अर्थ था सत्य के प्रति संपूर्ण समर्पण। गांधी जी के अनुसार जिस प्रकार सत्य से बढ़कर कोई आदर्श नहीं हो सकता, उसी प्रकार अहिंसा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति या जीव के प्रति निरपेक्ष रहना ही अहिंसा है, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना और सभी के प्रति प्रेम भाव रखना ही अहिंसा है। जब तक हम किसी के लिए द्वेष भाव रखते हैं, तब तक हम निष्पक्ष नहीं रह सकते। उनके अनुसार निष्पक्षता के लिए परहित अर्थात दूसरों के कल्याण की भावना का होना आवश्यक है। गांधी जी ने निरपेक्षता के जिस अवधारणा का अनुसरण किया, वह नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक अनुशासनों के अनुरूप है, जिसका मूल तत्व प्रेम है, अर्थात हर व्यक्ति की भावना के साथ एक रूपता। इस दृष्टि से भौतिक वस्तुओं और संपत्ति के संबंध में उनका विचार इस बात का पक्षधर था कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों का बल्कि हर संपत्ति का न्यासी है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्तियों और संपत्तियों का स्वयं के लिए ही उपयोग करना नहीं है, बल्कि निरपेक्ष और निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए, अर्थात असंग्रह की भावना होनी चाहिए। व्यापक अर्थ में अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और अतिरिक्त धन का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए करना चाहिए। गांधी जी भौतिकता में भी निरपेक्षता के सिद्धांत को मानते थे। उनका मानना था जब सभी परमेश्वर की देन है, अतः उनको प्रसाद के रूप में उपयोग करना चाहिए, निजी मिल्कियत समझकर नहीं, और शेष हमें भगवान और समाज की जरूरतमंदों को अर्पित करना चाहिए। गांधी जी का यह भी मानना था कि जब हम त्याग की प्रवृत्ति से भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तभी हम निरपेक्ष हो सकते हैं। गांधी जी सभी धर्मों के प्रति समभाव रखते। गांधी जी के अनुसार मेरे लिए नैतिकता, सदाचार और धर्म पर्यायवाची है, जिसके बिना जीवन बालू के रेत पर बनाए गए मकान के समान है। उनकी दृष्टि में मानवीयता का सबसे बड़ा धर्म था। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा का पालन करने पर ही मानवता को कायम रखा जा सकता है। और
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गांधी विचार। अब कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिए पशुओं में परजीवी विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता।
2: किसान भाइयों नमस्कार। कुछ बाह्य परजीवी ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपके पशुओं को, पशुओं के शरीर पर ये रहते हैं और उनसे नुकसान भी होता है। देश के प्रायः सभी भागों में जू और किलनिया पशुओं की बाह्य त्वचा पर परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। ये परजीवी पशुओं का रक्त पीकर अपना जीवन पूरा करते हैं। ये वर्ष भर पशुओं की त्वचा पर रह सकते हैं। यह परजीवी पशुओं के शरीर में रक्तहीनता, शारीरिक कमजोरी, त्वचा में खुजली आदि पैदा करते हैं। इनके अतिरिक्त यह कुछ घातक रोग जैसे रक्त परजीवी रोग, बेबसियोसिस, एन प्लाज्मोसिस, थाइलेरियोसिस

0: एस्पाइरोकीटोसिस तथा रिकेटिसिया और अन्य वायरल या कीटाणुओं से पैदा होने वाले रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इनको पशुओं से दूर रखा जाए, यानी कि पशु इन जू और किलनियों से प्रभावित नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, इसका उपाय हम करें। पशु की त्वचा और बालों में चिपके हुए सफ़ेद और काली प्रौढ़ जुगों को आसानी से आप देख सकते हैं। पीठ, गर्दन, पेट तथा पूंछ के नीचे यह जुएं खास तौर पर पशुओं में देखी जाती है। जू अपना पूरा जीवन चक्र पशु शरीर पर ही पूरा करती है और जीवन चक्र में 2 से 4 सप्ताह का समय लगता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा एक पशु से दूसरे पशु तक जू सीधे संपर्क या पशुओं के काम आने वाले कपड़ों और अन्य सामान के द्वारा पहुंचती है। इनके होने पर त्वचा में खुजली, शारीरिक भार में भी कमी, रक्त में और दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा में कमी पाई जाती है, ये सब लक्षण जुगों के कारण पशुओं में दिखे जाते हैं। अब आइए किलनियों की बात करें तो पशुओं के शरीर पर काली या गहरे बादामी रंग की किलनियाँ मजबूती से चिपकी हुई दिखी जा सकती हैं। अधिकतर ये पेट, दोनों जांघों के मध्य भाग, कान तथा पूंछ के नीचे चिपकी रहती हैं। किलनियाँ नमीयुक्त अंधेरे स्थानों में छिपी रहती हैं। मादा किलनी हजारों की संख्या में जमीन पर अंडे देती हैं, जिनसे कुछ ही दिनों में बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे भी अपना भोजन पशु की त्वचा पर पाते हैं और पशुओं का ही रक्त चूसते हैं। कुछ समय बाद त्वचा छोड़कर जमीन पर आ जाते हैं, जहां निर्मोचन के बाद प्रौढ़ बनते हैं। किलनी अपना जीवन चक्र 2 या 3 माह में पूरा करती हैं। किलनियाँ जुओं की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण घातक रोगों को पशु रोगों से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचाने में ये कारगर होती हैं। जुओं तथा किलनियों को दूर करने के लिए कुछ औषधियों को प्रयोग में लाया जाता है, परंतु ये औषधियाँ विषैली होती हैं, अतः इनका प्रयोग उचित मात्रा में तथा सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि आँख, कान, नाक और मुँह पर दवाई न लगे तथा पशु दवाई को चाट न सके। दवाई का पुनः प्रयोग आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर ही करना चाहिए। दवाओं में मुख्य है ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड 0.1% से 0.2% घोल को डीप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। रोटिनोन 0.5% की मात्रा 2 से 4 आउंस प्रति गैलन पानी में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। पाइरेथ्रम बेरोक्साइड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं।
1: पशुओं में परजीवी, इस विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब हिंदी में समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
3: The topic for the Governing Council meeting.
4: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में

0: विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देश गान।

ईश्वर को व्रत और चढ़ावे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ईश्वर की सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में है।

राधा कृष्ण का प्रेम केवल मिलन नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन निस्वार्थ भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है।

हम सुख में मगन रहते हैं, लेकिन जब विपत्तियों से घिर जाते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं और बार बार यही कहते हैं, नाथ मोहे अब की बेरो बारो।

श्रोताओ, इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से पाठ, मुख्य सर ए हरि हरन और साथियों का है।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद

दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर ए हरि हरण और साथियों का था। अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिए टीबी के लक्षण और प्रकार विषय पर डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से भेंट वार्ता। भेंट करते हैं अनिल कुमार तिवारी।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का नमस्कार। आज के हमारे मेहमान हैं पटना के जाने माने जनरल फिजिशियन और टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी साहब, और हम इनसे बातें करेंगे टीबी के लक्षण और उसके प्रकार के बारे में। तो डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति कब ये समझे कि उसको यक्ष्मा का संक्रमण हो गया है और उसको इस मुतल्लिक चिकित्सक से मिलने की जरूरत है?
2: यदि किसी भी व्यक्ति को 2 सप्ताह से ज्यादा की खांसी हो रही है, उसे बलगम की जाँच अवश्य करानी चाहिए, जो हर एक निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कमजोरी लग रही है, वजन घट रहा है, खांसी में लालीपन आ रही है, ब्लड आ रहा है, या सीने में दर्द हो रहा है, कमजोरी बहुत महसूस हो रही है, ऐसी स्थिति में भी फेफड़े की टीबी से यह संबंधित हो सकता है। इसके अलावा दूसरे अंगों की टीबी, जैसे पेट का टीबी यदि होता है, तो उसे उसकी पाचन प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, पेट में गैस बहुत होता है और भूख नहीं लगती है, वजन की कमी होती है। अगर किसी को मस्तिष्क का टीबी होता है, तो उसे सर में तेज दर्द होता है, हल्का शाम के शाम जाड़ा बुखार आता है। टीबी के बीमारी और बुखार के बारे में एक विशेष इस तरह की बुखार होती है कि शाम के शाम आती है और हल्की रहती है, बहुत ज़्यादा तीव्र बुखार नहीं आती है जाड़ा देकर के। तो ये हल्की बुखार यदि शाम में रहे, शाम के शाम, और आपको कमजोरी लगने लगे, भूख की कमी हो जाए, वजन घटने लगे, सीने में दर्द हो जाए, सर में दर्द है तेज, पेट में दर्द है, अपच है, तो आप टीबी की जांच अवश्य करा लें।
1: अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं खांसी होना, तो जो सामान्य खांसी है और या टीबी की खांसी है, इस दोनों में क्या कोई मरीज फर्क कर सकता है, समझ सकता है कि हाँ उसको ये सामान्य खांसी नहीं है, ये ट्यूबरकुलोसिस की खांसी हो सकती है?
2: ये बताया गया है कि चूंकि हमारे यहाँ टीबी एंडेमिक है, बहुत लोगों में टीबी है, और साथ ही साथ टीबी को कंट्रोल करने के लिए 2025 तक की हमारे प्रधानमंत्री ने भी और जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उन लोगों ने भी संकल्प किया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति, इसलिए ये कहा गया है कि 2 सप्ताह से ज्यादा की खांसी

0: किसी भी व्यक्ति को है तो उसे टीबी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। लेकिन जो खांसी टीबी की होती है और जो अन्य खांसियां होती हैं, जैसे कि जिसको दम फूलने के साथ खांसी होती है, एस्थमा की खांसी कहते हैं, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो लंग्स को सिकुड़ने के कारण से सांस लेने में तकलीफ होती है और खांसी होती है, उन सबों में और टीबी की खांसी में थोड़ा अंतर होता है। टीबी की खांसी में सूखी खांसी प्रायः होती है, और जो बलगम आते हैं उन लाली पर भी कभी आ सकते हैं अगर वहाँ पर घाव हो जाते हैं, या एक्सरे के अंदर भी बहुत डिस्टिंक्ट उसके अंदर के लीजन्स घाव आते हैं। जब दम्मे की खांसी होती है उसमें एक वी साउंड हम लोग कहते हैं, सू सू की आवाज आती है खांसने के वक्त, और उसमें दम फूलने लगता है। और उसमें क्या होता है कि जब आप इन्हेलर लेते हैं तो तुरंत आराम मिलता है, जबकि टीबी की खांसी में यदि इन्हेलर लेते हैं तो उससे कोई आराम खास नहीं मिलती है। तो इस तरह से डिफरेंट खांसियों के प्रकार को देखते हुए, स्टेथोस्कोप से आला से उसकी आवाज को सुनते हुए ये महसूस किया जा सकता है, पकड़ में लाया जा सकता है, ये टीबी की खांसी हो रही है और या इसे सीओपीडी या फिर अस्थमा की खांसी है। और आला में जो टीबी की खांसी है उसमें क्रिप्स आते हैं, जैसे पत्ता रगड़ाता है उस तरह से भी आवाज आती है आले में, और जबकि अस्थमा की खांसी होती है तो उसमें सू सू करके उस तरह की आवाज आती है। तो इस तरह से हम लोग अंतर सामान्यतः खांसी के पैटर्न पर भी कर पाते हैं कि ये टीबी की खांसी है कि अन्य खांसी है।
1: डॉक्टर साहब, आपने जैसे फेफड़े में यक्ष्मा का संक्रमण हो, मस्तिष्क में यक्ष्मा का संक्रमण हो, या पाचन क्रिया में यक्ष्मा के संक्रमण के बारे में तो बातें बताई, हड्डियों में भी इसका संक्रमण होता है, उसके बारे में जरा हमारे सुनने वालों को बताएं आप।
0: जी, सामान्यतः जो रीढ़ की हड्डियां हैं उसको स्पाइनल बोन्स जो होते हैं, तो उसमें भी कभी कभी टीबी के कीटाणु अपना स्थान बैठा लेते हैं, और वो जब व्यक्ति को रीढ़ की हड्डियों की टीबी हो जाती है तो उसे कमर में बहुत तेज दर्द होता है, पीछे रीढ़ की हड्डियों में, सोते समय विशेषकर रात में बहुत तेज उसे दर्द होती है, करवट लेने में परेशानी होने लगती है, शाम के शाम उसमें भी हल्की फीवर आती है, कमजोरी लगती है, वजन का घटना होता है। और ऐसी स्थिति और रीढ़ में दर्द हो रहा है लगातार, तो उसे टेस्ट करा लेना चाहिए, और जब उसकी जांच होती है, एक्सरे होता है या फिर एमआरआई होती है, तो रीढ़ की हड्डियों में देखा जाता है कि उस पर टीबी के कीटाणु उसे इफेक्ट कर रहे हैं, वो स्पष्ट फोटो में आ जाता है।
1: तो डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी साहब, आपने टीबी के लक्षण और उसके प्रकार के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: टीबी के लक्षण और प्रकार, इस विषय पर डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से भेंट वार्ता भी आप सुन रहे थे। भेंट करता थे अनिल कुमार तिवारी। इसके साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल के अंतर्गत आप जानेंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और योग हमारे जीवन शैली में कितना जरूरी है। साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत संजीव अभ्यंकर का गायन और 10:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत शोभना राव की आवाज़ में चंद गज़लें।

बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनते हैं दोपहर 12 बजे। आज सुनिएगा मीना मिश्रा की आवाज में कुछ मैथिली लोकगीत। आज दोपहर 12:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर आनंद कुमार से जानेंगे हृदय रोग में बरती जाने वाली सावधानियों और समाधान के बारे में।

0: शाम 5:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। रात 8 बजे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम जनविश्वास। रात 9:30 पर शब्द शिल्प और रात 10 बजे थीम पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज की रात, और फिल्म संगीत का आनंद लेंगे रात 10:30 से। श्रोताओ, ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वं अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जाक्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85th नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत्

0: कृषि कृषक कल्याण मन्त्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैलबीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य सम्बद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा

0: सभा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हालचाल के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आज के दिन का इतिहास और योग हमारे जीवन शैली में कितना ज़रूरी होता है, और कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। श्रोताओं, सबसे पहले जानिए आज के दिन का इतिहास। आज 12 जून है। 12 जून का इतिहास भारत और दुनिया की कई प्रमुख घटनाओं से जुड़ा है। हम यहाँ कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। 1964 में दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेता और रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेल्सन मंडेला को सरकार के खिलाफ साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1965 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने उनका निर्वाचन रद्द किया था। वहीं 1981 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग बनाम वर्जीनिया मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अंतर्राज्यीय विवाह पर रोक लगाने वाले राज्य कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस उपलक्ष्य में अमेरिका में हर साल राष्ट्रीय प्रेम दिवस मनाया जाता है। 1990 में रूस की संसद ने खुद को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। तब से हर साल 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है। वहीं कुछ प्रमुख हस्तियों का जन्म और निधन की बात करें तो 1929 में एनी फ्रैंक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी अत्याचारों का शिकार हुई और अपनी प्रसिद्ध डायरी लिखने वाली डायरिस्ट बनी। उनका जन्म 1919

29 मई आज ही के दिन हुआ था। 1957 में जावेद मियांदाद, जो पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और कप्तान थे, उनका जन्म हुआ। वहीं निधन की बात करें तो 1972 में दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, महात्मा गांधी के जीवन पर 8 खंडों का विस्तृत ग्रंथ लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक थे, उनका निधन आज ही के दिन हुआ। वहीं आज वैश्विक दिवस की बात करें तो आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बच्चों को बाल श्रम से बचाने और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे कि योग हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, शारीरिक और मानसिक संतुलन, तनाव मुक्त जीवन और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे जीवन शैली को सुधारकर हमें ऊर्जावान बनाता है और बीमारियों से भी बचाता है। नियमित योग अभ्यास से तनाव हार्मोन यानी कोर्टिसोल कम होता है, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही विभिन्न आसन शरीर को मजबूत

लचीला और निरोगी बनाते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की जकड़न दूर होती है। प्राणायाम और योग मुद्राएं फेफड़ों की कार्यप्रणाली को सुधारती है और पाचन तंत्र को मजबूत करती है। ध्यान और योग से मानसिक सतर्कता बढ़ती है, जो काम और पढ़ाई में फोकस करने में मददगार होता है। लेकिन बात यह होती है कि हम हर रोज रात में ये सोच कर सोते हैं कि सुबह उठकर योग करना है, लेकिन कर नहीं पाते। दरअसल बात यह होती है कि हम एक ही दिन में बहुत सारा आसन ना करके 10 से 15 मिनट से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सुबह का समय बेहतर होता है, शांति रहती है और शरीर में ऊर्जा होता है। ऊर्जा बने रहने के लिए आप योग ज़रूर करें। साथ ही आप जब अपने ऑफिस या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हों, ऑफिस में काम कर रहे हों, तो बीच बीच में कुछ आसन को कर सकते हैं, जो बैठे बैठे किया जा सकता है। तो इस तरह से अपने जीवन शैली में योग को शामिल कर सकते हैं।

सात समंदर पार। इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। ये थे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही कार्यक्रम हाल चाल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता आइए सुनते हैं बच्चा नसीम कौसर और साथियों की आवाज़ों में कव्वाली।

इतना बड़ा सवाब, तारीफ इसकी करती है अल्लाह की किताब। ऐ मोमिनो ये रोजा शरीयत का फूल है, हुस्ने रसूल पाक है, सब्रे बतूल है। रोजा से प्यार करते थे अस्हाबे मुस्तफा, रोजा से प्यार सारे बुजुर्गों ने भी किया।

बच्चा नसीम, कौसर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे बज़्म में कव्वाली। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए संजीव अभ्यंकर का शास्त्रीय गायन राग भैरव। विलंबित रचना एक ताल में बोल है आनंदेश्वर, मध्यलय तीन ताल में निबद्ध है, बोल है हर हर हर।

0: संजीव अभ्यंकर का शास्त्रीय गायन अभी आप सुन रहे थे, राग भैरव। विलंबित रचना एक ताल, बोल थे आनंदेश्वर। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध थे, बोल थे हर हर हर महादेव। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: बिजली बिल जीरो हो रहे हैं, गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
7: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
6: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
7: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं।

0: ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत

0: 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री रनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता

0: जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए तीन दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the Centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
2: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
4: In the area, we see immense potential of hydrocarbon.

0: रामाचंद्रन।
1: थैंक यू सुनील। इन अ लैंडमार्क जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉल होम मेकर्स नेशन बिल्डर्स and quantified their monthly care as 30,000 rupees, reports the Tribune. Union Home Minister Amit Shah has been quoted in the Pioneer as saying that the Armed Forces Special Powers Act will be withdrawn from the entire Northeast next year, barring one or two states. In its editorial piece titled Green Energy Can't Yet Bend Climate Curve, the Indian Express argues that despite record growth in renewable energy, the world is still failing to slow global warming because major sectors remain dependent on fossil fuels. The paper says the clean energy transition must be accompanied by deeper industrial change, stronger policy support, technological innovation and international cooperation. Anthropic CEO Dario Amodei has sought serious and binding artificial intelligence rules and calls for mandatory testing and government powers to block risky systems, reports Financial Express. And finally, the Asian Age has quoted US agency NOAA as confirming that the weather phenomenon El Nino has begun and will intensify into the end of the year, potentially to historic strength. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jaishankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निज़ाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाज़ाराई के दौर में मुतनव्वे सप्लाई निज़ाम और बैनुल अक़वामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मंसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। एक अहम वाक़े में मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मज़कूरा मुफाहमत नामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ آسام اور ناگالینڈ کے درمیان سرحد کا معاملہ طویل

0: सबसे बड़ी खास बात कोविड-19 बहरान के दौरान सामने आई, जब उसने अपनी इंसान दोस्त सिफारतकारी के सबूत के तौर पर वैक्सीन मैत्री इकदाम शुरू किया। जनवरी 2021 से भारत ने 99 ममालिक और अक्वाय मुत्तहदा के दो इदारों को 30.12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फराहम की। बांग्लादेश में मुकीम फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर डॉक्टर ज्योतिष को बिस्वास ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत की तरफ से वैक्सीन की तेज रफ्तार तरसील खैर सगाली का एक गहरा मुजाहरा था। उन्होंने भारत, उसकी हुकूमत और उसके अवाम का शुक्रिया अदा किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निमटने के ऑपरेशंस भारत की आलमी शमूलियत का एक अहम हिस्सा रहा है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के मशरकी साहिल पर तूफान दित्वा आया, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक, हजारों बेघर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस होकर रह गया। श्रीलंका के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए भारत ने श्रीलंका को फौरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निजात फराहम करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारत ने 1000 टन से ज्यादा इमदादी सामान पहुंचाया, जिसमें खुश्क राशन, खेमे, तिरपाल, हाइजीन किट्स, कपड़े, पानी साफ करने वाले किट्स और तकरीबन 4.5 टन अद्वियात और सर्जिकल आलात, इसके अलावा 60 टन खसूसी साजो सामान शामिल था। भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए श्रीलंका के बंदरगाहों और हवाबाजी के नायब वजीर जमित रोवान कदी थुकोव ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के साथ बेपनाह गर्मजोशी और यकजहती का मुजाहरा किया है। पिछले 12 साल में भारत ने वैक्सीन मैत्री और ऑपरेशन सागर बंधु जैसे मौसर इकदामात के जरिए एक आलमी रहनुमा के तौर पर कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुशाहदा करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में बेशरफ का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में बेशरफ हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। खवातीन का 10वां आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक माह तवील टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय खवातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय टीम खवातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्नाबॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम

0: रहने का इम्कान है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शमीम इरफान।
1: शुक्रिया फहीम। आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से वजीर आजम के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने रियासतों को विकसित भारत 2047 के लिए दिया मास्टर प्लान। अमरीका के भारतीय जहाज पर हमले में

0: भारतों को विकसित भारत 2047 के लिए दिया मास्टर प्लान। अमेरिका के भारतीय जहाज पर हमले में अमले के 3 अहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने अमेरिकी नाजमुल उमूर को तलब किया। ये खबर भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये की है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, राज्यसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अखबार की एक और सुर्खी है, 4 दिन में टीएमसी के 4 राज्यसभा मेंबरा ने पार्लियामेंट ने दिया इस्तीफा। अखबार प्रताप की एक और नुमाया खबर है, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 साबिक फौजियों को शानदार खिदमात के लिए एजाज से नवाजा।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निज़ाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई के दौर में मतनवे सप्लाई निज़ाम और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज खवातीन के ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8 बजकर
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
5: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
4: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 18,000 करोड़ रुपए समेत कई परियोजनाओं की मांग की। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस ने 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 10 की हुई गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। और किशनगंज समेत प्रदेश के 6 जिलों में मॉनसून की दस्तक। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में श्री चौधरी ने यह आग्रह किया। उन्होंने हर घर नल का जल योजना के मद में खर्च की गई राशि के केंद्रांश के रूप में 13,000 करोड़ रुपए और वर्तमान में चल रही योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश के लिए निफ्टेम सहित शैक्षणिक और प्रबंधन संस्थानों की स्थापना, 10 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क आवंटित करने और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भी आग्रह किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2028 में नेशनल यूथ गेम्स, वर्ष 2030 में हॉकी विश्व कप और 2031 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की भी अपेक्षा की है। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,365 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने पटना में कहा कि इस निधि से अपूर्ण आवासों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गरीब का अपना घर हो। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की बहाली की जाएगी। उन्होंने पटना में कहा कि विभाग ने ऑनलाइन राजस्व सेवाओं को प्रभावी ढंग से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि विभाग द्वारा 8,054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली और अवैध लाभ पहुंचाने के खिलाफ पुलिस ने पटना के सचिवालय थाने में 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में मुंगेर और अरवल से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय थाना की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक अनु कुमारी ने बताया कि धांधली और साइबर गैंग की संलिप्तता की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि 88 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
1: कुल 10 अभ्यर्थी को अरवल एवं मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थापित किया जा रहा है। अभी तक इस कांड में कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ जो है वो स्कॉलर है, कुछ जो है वो अभ्यर्थी है, इन सबका सत्यापन किया जा रहा है।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रदेश के

0: सभी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति संवाद का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति संवाद आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कुलाधिपति के समक्ष विद्यार्थी और शिक्षक अपने विचार रखेंगे। संवाद में आए विचारों पर लोकभवन नीतिगत निर्णय लेगा। वहीं राज्यपाल ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के साथ साथ कम से कम एक विदेशी भाषा के अध्ययन अध्यापन की भी व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में की जाए। देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार किसान 40245981800 नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कर सकते हैं। इस नंबर पर मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ICAR के हैदराबाद स्थित भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने बताया कि यह पहल सामूहिक तिलहन अनुसंधान का पहला ऐसा प्रयास है जो देश के प्रत्येक किसान तक पहुंचाया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिले में पहुंच चुका है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचा है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।
1: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। सारण एवं सिवान जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून के प्रभाव से किशनगंज जिले में सबसे अधिक 148 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सरायगढ़ भपटियाही में 106 मिलीमीटर और सुपौल के बलतारा में 70.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात 4-पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने से यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार और नीरज कुमार तथा ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक थाना प्रभारी सागर पासवान की बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज के दौरान

मौत हो गई। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को खत्म करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के नागरिकों से बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण बचपन को और अधिक सशक्त बनाने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी लोगों से बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहने की अपील की है। वहीं श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार अभियान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाला यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगवानी वाली भारतीय टीम इतिहास रचने का प्रयास करेगी और अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विश्व कप के दौरान 7 स्थानों पर 33 मैच खेले जाएंगे, जिससे यह आईसीसी महिला T20 विश्व कप का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कटिहार जिले के सभी प्रखंडों में 17 और 18 जून को प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस 2 दिवसीय शिविर में आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, सत्यापन, EKYC तथा लाभ वितरण जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन तक रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में यह 70.39 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित एवं औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। दूसरे अग्रिम अनुमानों में केले, आम, पपीता, सेब और अमरूद के उत्पादन में वृद्धि से फल उत्पादन 1,214 लाख टन से अधिक रहने की संभावना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मौसम की खबर पर लिखा है, राज्य में समय से पूर्व मॉनसून की दस्तक, 7 जिलों में हुई झमाझम बारिश। दैनिक जागरण ने EOU की कार्रवाई को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लेखापाल का वेतन 50,000, 8 भूखंड समेत बनाई 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति। दैनिक भास्कर ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मांग का शीर्षक लगाया है, सम्राट ने केंद्र से मांगे 20,250 करोड़ और कई बड़े प्रोजेक्ट। प्रभात खबर लिखता है, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में 7.5 CGPA वालों को ही मिलेगा 4थे वर्ष में प्रवेश। राष्ट्रीय सागर की प्रमुख खबर है, निशांत और पवन सिंह सहित 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। आज अखबार की सुर्खी है, सरकारी शिक्षकों को ट्यूशन कोचिंग पर प्रतिबंध। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 18,000 करोड़ रुपए समेत कई परियोजनाओं की मांग की। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस ने 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 10 की हुई गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। और किशनगंज समेत प्रदेश के 6 जिलों में मॉनसून की दस्तक, मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में

0: बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
2: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
1: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: सामीन आइए अब समाप्त फरमाएं बातें जिनसे जिंदगी सवरती है के तहत मकाफात के मौजू पर शमशाद आलम से ये मकाला है।
1: कुरान, हदीस, तारीख और हमारा मुआशरा शाहिद है कि हर अमल, हर नीयत, हर सोच का बदला मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर इस कानून कुदरत को बयान फरमाया है। सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 7 और 8 में फरमाता है, जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बदी की होगी वो भी उसे देख लेगा। यह आयत हर इंसान को झिझोड़ कर याद दिलाती है कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज छुपी नहीं रहती, कोई अमल रायगा नहीं जाता, अदल व इंसाफ भी इसी पर रखी गई है। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान, यानी अदल का तकाजा यही है कि हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा, नेकी पर इनाम, बुराई पर सजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दुनिया मसरतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा हम यहाँ बोएंगे वही कल वहाँ काटेंगे। अगर ईमान नो तकवा, सच्चाई, मोहब्बत, अफ दरगुजर का बीज बोएंगे तो जन्नत के फल पाएंगे, और अगर झूठ, जुल्म, धोखा, फरेब, तकबर और हसद बोएंगे तो आजाब की शक्ल में काटेंगे। एक हदीस में है, अज़ुल्म ज़ुल्मात यौम अल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन कई अंधेरियों का बाइस बनेगा। दूसरी तरफ अल्लाह का वादा है, मन अमिला सालिहन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, जो नेक अमल करेगा हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। कुरान मजीद और हदीस नबवी में एक उसूल बार बार बयान हुआ है जो हमारे आमाल के नताइज से मुख्तलिफ है, और वो उसूल है अल जज़ा मिन जिन्सिल अमल, यानी बदला वैसा ही मिलेगा जैसा अमल किया गया होगा। और हदीस शरीफ में आता है कि कमा तुदीनु तुदानु, यानी जैसे तुम किसी के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। कुरान शरीफ में इरशाद बारी है, वजज़ाउ सय्यातिन सय्यातुम मिस्लुहा, और बुराई का बदला वैसा ही बुराई है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया आमाल की खेती है, जो कुछ हम यहाँ बोएंगे वही कल आखरत में काटेंगे। अगर हम किसी के साथ जुल्म करते हैं, धोखा देते हैं, गीबत करते हैं तो हमें भी दुनिया या आखरत में वैसा ही बदला मिलेगा। इसी तरह अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी को माफ करते हैं तो अल्लाह ताला हमें भी इनाम देगा और माफी से नवाजेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रहमून यरहमहुमुर रहमान, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, रहम करने वालों पर रहमान यानी अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जैसा अमल करोगे वैसा ही बदला पाओगे। अगर अपने हाथ से नहीं तो अपनी औलाद के हाथों हम देखते हैं कि जो औलाद वालिदैन से बदतमीजी करती है बाद में उनकी औलाद उनसे बदसलूकी करती है। आए दिन हम मुशाहिदा करते हैं कि एक उस्ताद जो बच्चों के साथ बदसलूकी करता है उसका अपना बच्चा किसी और के हाथों वैसा ही सलूक बर्दाश्त करता है। एक शख्स जो रिश्वत लेता है उसकी कमाई से पलने वाली औलाद उसी हराम के असर से बिगड़ती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अपने आप मुहासबा खुद करो कबल इसके के तुम्हारा मुहासबा किया जाए, अपने आमाल को खुद तौल लो कबल इसके के तुम क़यामत में तोले जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, नेकी कभी खत्म नहीं होती, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने हर अमल से पहले सोचें कि कल क़यामत के दिन हमें इसी जैसा बदला मिलेगा। अपने आमाल का मुहासबा करें, जुल्म, झूठ, फरेब से बचें, सच्चाई, अदल, रहम दिली को अपनाएं, दूसरों से वही सुलूक करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। अपनी औलाद को सच्चाई, अदल और इंसाफ का सबक दें। मोहतरम सामीन किराम, किसी गांव में जागीरदारों का एक खानदान था। खानदान रिटायरमेंट के बाद वो सारा वक्त जमीनों की निगरानी और निगहदाश्त में सर्फ करता था। उसके दो पसंदीदा अमल थे, फारिग वक्त में कार का सैर करना, नंबर 2, 2.5 लाख की रकम पास रखना और नोटों को

0: गिनता रहता था। एक रोज दोपहर को वो कमरे पर गया, सारे नौकर मजार खिदमत हाजिर हो गए। पता नहीं क्या बात हुई, उसे एक मजारे यानी काश्तकार पर गुस्सा आ गया। उसने डंडा पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू की। उस बेचारे ने जान बचाने की खातिर भागकर एक झोपड़ी में पनाह ली। जागीरदार जालिम ने बाहर से कुंडी लगाई और झोपड़ी को आग लगा दी। फौरन ही आग भड़क उठी और सारा झोपड़ा अलाव यानी घास फूस का जला हुआ मलवा का सूरत इख्तियार कर गया। वो गरीब झोपड़ी के अंदर जलकर भस्म हो गया। किसी की मजाल थी के वो एक जागीरदार से मुंह आता, उसके खिलाफ कहीं फरियाद करता या कानून का दरवाजा खटखटाता। कुछ दिन इस वाक्या का कुर्बो जवार में सरगोशियों के अंदाज में चर्चा हुआ और कुछ गहरी खामोशी छा गई। करना खुदा का ये हुआ, चंद ही हफ्तों के बाद जागीरदार के घुटनों में तकलीफ शुरू हो गई। नौबत यहाँ तक पहुँची के उस शख्स के लिए एक इंच भी हरकत करना मुमकिन न हुआ। गोया के सारा काम मुलाजिम ही करता। शब और रोज इसी तरह गुजरते। मई का महीना था, गंदम पक गई थी और जमीनों पर थ्रेशर लगे हुए थे। उसने घर में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं बहुत दिन से बाहर नहीं गया हूँ, क्या ही अच्छा हो कि मुझे बाहर ले जाया जाए, हवा खोरी भी हो जाए और गंदम निकलते हुए भी देख लूंगा और तबीयत भी बहल जाएगी। चुनाच ड्राइवर उसे लेकर चल पड़ा। जागीरदार का रकबा चूंकि बहुत वसी था, इसलिए गाड़ी को थ्रेशरों के तरफ ले जाते हुए अच्छा खासा फासला तय करना पड़ा। लेकिन एक मकाम पर जाकर गाड़ी रुक गई। आगे गन्ने के खेत थे, थ्रेशर दूसरी जानी में थी। गाड़ी का मजीद आगे जाना मुमकिन न था। जहाँ गाड़ी जाके रुकी वहाँ से गन्ने काटे जा चुके थे और हर तरफ गन्नों के खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। अब गाड़ी आगे ले जाने की कोई सूरत नहीं है। ड्राइवर ने पूछा कि आपका क्या हुक्म है, क्या किया जाए। जागीरदार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम गाड़ी को यहीं छोड़ दो, एसी चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जाओ, जाकर देखभाल करो थ्रेशरों पर काम की क्या रफ्तार है, कितनी गंदम से गल्ला निकल आया और कितनी बाकी है। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूँ। चुनांचे ड्राइवर चला और नजरों से ओझल हो गया। अब कराइन ये है कि जागीरदार ने माचिस जलाई, सिगरेट जलाया और जलती हुई माचिस बाहर फेंक दी। गाड़ी के नीचे चारों जानिब गन्ने के पत्ते बिखरी हुई थी और ये तो आग पकड़ने की बहाना मांगती है। गाड़ी के चारों तरफ अलाव भड़क उठा और देखते ही देखते वो जागीरदार 2.5 लाख की रकम और बेहद कीमती कार समेत जलकर कोयला हो गया और कोई भी उसे बचा न सका। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ वो झोपड़ा था, जिसमें एक बेयारो मददगार गरीब मजारे को जलाकर भस्म किया गया था। हमें सोचना होगा कि हम किन आमाल में मसरूफ हैं। अगर हम नेकी करेंगे, सच बोलेंगे, माफ करेंगे, सिला रहमी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखरत में इज्जत देगा, और अगर हम जुल्म, झूठ, गीबत, चुगली, खयानत में पड़े रहेंगे तो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम नेकी करें, अदल करें, रहम करें और बुराइयों से बचें।
1: अभी आप सवाल फरमा रहे थे बातें जिनसे जिंदगी संवरती है के तहत मकाफात के मौजू पर यह मकाला पेश कर रहे थे शमशाद आलम। सामईन, आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के खात्मे के आलमी दिन के बारे में। चाइल्ड लेबर के खात्मे से मुतालिक छठी आलमी कॉन्फ्रेंस ने मराकश ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को अपनाया, जिसमें पेशरफ्त को तेज़ करने के लिए बड़े पैमाने पर अमल दरामद पर जोर दिया गया है। फ्रेमवर्क आलमी वादों को तकवीत देता है और 2030 तक चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पॉलिसियों, इदारों और मजबूत कार्रवाई को मजबूत करता है। तो सामीन, बातें जारी रहेंगी, आइए अब समाअत फरमाएं फारूक अहमद से नातिया कलाम।
2: मोहतरम सामीन, नाते रसूल पाक का मतला मुलाहजा फरमाएं। तमाम आलम हस्ती पे छा रहे हैं हुजूर, तमाम आलम हस्ती पे छा रहे हैं हुजूर, दिलों

खुदा से सजा रहे हैं हुजूर। जमीन से ताबा फलक है।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पटना दरभंगा से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 483.1 मीटर 8621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम डस मंजरी।

अब आइए सुनते हैं कैलाश शिखर की आवाज में ये गाना। फिल्म का नाम है सलामे इश्क। बोल हैं समीर के और संगीत शंकर ईशान लॉय का।

0: कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके? ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
6: जी,
5: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
6: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
5: पर ये होगा कैसे?
6: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
5: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
6: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
5: बस
6: बस
5: समझ गया।
6: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
8: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
9: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम डसमंजरी। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है लेकिन। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

रॉक स्टार। इस फिल्म का गाना सुनिए, AR रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज़ों में। बोल है इरशाद कामिल के और संगीत AR रहमान का।

रॉकस्टार फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिए शोभना राव की आवाज़ में चंद गज़लें। सबसे पहले सुनिए, न खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर गम जमाने वाला। शायर है निरा फाजली।

अब आइए सुनते हैं। हुस्न जब बेनकाब हो जाए, सादा पानी शराब हो जाए। रचना है रवीश दहलवी की।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे शोभना राव की आवाज़ में चंद गज़लें। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल है आनंद बख्शी के और संगीत नुसरत फतेह अली खान का।

0: रॉकस्टार फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे हर्षदीप कौर की आवाज़ में, बोल थे इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गया सैलरी?
3: हाँ।
2: आ? नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन

0: दबाओ इंजेक्शन।
1: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
7: जी,
6: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
6: बस
7: बस
6: समझ गया।
7: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना सिर्फ तुम फिल्म से उदित नारायण की आवाज में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अमीन साबरी और फरीद साबरी की आवाज़ में। गीत समीर ने लिखे थे और संगीत था नदीम श्रवण का। अगला गीत लीजिए सुनिए फिल्म गदर से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। परवीन सुल्तान के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अजय चक्रवर्ती ने।

आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म यात्रा में। अहमद वासी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था खय्याम ने। आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज 2 से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजू सिंह ने।

सदियां फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज में। अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

ताल फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे थे आशा भोसले, ऋचा शर्मा और आदित्य नारायण की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत था A.R. रहमान का। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो के घड़ी में दिन के 12 बज चुके हैं। प्रस्तुत है बिहार का लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत।

सबसे पहले लीजिए सुनिए शैलेश कुमार ठाकुर के स्वर में ये बेटी बचाओ गीत। इस कार्यक्रम को आप डीटीएच पर भी सुन सकते हैं।

0: क्रम जारी रहेगा छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: 90.
1: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है बिहार के लोक संगीत कार्यक्रम में। रामाशीष यादव की आवाज में लीजिए सुनिए ये देवी गीत।

0: 90.
1: आप सुन रहे हैं बिहार का लोक संगीत, रामाशीष यादव की आवाज में। लीजिए सुनिए ये पूर्वी गीत।
2: लाली लाली डोली आहो, हमनी दुअरी आया

अभी आप रामाशीष यादव के स्वर में पूर्वी गीत सुन रहे थे। इसी के साथ बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय है हृदय रोग में बरती जाने वाली सावधानियाँ और समाधान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आनंद कुमार, इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रुपेश कुमार रूप।

0: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
4: हेलो डॉक्टर,
5: हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर।

0: श्रोताओं नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषय पर विशेषज्ञों को बुलाकर आपसे बातचीत करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पटना के जाने माने हृदय रोग संस्थान, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, जिसे IGIC के नाम से जाना जाता है, वहाँ के डॉक्टर आनंद कुमार को, जो कार्डियोलॉजी विभाग के वरीय चिकित्सक हैं। और आज हमारा विषय है हृदय रोग में बरती जाने वाली सावधानियां और समाधान। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद रुपेश जी। मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार है। मैं अभी इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना PMCH में कार्यरत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बुलाए। और जो भी श्रोतागण का समस्या है आज मैं उसका जवाब दूंगा आप लोग के बीच में।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली हृदय रोग है क्या, प्रकार कितने हैं, क्या कारण है हो जाने का?
1: हृदय रोग तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन जो दो मुख्य प्रकार के में जो आता है, एक तो है हार्ट अटैक जो है, और दूसरा है कि वाल्व का प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग वाल्वुलर हार्ट डिजीज कहते हैं, और दूसरा हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो मेन प्रकार हैं जो हम लोग के बीच में, जो हम लोग रेगुलर इसको देखते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, अगला जो सवाल है वो ये है कि अभी वर्तमान समय में हृदय रोग के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
1: हृदय रोग बढ़ने का मुख्य कारण आज के समय बढ़ने का है कि क्योंकि हम लोग का लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो गया।
2: हेलो डॉक्टर।
0: डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में हैं, आप बताएं आपका क्या सवाल है।
3: जी सर, जैसे सोने के समय में सर नींद आता है ना सर, नींद आने के समय में सर सीना के सामने से सर झिझिना के 2 सेकंड के लिए सर सिर में निकल जाता है।
1: जैसे नींद आने के समय में अगर सोने समय झुनझुनी टाइप का होता है सीना के टाइम में, तो ये देखना पड़ेगा कि आप खाना कब खा रहे हैं और खाना खाने के कितने देर के बाद आप जा रहे हैं सोने के लिए। अगर आप मान लीजिए कोई मसालेदार खाना खा रहे हैं या फिर जो फैटी डाइट जो हैवी मील ले रहे हैं और तुरंत जा रहे हैं बेड पे सोने के लिए, तो ये प्रॉब्लम गैस के कारण से हो सकता है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो एटलीस्ट आधा घंटा तक आप उसको वॉक कीजिए, खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा तक आप उसको बेड पे नहीं जाइए तो वॉक कीजिए। जब आपके अंदर से पूरा जो भी खाना खाएं उसका गैस पास हो जाता है तब जाके आप बेड पे जाए तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आपका उम्र कितना है?
3: हमारा उम्र है 32।
1: पहले से कोई बीमारी भी है, चीनी का, प्रेशर का है?
3: नहीं सर, पहले से ही था कि पेशाब के रास्ते सर खून रुक जाता था सर।
1: अच्छा।
3: इलाज कराए

0: सीना में दर्द नहीं ना होता है, जैसे सीना में दर्द होना,
1: नहीं,
0: भारीपन सा होना, ये
1: दर्द
0: सब
1: ना
0: दिक्कत नहीं
1: ना
0: ना?
1: दर्द कुछ भी नहीं होता है, जिन दर्द बात के या सर में निकल जाता है।
0: अच्छा हाँ, तो मेन कारण वही है आपका, जो भी टाइम टेबल है खाने पीने का और किस तरह का आप खाना खा रहे हैं, इसको थोड़ा सुधार कीजिए तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा।
1: आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अपना नाम बताएं, किस जगह से बात कर रहे हैं?
0: हम मोतिहारी जिला के छतौनी से बोल रहे हैं, आज कुमार।
1: अच्छा जी, आकाश जी, उम्मीद है डॉक्टर साहब की बातों से आपका समस्या का समाधान हो गया होगा। हेलो डॉक्टर, में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हृदय रोग आजकल बहुत आम हो गई है, तो मुख्य रूप से क्या कारण आप देखते हैं हृदय रोग के मामले बढ़ने का?
0: मेन तो रीज़न हमको लग रहा है जैसे कि आज के डेट में जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और जो खान पान जो चेंज हो गया है, मतलब यंग और जो यंग लोग हैं और जो एडल्ट लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, तीनों का खान पान और लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। इसके कारण से ही जो हार्ट की समस्याएं हैं या हार्ट अटैक की समस्याएं हैं, उसमें नंबर ऑफ केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। मुख्य कारण तो यही है, रूटीन बहुत ज़रूरी होता है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जो खान पान है उस सीमित करना, खान पान ज़्यादा शुगर, फैटी डाइट या तेल मसाला नहीं खाना, रेगुलर व्यायाम करना, ये सब में आजकल कमी आ रही है, जिसके कारण से वर्कलोड ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण से जो है दिल की बीमारियाँ जो है वो बढ़ते जा रही है।
1: आपने बताया कि बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल भी बदल गया है, खान पान की चीज़ें भी पहले से बहुत बदल गई हैं। और सर, एक और सवाल आता है इन बीच में कि हृदय रोग के जो शुरुआती लक्षण, हम पहचाने कैसे कि कोई मरीज, आम समस्या जो होती है कई बार सीने में दर्द वगैरह की समस्या, बाकी चीज़ों में भी होती है, तो कैसे हम उसको पहचाने?
0: देखिए जो
1: सर
0: जो
1: एक कॉल आ रहा है, हम लोग पहले कॉल लेते हैं। हेलो डॉक्टर
0: जी, हेलो डॉक्टर, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है।
1: जी, आप कहाँ से बोल रही हैं, कौन बोल रही हैं बताएं, जो डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात।
0: मेरा नाम सर सुहासिनी है और मैं कदम कुआ से बोल रही हूँ।
1: जी बताइए, क्या समस्या है आपको?
0: सर मुझे ये जानना था कि आजकल जिसे भी देखिए हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, हर किसी को हार्ट की बीमारी हुई रहती है, तो हेल्दी हार्ट के लिए और हार्ट का कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए? हेल्दी हार्ट के लिए तो आपको सबसे पहले तो समय पे सोना, समय पे उठना, ठीक है, जी खान पान में परहेज करना, ठीक है, जैसे कि कम नमक खाना, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना, जो
1: जी
0: फैटी डाइट है उसको सीमित करना, ठीक है, और नियमित व्यायाम करना, लगभग 30 मिनट व्यायाम करना। तो ये सब आप प्रिकॉशन करती है, मान लीजिए कोई आपको सिम्टम्स हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाके उसको जांच उच करवाना, अगर जल्दी पकड़ में आ जाएगा तो बीमारी को हम लोग बढ़ने से रोक भी सकते हैं, तो ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट डिजीज हो रहा है या फिर अर्ली स्टेज में है,
1: हाँ
0: तो उसको पहले से पकड़ के उसको सीमित किया जा सकता है।
1: जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ठीक, सुहासिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो डॉक्टर में फ़ोन करने के लिए।
2: हेलो डॉक्टर।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉल हम लेते हैं और फिर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। हाँ हेलो डॉक्टर।
3: हाँ जी, हम बृज कुमार सिंह, जिला भोजपुर, ग्राम पसौर, थाना चरपोखरी से बोल रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब हैं स्टूडियो में, आप अपना सवाल पूछें, क्या दिक्कत है आपको?
3: अच्छा, तो अब हम चलते हैं शहर तो हमको हाफ कवर जाता है।
0: ठीक है, तो ये कब से हो रहा है आपको, कितने दिन से हो रहा है?
3: जी, जब से ऐसी जब हुआ है कोरोना, उस समय से घर से बाहर मत निकलिए, ऐसे मत कीजिए, खड़ा होकर चलते हैं तब तो, ऐसे बैठा रहे तो हाफ नहीं तो बढ़ता है, ठीक है, लेकिन खड़ा होकर चलते हैं तो हाफ को बढ़ जाता है।
0: अच्छा, तो पहले से आपको कोई बीमारी भी है, चीनी का, शुगर का, कोई दवाई वाई भी
3: अच्छा भाई,
0: खाते हैं
3: सब तो
0: पहले से?
3: कुछ नहीं है सर।
0: चलने पे हाफ कवर होता है, देखिए दो कारण से हो सकता है, या तो आपका कोई फेफड़ा में कोई दिक्कत हो या फिर हार्ट का बीमारी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको तो जांच उच करवाना होगा। आपका कोई जांच उच हुआ है, ईसीजी, इको, एक्सरे, ये
3: ना
0: सब?
3: इस सप्ताह ही कराया है।
0: अच्छा तो ठीक है, आप देखिए क्या होता है ना कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है ना, तो हम लोग का क्षमता भी चलने का कम हो जाता है, अगर उस क्षमता से आप अधिक चलिएगा तो आपको दम फूलेगा। आप जितना चल सकते हैं आप उतना ही चलिए, उससे अधिक नहीं चलिए, अपना डेली रूटीन काम कीजिए, ठीक है, और एक बार जो है या तो लोकल या फिर आप इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान शुक्रवार को आ जाइए, वहाँ पे हम आपका सारा हार्ट का जो जांच उच है वो सब करवा देंगे, ठीक है। और अभी प्रिकॉशन के लिए तो यही है कि ज़्यादा चलिए नहीं, ठीक है, पानी जो है 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीजिए, नमक कम खाइए, नमक ऊपर से नहीं लेना है, ज़्यादा घी, डालडा, तेल मसाला का सेवन सीमित कीजिए, ठीक है, और बीपी शुगर

0: का तो क्या बीपी शुगर आपका कंट्रोल रहता है?
1: हाँ ये सब सब ठीक है सर।
0: तो ठीक है, तो एक बार आपका मतलब कार्डियक इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि हार्ट का क्या स्थिति है। तो सबके लिए तो आपको एक बार पटना आ जाइए, नहीं तो फिर अगर पटना आने
1: पहले
0: में,
1: सर हम गांजा पीते थे,
0: हाँ तो गांजा पीते
1: गांजा
0: थे
1: और
0: ना,
1: शराब।
0: तो शराब पीते थे ना, तो कार्डियक का कम चांस लग रहा है, फेफड़ा का ज़्यादा दिक्कत लग रहा है। ठीक है, तो गांजा
1: हाँ
0: पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, तो फिर दम फूलने लगता है, तो उसके लिए तो फिर गांजा बंद कर दिए ना।
1: हाँ गांजा बंद कर दिए हैं सर, गांजा
0: हाँ,
1: वरना
0: तो
1: हम नहीं
0: एक
1: पीते हैं।
0: इनहेलर आता है दवाई, इनहेलर पंप जो जिसको बोलते हैं सांस लेना, वो ले रहे हैं क्या?
1: जीना दवाई तो कुछ नहीं लेते हैं।
0: हाँ, तो आ जाइए एक बार, आ जाइए तो फिर तो सब जांच उच करवा के फिर दवाई वाई लिख देंगे, तो फिर आपका जो
1: जी
0: दिक्कत है कंट्रोल हो जाएगा।
2: जी धन्यवाद धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे जो इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो हम कैसे पहचाने।
0: देखिए, शुरुआती लक्षण जो है सीना में दर्द होना जिसको हम लोग चेस्ट पेन कहते हैं, या फिर भारीपन होना जिसको हम लोग चेस्ट हैवीनेस कहते हैं, उसके अलावा सांस फूलना, फिर उसके बाद पसीना आना। ठीक, अगर हल्का सा भी कोई इस तरह का सिम्टम्स है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, और तुरंत अपने डॉक्टर से मिल करके इसका ECG करवा के, इको करवा करके इसको पकड़ना है। शुरुआती लक्षण तो यही है, सीना में दर्द होना, सीना में भारी आना।
2: डॉक्टर साहब, हम लोग बातचीत करते रहेंगे लेकिन अब कुछ मनोरंजन के लिए भी हम लोग थोड़ी करें। डॉक्टर साहब, आप बहुत युवा हैं तो अभी इस टॉपिक पे चर्चा चलती रहेगी। आपका कोई ऐसा पसंदीदा गाना हो जिसको आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हो?
0: एक तो वो है शायद ये किशोर कुमार का मुसाफिर हूँ
2: यार
0: यारो,
2: जी,
0: तो ये तो एक ये गाना है, तो
2: ठीक है
0: ये
2: सर,
0: गाना हम
2: तो हम
0: सुनते
2: लोग ये
0: हैं।
2: गाना आपके इस चॉइस के गाने को हम सुनवाते हैं और आगे चर्चा को जारी रखते हैं।

0: हेलो डॉक्टर,
1: एक और कॉल हम लोग लेते हैं सर, और फिर बातचीत का जारी रखेंगे। लगता है संपर्क हमारा टूट गया। जी, आप सर बता रहे थे।
0: हाँ, जैसे चलने पे भी सीने में दर्द होना, ज्यादा चल नहीं पाना, तो ये सभी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको जो भी सिम्टम्स है उसको पकड़ के और अपने

0: डॉक्टर से मिलना पड़ेगा।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, आपने मतलब बता दिए कि लक्षण किस तरह से हम क्या पहुंचाने। और कभी कभी क्या होता है सर कि कुछ खास तरह के लोगों को मतलब हृदय रोग का खतरा ज्यादा होता है, तो ये किस तरह के लोग हैं जिन पर कि हम हृदय रोग का खतरा समझें कि ये ज्यादा वल्नरेबल हैं उस
0: हाँ
1: बीमारी के प्रति।
0: नहीं, जैसे कि जिन पेशेंट को हिस्ट्री है डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, तो वो उनको रिस्क है। उसके अलावा जिस पेशेंट को
2: हेलो डॉक्टर। हाँ सर,
0: कोलेस्ट्रॉल,
1: एक कॉल हम लेते हैं।

0: है, उसके अलावा जिस पेशेंट को
1: हेलो डॉक्टर। हाँ सर,
0: कोलेस्ट्रॉल।
1: एक कॉल हम लेते हैं। हेलो डॉक्टर
2: नमस्ते सर
1: जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए। डॉक्टर साहब स्टूडियो में हैं, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, बताएं।
2: मैं डॉक्टर सितारे गुरौल वैशाली से।
1: जी सितारे जी, हाँ डॉक्टर साहब से बात करें आप, बताएं आपको क्या दिक्कत है।
2: हृदय में लोग मुझे पेस मेकर लगता है,
1: जी
2: उसका
1: जी
2: बराबर चेकिंग कराया जाता है।
0: वो पहले से हृदय रोग का शिकायत है क्या, पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है?
2: जी हुआ था एक बार तो
0: हाँ, तो
2: इलाज
0: हार्ट
2: वगैरह
0: का
2: चेंज किए
0: प्रॉब्लम है,
2: थे।
0: उसका दवाई चल रहा है।
2: जी
0: हाँ तो हर एक 6 महीना पे तो आपको डॉक्टर से तो मिलना पड़ेगा ना, हर एक 6 महीना पे आपको अपने डॉक्टर से मिल करके अभी उसका क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, दवाई सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा है, कि और दवाई घटाना होगा बढ़ाना
2: दवाई
0: होगा।
2: तो सूट कर रहा है।
0: हाँ तो ठीक है, उसको खाइए और रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और पल्स जो होता है जांच करते रहिए और अपने डॉक्टर से मिलते रहिए।
2: इतना सुंदर सलाह के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: जी
2: जी
1: जी सितारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह के मरीज को ज़्यादा खतरा
0: हाँ,
1: होता है।
0: जैसे जिनको पहले से शुगर का शिकायत है, ब्लड प्रेशर का शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल का शिकायत है, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनको मोटापा बहुत ज़्यादा है, उनको हो सकता है। किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि उसके घर में किसी को हार्ट अटैक से मौत हुई है या हार्ट अटैक है, उनको हो सकता है। जिनका सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जिनका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खान पान में परहेज नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसे जो पेशेंट होते हैं उन लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट अटैक का।
1: जी सर, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल ये भी आता है कि जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, मोटापे वगैरह और हृदय रोग में, लोगों ने कहा है कि मतलब हाइपरटेंशन और हृदय रोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मतलब किस तरह से ये कहावत कितने हद तक सही
0: हाँ
1: है?
0: नहीं, हर एक केस में नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में जो ब्लड प्रेशर और जो दिल का बीमारी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हर एक केस में नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण से, मान लीजिए आपको बीपी है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या करता है, जो हम लोग का खून का नली है, जो खून का नली की जो परत है, उसको वो डैमेज करता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसके कारण से वहाँ पे क्लॉट हो गया, या फिर वहाँ पे एक जिसको सरल लैंग्वेज में काई काई कह सकते हैं, कि नाली का पाइप में जैसे काई जमा होता है, तो वैसे ही खून के नली में हाई ब्लड प्रेशर के कारण से जो खून की जो नली होती है, उसकी वहाँ पर डैमेज होने के कारण से एक तरह का काई वहाँ जमा हो जाता है, जिसके कारण से जो खून का जो फ्लो है उसमें कमी हो जाती है। जितना खून जो हार्ट को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, तो जिसके कारण से हार्ट का प्रॉब्लम जो
1: जी
0: है
1: तो
0: बढ़
1: सर, आपने
0: जाता
1: जो
0: है।
1: काई कहा वो वही कोलेस्ट्रॉल और काई
0: हाँ
1: एक ही है?
0: कोलेस्ट्रॉल खून का नली होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का परत हो जाता है, जिसके कारण से उसका जो चौड़ाई है खून की नली की वो कम हो जाती है, और दिल का बीमारी जो है होता है।
1: सर इतनी सारी बातें हुई हैं तो इसमें एक और सवाल हमारे श्रोताओं के मन में आ रहा होगा, मेरे भी मन में कई बार आता है, कि अभी युवा जो मतलब जिनको हम यंग कहते हैं, यूथ कहते हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं हृदय रोग की
0: हाँ
1: चपेट में,
0: आज,
1: इसका
0: हाँ
1: सर क्या कारण हो
0: इसका
1: सकता है?
0: यही कारण है कि आजकल के जो युवा हैं, ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही ठीक नहीं है, रूटीन नहीं है लाइफ में, समय पे सोना समय पे उठना नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, सेवन जैसे कि स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और बड़े बड़े शहरों में तो ड्रग्स भी लेते हैं, तो इस तरह का सेवन करने से जो हार्ट की जो बीमारियां हैं जो पहले हो जा रही है।
1: क्योंकि सर अभी कुछ हाल फिलहाल में घटनाएं ऐसी हुई, कई सेलिब्रिटी थे जो बहुत यंग थे, कुछ लोग जिम कर रहे थे उनके साथ ऐसी घटना हो गई, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और अचानक से पता चला
0: हाँ
1: वो गिर गए।
0: क्या होता है ना कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी करने में क्या होता है, या जिम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो वो प्रॉब्लम हार्ट का प्रॉब्लम आपको पहले से होता है, जो आपको नहीं पता रहता है। खून की जो नली होती है वो छोटी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपका जो है बॉडी है उसको कॉम्पनसेट करके कोई सिम्टम्स नहीं होता काम का, लेकिन जैसे ही आप कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शरीर का पानी जो है बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन कारण से जो वहाँ पे जो खून की नली में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, या जो जिसको हम लोग काई कहते हैं, वो क्या होता है, वो टूट जाता है, टूट जाने के बाद से वो जाके दिल का दौरा कर देता है।
1: हेलो डॉक्टर। सर हम लोग ये बात जारी रखेंगे, एक श्रोता का कॉल लेते हैं हम। हेलो डॉक्टर
2: हेलो सर, मैं
1: जी।
2: आशीष कुमार झा बोल रहा हूँ, पटना बिहार से।
1: हाँ जी बताएं आपको क्या समस्या है डॉक्टर।
2: जी सर, मेरी समस्या यह है सर कि मेरी उम्र अभी सर 40 वर्ष है।

0: पर इधर कुछ दिनों से सर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। एक फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ता हूँ तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दूसरे फ्लोर पे चढ़ता हूँ तो काफी ज्यादा सांस तेज हो जाती है और मुझे नॉर्मल होने में 40 सेकंड या 1 मिनट तक लग जाते हैं सामान्य होने में। तो क्या ये मेरी हार्ट की हृदय रोग की समस्या है या कुछ और भी हो सकता है?
1: नहीं, हृदय रोग भी हो सकता है और किसी और कारण से भी हो सकता है। फेफड़ा का भी कारण हो सकता है, उसके कारण से भी जो है आपका जो क्षमता है कम हो गया है। ठीक है,
0: जी हाँ सर।
1: तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पहले से कोई बीमारी तो नहीं है आपको, चीनी प्रेशर का, आपका वजन कितना है। ठीक है, या अगर ये
0: जी
1: सब
0: सर।
1: चीज़ नॉर्मल है तो फिर कार्डियक इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि सीढ़ी चढ़ने पे क्यों हो रहा है, जिसको हम लोग इको करते हैं। इको करके देखते हैं कि उसमें हार्ट का पंपिंग कैसा है, पंपिंग नॉर्मल है कि घट गया है। तो अगर मान लीजिए कि आप एक सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर तक जाने में ही आपको हपनी हो रहा है तो एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर ये सारा जांच जो है वो आप करवा लें। और प्रिकॉशन के लिए तो हम यही कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर तक ही चढ़ें, सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे नहीं जाएं अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो। और देखिए कि आपका वजन कितना है, वजन के कारण से भी सांस
0: जी,
1: फूलता है।
0: वजन तो सर मेरा ज्यादा है, लगभग 90 किलो है सर, और
1: हाँ, तो
0: मेरी उम्र
1: उसको
0: 40 वर्ष है,
1: कीजिए,
0: मेरी
1: उसका
0: हाइट
1: बी
0: 165 सेंटीमीटर है।
1: हाँ तो BMI निकाल करके BMI निकालिए उसका, और अकॉर्डिंग टू वजन, उसके अकॉर्डिंग वजन कम कीजिए।
0: जी जी सर।
2: बहुत आपका धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। सर, हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो बहुत युवा
1: यंग
2: लोग
1: में,
2: भी
1: हाँ
2: इसमें चपेट में आ रहे हैं
1: हाँ
2: और कई बार जिम वगैरह करते समय बातचीत हो रही
1: जिम
2: थी।
1: में, तो जिम में तो मुख्य कारण ये होता है ना कि हैवी एक्सरसाइज करते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, पहले से कुछ हार्ट का प्रॉब्लम या खून के नली में प्रॉब्लम होता
3: हेलो डॉक्टर,
2: सर, हम लोग बातचीत जारी रखेंगे।
1: है।
2: एक और श्रोता है, उनका कॉल पहले ले लें।
4: हेलो।
2: हाँ हेलो
4: हाँ, मेरा नाम सीमा है और मैं कंकड़बाग से बोल रही हूँ।
2: जी। सीमा जी, आप बताएं आपको क्या समस्या है, डॉक्टर साहब हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, बताएं।
4: मेरी फैमिली में मौत है और उनको पिछले 1 साल से हार्ट की बीमारी है और उनको डायबिटीज बहुत पहले से है, तो इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहती हैं और कभी कभी बीपी भी बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या सावधानी रखनी होगी उनको?
1: सावधानी तो ये है, सबसे पहले तो शुगर कितना रहता है उनका, शुगर और ब्लड प्रेशर कितना रहता है, कंट्रोल
4: शुगर
1: रहता
4: लेवल
1: है
4: जो
1: कि
4: है
1: ज़्यादा रहता है।
4: कभी बढ़ जाता है और कभी कभी थोड़ा लो भी हो जाता है, तो शुगर जो है वो कंट्रोल उतना नहीं हो पाता है।
1: हाँ, तो सब सावधानी में तो पहले यही कि आपको बीपी और शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ आपका कंट्रोल रहेगा तो जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो उसका प्रोग्रेशन भी, मतलब कि उसको आप कंट्रोल कर सकते ताकि वो आगे दूसरे रूप में प्रोग्रेस नहीं करें, बात समझी। और
4: हाँ
1: जो उसका मेडिसिन भी ले रही होगी आप, खून पतले करने का दवाई उवाई ले रही होगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना नियमित।
4: वॉक भी कर सकती हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक तो रोज नहीं हो पाता है क्योंकि
1: हाँ, हल्का हल्का वॉक जितना वो चल सकती हैं, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करता है, जितना उनका कैपेसिटी है, क्षमता है, ठीक है ना, उतना एक्सरसाइज वो कर सकते।
4: ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक
2: जी
4: यू। थैंक
2: सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: यू सर।
2: तो अब सर, कार्यक्रम का वक्त भी खत्म होने वाला है। आखिरी समय में सर ये सवाल हम करते हैं कि हम इस हृदय रोग को जो एक साइलेंट किलर के तौर पे हमारे सामने आ रहा है, तो किस तरह से सर हम करें, आप हमारे श्रोता को जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, या हमारे जो भी किशोर के उम्र के लोग हैं, क्योंकि आजकल वो भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से आप सजेशन देना चाहेंगे कि क्या कुछ करें ताकि वो इस बीमारी से बचे रहें, और अगर कुछ ऐसी समस्या आती है तो क्या करना चाहिए उनको तुरंत से ताकि कुछ आगे बड़े बड़ी घटना ना हो।
1: तो मेरा तो यही सुझाव है सबके लिए, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो या मिडिल एज पर्सन हो, स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस भी एक कारण है हार्ट अटैक का, या दिल की जो बीमारियां बढ़ रही हैं। खान पान पे ध्यान रखना है, हरी साग सब्जी ज़्यादा खाना है, जो फैटी डाइट है उसको सीमित करना है, नमक जो है नमक का सेवन कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी जो नियमित व्यायाम है आपको 30 मिनट रेगुलर करना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है, अपने आप को काम में बिजी रखना है। स्ट्रेस जो पहला बताएं, काम में बिजी रहने से स्ट्रेस कम होगा, खान पान पे ध्यान देना है। कोई भी आपको बीमारी है जैसे शुगर है, डायबिटीज है, अपने डॉक्टर से मिलकर उसको कंट्रोल रखिए। अगर आपको हल्की सी भी सिम्टम्स है, हल्का सा भी प्रॉब्लम है, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए। आपने तुरंत आसपास के जो डॉक्टर उनसे मिलिए, नहीं तो फिर

0: हमारे हॉस्पिटल इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में आके हम लोग से मिलिए। हल्का सिम्टम जो भी होता है हार्ट अटैक का, कभी कभी क्या होता है जिसको आप साइलेंट किलर अभी क्या है, कभी पता चलता भी नहीं है, तो हल्का सिम्टम्स भी है उसको गैस गैस समझ के बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, गैस गैस है, तो उसको नहीं इग्नोर करना है, वो आके आप
1: नियमित रूप से उसकी
0: हाँ
1: जांच कराएं
0: जांच करवाएं,
1: ताकि
0: रेगुलर,
1: जो
0: हाँ
1: शंका हो
0: रेगुलर
1: वो दूर
0: चेकअप,
1: हो। जी,
0: हाँ 6 मंथ
1: और जो
0: पे रेगुलर
1: समुचित
0: चेकअप,
1: उसका इलाज हो सके
0: हाँ हाँ
1: वो
0: वो
1: किया
0: सब
1: जाए।
0: कर।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले तो और हमारी गुजारिश है कि आप अपने पसंद का कोई एक गीत, जो
0: अच्छा
1: आपका बहुत पसंदीदा गीत हो।
0: हाँ, एक गाना है ओ हंसनी, ओ हंसनी कहाँ तू चली गई, तो ये भी एक मेरा फेवरेट गाना है, तो इसको भी सुनाइए
1: जी
0: सबको।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, आपके इस गाने की फरमाइश को हम पूरा करेंगे।

0: हृदय रोग में बरती जाने वाली सावधानियाँ और समाधान विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आनंद कुमार। इनसे बातचीत कर रहे थे रुपेश कुमार रूप। इसी के साथ फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं।

0: उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूर संचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। परा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अनामिका श्रीवास्तव से कविता पाठ।
2: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले

0: मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गाँव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहे हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है मेरे राम। यह अयोध्या की पुण्यशीला धरा है, यह अयोध्या की पुण्यशीला धरा है जिसने अपने अंक में श्री राम को भरा है। यहाँ की पावन मिट्टी शीतल चंदन है, यहाँ की पावन मिट्टी शीतल चंदन है, रघुवंशियों की भूमि को कोटि नमन है, कोटि नमन है। शताब्दियों के स्वप्न को साकार किया है, बाल रूप में राम को देख हतप्रभ सिया है। शताब्दियों के स्वप्न को साकार किया है, बाल रूप में राम को देख हतप्रभ सिया है। रघुवर प्रेममय भाव को नवपंख मिला है, भक्त हृदय रससिक्त कुसुम खिला है। इतिहास कई यक्ष प्रश्न के साथ फिर देखिए वहीं खड़ा है। जो पूजते हो वह रूप चित्र है, चित्र से कहीं बड़ा चरित्र है। सूर्यवंश कुल शिरोमणि के चरित्र को धारो, सूर्यवंश कुल शिरोमणि के चरित्र को धारो, राम के भावार्थ को समझो और सकारो। राम राज्य के मर्म की महिमा है भारो, ज्ञान के लिए पंच विकारों को विसारो। निश्चल अतुल अनुराग से अयोध्या पधारो, निश्चल अतुल अनुराग से अयोध्या पधारो। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है माँ मुझे अफसोस है। माँ मुझे अफसोस है, जन्नत का रास्ता, जन्नत का रास्ता तेरे कदमों तले से जाता है, जन्नत का रास्ता तेरे कदमों तले से जाता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है। याद आती है तेरे पाँव के पायल की छमछम, याद आती है तेरे पाँव के पायल की छमछम, घर में गूंजती तेरी आहट की वो सरगम। बरसों से यहाँ सन्नाटा है, बरसों से यहाँ सन्नाटा है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है। हाँ हाँ चूक हो जाती तो खरी खोटी सुनाती थी, आँख दिखाती मुझे मंद मुस्काती थी। हाँ चूक हो जाती तो खरी खोटी सुनाती थी, आँख दिखाती मुझे मंद मुस्काती थी। तेरी हर सीख कई ग्रंथों का सार बताता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है। दुनिया की चकाचौंध में बौरा गया था मैं, तपिश सह न पाया मौरा गया था मैं। दुनिया की चकाचौंध में बौरा गया था मैं, तपिश सह न पाया मौरा गया था मैं। बीता कल खून के आंसू रुलाता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है। माँ ओ माँ तू कहाँ है, माँ ओ माँ तू कहाँ है, तेरा मतवाला यहाँ है, बड़ी भूख लगी है हाथों का निवाला कहाँ है, बड़ी भूख लगी है हाथों का निवाला कहाँ है। कौवा तोता मैना वो चिड़ियों का हवाला कहाँ है, कौवा तोता मैना वो चिड़ियों का हवाला कहाँ है। हृदय की पीड़ को

हृदय के पेड़ को तेरी लोरी का भुलावा कहाँ है, तेरी लोरी का भुलावा कहाँ है। समय समय हाथ के रेत की तरह फिसल जाता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है। ज्योतिया चौथ छठ जैसे नाना व्रत तेरे, रक्षा कवच बनकर चलते रहे साथ मेरे। ज्योतिया चौथ छठ जैसे नाना व्रत तेरे, रक्षा कवच बनकर चलते रहे साथ मेरे। तेरे त्याग उपवास मुझे हर बला से बचाता है, तेरा त्याग उपवास मुझे हर बला से बचाता है। बीता वो एहसास मुझे बहुत सताता है, बीता वो एहसास मुझे बहुत सताता है। वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है। मेरा रोम रोम, मेरा रोम रोम तेरा कर्जदार है, हृदय स्पंदन में तेरा प्रेम आगार है। मेरा रोम रोम तेरा कर्जदार है, हृदय स्पंदन में तेरा प्रेम आगार है। उपकार अनगिन है, काश काश कृतज्ञता जता पाता, सर्वस्व लुटाया तूने मैं तुझे सम्मान दे पाता। ये अफसोस मेरे दिल से नहीं जाता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है। आज करबद्ध प्रार्थना है सबसे, जो भूल हुई मुझसे तुम वो चूक ना करना। माँ जीवन आधार है, शक्ति स्वरूपा है, उजे समझो और जानो, वरना बाद में मुझ जैसा ही पछताओगे, गुजरे वक्त को वापस न ला पाओगे, फिर यही तथ्य दोहराओगे। जन्नत का रास्ता तेरे कदमों तले से जाता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है, वक्त रहते ये समझ में कहाँ आता है। मेरी तीसरी कविता है पेड़ ना काटो, ये एक बाल कविता है। मम्मी पापा पेड़ ना काटो, टुकड़ों में ना इनको बांटो। मम्मी पापा पेड़ ना काटो, टुकड़ों में ना इनको बांटो। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल माया देते हैं, खाद और जल से इनको पाटो। काकी काका पेड़ ना काटो, काकी काका पेड़ ना काटो, टुकड़ों में ना इनको बांटो। पेड़ हमारी रक्षा करते हैं जहरीले गैसों से, पेड़ हमारी रक्षा करते हैं जहरीले गैसों से। ये अनमोल उपहार है आंखों ना पैसों से, ये अनमोल उपहार है आंखों ना पैसों से। बुरी नज़र वालों को डांटो, दीदी भैया पेड़ ना काटो, दीदी भैया पेड़ ना काटो, टुकड़ों में ना इनको बांटो। एक साथ मिल शपथ उठाओ, एक साथ मिल शपथ उठाओ, नीम गिलोय तुलसी घर लाओ। एक साथ मिल शपथ उठाओ, नीम गिलोय तुलसी घर लाओ। जीवन से अंधेरों को छाटो, पप्पू गप्पू पेड़ न काटो, टुकड़ों में ना इनको बांटो। मम्मी पापा पेड़ न काटो, टुकड़ों में ना इनको बांटो। मेरी चौथी कविता का शीर्षक है अपना पर्यावरण बचाएं। पाषाण काल से ही प्रकृति पूजा का प्रचलन है, पाषाण काल से ही प्रकृति पूजा का प्रचलन है। विश्व गुरु का ध्येय सदा से ध्यान योग चिंतन है, विश्व गुरु का ध्येय सदा से ध्यान योग चिंतन है। जिसकी छाँव में पले बढ़े हम सुखी और समृद्ध हुए, जिसकी ममता के आंचल में कार्य हमारे सब सिद्ध हुए। जिसकी छाँव में पले बढ़े हम सुखी और समृद्ध हुए, जिसकी ममता के आंचल में कार्य हमारे सब सिद्ध हुए। सोचो क्या किए गए उपकार का बदला दोहन शोषण हनन है, क्या किए गए उपकार का बदला दोहन शोषण हनन है। अंधाधुंध जो दीत वृक्षों को जबरन हम काट रहे हैं, उनके हिस्से की धरती को टुकड़े टुकड़े बांट रहे हैं, उसी को अपने जहरीले गैसों को हवा दिया है। सोच भला इस कृत्य ने तेरा कितना भला किया है। अंधाधुंध जो नित वृक्षों को जबरन हम काट रहे हैं, उनके हिस्से की धरती को टुकड़े टुकड़े बांट रहे हैं, उसी को अपने जहरीले गैसों को हवा दिया है। सोच भला इस कृत्य ने तेरा कितना भला किया है। अति की चाह करती सदा जीवन का शमन दमन है, विश्व गुरु का ध्येय सदा से ध्यान योग चिंतन है, विश्व गुरु का ध्येय सदा से ध्यान योग चिंतन है।

0: कुछ प्रश्न खड़े हैं इस ओर, कुछ प्रश्न खड़े हैं इस ओर, देखो तो जरा चहुओर, या सूर्य का बढ़ता ताप, या हमारे कर्म हमारे पाप। कुछ प्रश्न खड़े हैं इस ओर, देखो तो जरा चहुओर, या सूर्य का बढ़ता ताप, या हमारे कर्म हमारे पाप। धरती रूखी सूखी बेजार, या किसी दुखद घटना का तार। सांसों में घुटन की बास, जैसे फीके सब प्रयास। अट्टालिकाओं की अबूझी प्यास, अपने हाथों अपना विनाश। अट्टालिकाओं की अबूझी प्यास, अपने हाथों अपना विनाश। आधुनिकता का यह कैसा चलन है, विश्वगुरु का ध्येय सदा से ध्यान योग चिंतन है। विश्वगुरु का ध्येय सदा से ध्यान योग चिंतन है। हृदय में छिद्र लिए बिलख रही ओजोन परत, हृदय में छिद्र लिए बिलख रही ओजोन परत, कृत्रिमता की ओट लिए तू गिरता जाता और गरत। हृदय में छिद्र लिए बिलख रही ओजोन परत, कृत्रिमता की ओट लिए तू गिरता जाता और गरत। वाहवाही की आड़ में कितने खिलवाड़ करेगा, वाहवाही की आड़ में कितने खिलवाड़ करेगा। चीत न पाया अब जो तू घुट घुट बेमौत मरेगा, चीत न पाया अब जो तू घुट घुट बेमौत मरेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश गढ़ेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश गढ़ेगा। हे पाषाण हृदय तेरा यह खेल सर्वस्व हवन करेगा, हे पाषाण हृदय तेरा यह खेल सर्वस्व हवन करेगा। चारों ओर फैला अपने आवरण, जिसे कहते हैं हम पर्यावरण, उसे समझो और जानो, प्रकृति के सुंदर स्वरूप का करें हम संरक्षण। इसके लिए जरूरी है हमारा आत्म मंथन, विश्व गुरु का ध्येय सदा से ध्यान योग चिंतन है। इसके लिए जरूरी हमारा आत्म मंथन है, हमारा आत्म मंथन है। मेरी एक और कविता है बोलने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है मैं बांझ नहीं, मैं बांझ नहीं। तुम कहते हो मुझमें सृजन की क्षमता नहीं, पर तुम कभी क्षण भर को सोचो, जब तुम्हारे अस्तित्व की कोई पहचान न थी, जब तुम दर दर भटकते थे, कहां कहां सर पटकते थे, मन की बात कहने में झिझकते थे। दुनिया तब भी हरी भरी थी, सुनसान न थी। मैंने सृजा तब एक घर तुम्हारे स्नेह की चार दीवारी में, विश्वास की मिट्टी पर निश्चल प्रेम के पौधों को सींचा, तुम्हारे साथ जुड़े सभी रिश्तों को सहेजा। अपनी मेहनत की पूंजी को जरूरतों की पाती में भेजा, मैंने गढ़े नए प्रतिमान, न जाने कितनी बार त्यागा निज स्वाभिमान। मैंने गढ़े नए प्रतिमान, न जाने कितनी बार त्यागा निज स्वाभिमान, कि तुम पा सको बीता सम्मान, कि तुम पा सको फिर बीता सम्मान। किंतु जो जो तुम अपने लक्ष्य को अग्रसर हुए, हाथ लगते अवसर हुए, त्यों त्यों तुम में बढ़ता देखा मैंने मैं का अभिमान। तुम्हारी दृष्टता उदंडता उत्सृंखलता पहले तुम में थी मारीच सीमाया, पहले तुम में थी मारीच सीमाया, अब दिखती है भस्मासुर की छाया, अब दिखती है भस्मासुर की छाया। बस अब और नहीं सह सकती अपमान में, सने व्यंगों में व्यंगवान तुम्हारे, नहीं त्याग सकती आत्म स्वाभिमान, सह सकती नहीं अपमान में सने तुम्हारी वो व्यंगवान। और हाँ, यह गांठ बांध लेना, कोई स्त्री बांझ नहीं होती, सृजन की उसकी प्रवृत्ति है, सृष्टि ही उसकी प्रकृति है। कभी सोचा है, कभी सोचा है भी क्या कि तुमने वो नौ माह का आधार क्या है, इसलिए दुर्गा का नौ अवतार है। और जब वो मांस के लोथड़े नहीं रचती तो समझ लेना कि कुछ बृहद रच रही है, कुछ अप्रतम गढ़ रही है, जो तुम्हारी सीमा के परे है, जिसमें नूतन भविष्य के बीज गड़े हैं। मैं अस्त हो जाऊं वो सांझ नहीं, मैं अस्त हो जाऊं वो सांझ नहीं, स्त्री कभी बांझ नहीं, हाँ मैं बांझ नहीं, हाँ मैं बांझ नहीं।
1: अनामिका श्रीवास्तव से अभी आप कविता पाठ सुन रहे थे। इसी के साथ पराग कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देशगान।

0: उदित नारायण और भूपिंदर सिंह की आवाज़ में अभी आप देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम छोटे से अंतराल के बाद।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट

विकास कार्य करने वाली मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गाँव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। अनवर और लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए ही रांझा फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आसपास में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीर रांझा से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। कैफी आज़मी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। गीत मजरू

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मनचली फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म दो रास्ते से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आना मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना।

इस गीत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। साथ ही एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाले रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4

पृष्ठ कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्याज के खरीद मूल्य को संशोधित करके 1650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 थानाध्यक्षों समेत 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है। गौरतलब है कि देर रात सड़क दुर्घटना में मधेपुरा जिले के अरार थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, बेलाड़ी थानाध्यक्ष नीरज कुमार और रतवारा थानाध्यक्ष साजन कुमार और कार चालक की मौत हो गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को खत्म करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नागरिकों से बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण बचपन को और अधिक सशक्त बनाने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी लोगों से बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहने की अपील की है। वहीं श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार अभियान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में मॉनसून के प्रभाव से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने शराब, मादक पदार्थ और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के अय्यापुर मोहल्ला से पुलिस ने एक ऑटो पर भारी मात्रा में शराब के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
5: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی حکومت نے ادارہ جاتی، صنعتی اور کمرشل صارفین کو خوردہ فروختگان سے

0: मोटर इंजन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। ये फैसला मगरबी एशिया में तनाज़े के सबब आलमी सप्लाई सीरीज में आई रुकावटों के दरमियान मकामी सतह पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि ये पाबंदी 90 दिनों तक नाफिज रहेगी। खुर्दा फरुख्तगान को हिदायत दी गई है कि वो फी सारिफिन यौमिया ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही फरोख्त करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाले नीट UG दोबारा इम्तहान देने की मुद्दत कार को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नई औकात दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगी। तरमीम शुदा इम्तहान की मुद्दत में लाजमी इम्तहान फॉर्मेलिटीज़ के लिए ज़रूरी वक्त शामिल है। साथ ही एजेंसी ने सवालनामों के साथ दी जाने वाली रफ़ वर्कशीट को 2 सफ़ात से बढ़ाकर 4 सफ़ात कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने प्याज की खरीद कीमत को तरमीम करके 1,650 रुपये फ़ी क्विंटल कर दिया है। सारिफीन उमूर खुर्दनी अशिया और अवामी निज़ाम तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। देही तरक्यात के वजीर शरवन कुमार ने कहा है कि वजीर आजम रहाइश मनसूबा देही के लिए 2,365 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने पटना में कहा कि इस फंड से नामुकम्मल रहाइशों की तामीर के अमल में तेजी आएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत की तरजीह है कि हर गरीब का अपना घर हो। हिंदुस्तानी निशानेबाज और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल फातह जसपाल राणा की आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। वो 49 बरस के थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आला सम्राट चौधरी ने बेगूसराय के साहिबपुर कमाल थाना इलाके में सड़क हादसे में 3 थाना इंचार्जों समेत 4 लोगों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हुकूमत सोगवार कुंभों के साथ है। गौरतलब है कि देर रात सड़क हादसे में मधेपुरा जिला के अरार थाना इंचार्ज अमरिंद्र कुमार, बेलारी थाना इंचार्ज नीरज कुमार और रतवारा थाना इंचार्ज साजन कुमार और कार ड्राइवर की मौत हो गई थी। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में अतफाल मजदूरी की लानत को ख़त्म करने और लोगों को उसके तहीं बेदार करने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। इस साल इस दिन का थीम है अतफाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए गैर जानबदाराना खेल, बालिगान के लिए काबिल एहतराम काम। इंसदाद अतफाल मजदूरी के दिन के मौके पर पूरी रियासत में कई बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस मौके पर वजीर आला सम्राट चौधरी ने रियासत के लोगों से बच्चों की हिफाजत, उनकी तालीम, सेहत और काबिल एहतराम बचपन को मजीद मजबूत बनाने की दरख्वास्त की है। नायब वज़रा आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी लोगों से बच्चों को उनके हुकूक दिलाने के लिए पुरअज़्म रहने की अपील की है। वहीं वसाइल मेहनत के वजीर अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि रियासती हुकूमत अतफाल मजदूरी से पाक बिहार मुहिम के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। रियासत में मानसून के असर से बारिश की सूरत हाल बदस्तूर कायम है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में जबरदस्त बारिश की वार्निंग जारी की गई है। इधर रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। अररिया जिला के अलग अलग थाना इलाकों से पुलिस ने शराब, नशावर अशिया और ममनुआ कफ सिरप के साथ 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा नगर थाना इलाके के यहियापुर मोहल्ला से पुलिस ने एक ऑटो पर से कसीर मकदार में शराब के साथ 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो या ओ लेवल या CCC लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु

0: 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक अप्रेंटिस के कुल 7,150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी के लिए www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो के घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर

0: शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए

0: खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया

0: के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। 1 महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत है रविंद्र जैन का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सागर के गीत में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। अगले गीत में लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म घर में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर को लीजिए सुनिए फिल्म रामपुर का लक्ष्मण में। गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

अनामिका फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और संगीतकार थे आंडी बर्मन। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम 4:28 से। तब तक के लिए आज्ञा दें, जय हिंद।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अच्छा। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: आजी,
0: जी
1: मैं चांदनी जी बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़
0: चांदनी जी,
1: बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है।
1: जी
0: चांदनी जी
1: जी
0: क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: जी, क्या
1: बस
0: बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना
1: जी
0: चांदनी
1: जी
0: जी। अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम,
0: अच्छा,
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है, एक
0: अच्छा,
1: गुड़िया
0: क्या
1: है
0: बात
1: मेरी।
0: है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो, तो हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा। हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे, और खाकी कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले,
0: जी
1: खाकी
0: जी
1: कवर
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे, फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे, उसके बाद
0: हाँ
1: फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया मम्मी हमको भी लगा के दीजिए, तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि
0: क्या
1: बच्चों
0: बात।
1: को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे, और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना
0: बिल्कुल,
1: है।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी।
1: जी
0: आज
1: जी
0: बताइए,
1: जी
0: आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान, गाने के बोल है मैं ना भूलूंगा
0: मैं
1: मैं ना
0: ना
1: भूलूंगी।
0: भूलूंगी। तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जय सवाल बोल रहे हैं झांसी से। हाँ
0: झांसी से धन्नो जायसवाल।
1: जा,
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी। जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी
1: हाँ,
0: कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे, तो
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे। हाँ
0: इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए
1: हाँ,
0: आप ही
1: तुम
0: की
1: बिन तुम बिन।
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ,
0: जी
1: आप बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको नाखुदा माना है, खुद से हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये मेरी दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी
1: छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है, तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से। हाँ
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन? क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं
1: कुछ
0: आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैं कुछ हूँ। और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, टाटी चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन
1: हाँ
0: दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: बहुत
0: और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप होके भी बहुत काम करते हैं। स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का
1: हाँ
0: साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
1: हाँ
0: हैं, सभी
1: यस
0: का एक
1: हाँ हाँ
0: अपना अपना
1: यस
0: अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना
1: बहुत बहुत बहुत। हाँ
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी
1: हाँ
0: हैं?
1: हाँ मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है। और मिस्टर जो है वो काम भी करते थे यहाँ पे।
0: जी जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं, है ना, तो उन दिनों
1: हाँ
0: में
1: यस
0: बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते थे, वो पढ़ाई में से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है, तो फिर ये बुक लो, बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, जिसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू, तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
1: ओ बहुत बहुत।
0: करते थे?
1: हाँ ये शाम भी करते थे ना, वो उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
0: हाँ
1: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना
1: बहुत बहुत मैम,
0: जी। आपसे बात करके हमें
1: बहुत बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
1: हाँ
0: बताइए, आप
1: हाँ
0: कौन सा
1: मुझे
0: गीत
1: जिंदगी
0: सुनना चाहती हैं?
1: हर कदम एक नई जंग
0: अच्छा, तो आपके पति को
1: है,
0: पसंद है इसलिए
1: उनको
0: आप सुनना चाहती हैं।
1: पसंद है। बहुत पसंद है यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी, मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी, मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं, कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी, मैं मंचन भी करती हूँ। मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी,
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी। ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत, उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम, साधना
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से। मैं
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में, गाने
0: जी
1: का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की। पापड़
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती
1: बना
0: हैं।
1: के ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते,
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के। जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला, और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश, ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल,
1: अग्निपथ का।
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। हाँ
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: जी, ये छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहां पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं कोटपुतली में, करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है
0: बहुत अच्छी बात
1: इसलिए।
0: है।
1: हाँ
0: तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
0: जी
1: होगा, तो
0: बिल्कुल जी
1: इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर
0: जी
1: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा, अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते। ये तो बताइए, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके। तो
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी, सिकंदरा से। तो ये इसके आसपास
1: जी,
0: कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है और
0: अच्छा
1: बालाघाट है।
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी
1: हाँ,
0: है।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी।
0: जी, तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ, देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा हैं, के पति हैं, दो बच्चे हैं, देवर
0: जी,
1: के एक है, एक मेरा हूँ। हाँ
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं, छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी ये मतलब 14 तारीख को हो जाएगा, 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं
0: अच्छा।
1: दूरबीन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय ही मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ
0: जी
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ, बिल्कुल यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई है मम्मी करी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से मैडम जी।
0: जी। ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा ताराना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियो, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की, और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02-2400-2462, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02-2400-2466, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02-2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02-2-2867-0288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता

और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
1: कोई जरूरत नहीं है।
0: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
1: नहीं।
0: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो।
1: नहीं।
0: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
1: पक्का ना?
0: हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूमकर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
1: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
0: क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
1: पर बताना तो पड़ेगा ना?
0: पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम।

ठंडी आंखें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है, तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी, लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है,

लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना। बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली, क्यों दीदी नहीं आई। चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है। हाँ, तो क्या हुआ, क्यों मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या। बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है, अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए। 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या?

मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो। आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद हैं। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक ओर बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जमा दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी, और? हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, नहीं तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आईं, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं,

भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे, ये बता अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है, और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है।

कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ न कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी, लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था।

की थी, लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहाँ अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: उस रोज मोबाइल किलिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे?
1: मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ।
0: फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया।
1: नहीं आई बस।
0: अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे।
1: क्या?
0: मिलकर बताती हूँ।
1: अरे बताना।
0: नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा।
1: पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी।
0: अरविंद के बारे में है।
1: अरविंद?
0: हाँ।
1: क्या हुआ अरविंद को?
0: कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली।
1: अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में?
0: आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी।
1: मैं आऊँ यूनिवर्सिटी?
0: नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं

0: तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी, लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा, लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं, जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से हो के मजबूर चला।

मीडियम वेव 483.1 मीटर 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बज चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी पटना। प्रोग्राम है युवाणी और अभी आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट और दोस्त नेहा वत्स को। और दोस्तों, आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो दोस्तों, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में ये लाइन तो ज़रूर सुन रखी होगी कि जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। इसके अलावा दोस्तों, इंग्लिश में भी एक सेइंग है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी दोस्तों, भाषा चाहे जो कोई भी हो, बात कुल मिला के इतनी सी है कि सही समय पर सोना और जगना हमें पूरे दिन के लिए बेहतर ढंग से तैयार करता है। और दोस्तों, ख़ास तौर से आज के समय में जब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और देर रात तक अलग अलग कारणों से जो हम जागते हैं, इस आदत के कारण हम में से अधिकांश लोग देर से सोते हैं और सुबह फिर देर से उठते भी हैं। और इसका रिजल्ट यह होता है कि हम दिन भर आलस, थकान और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। समय पर नहीं उठ पाने के कारण हमारे बहुत से कामों में भी डिले होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन बना रहे, हम टाइम का सही तरीके से यूज कर पाएँ और सक्सेस पाएँ, तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठने की आदत जरूर डेवलप करें। दोस्तों, हो सकता है कि शुरू शुरू में ये थोड़ा टफ लगे, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी तब मुश्किल नहीं लगेगा। दोस्तों, टाइम पर सोना और टाइम पर जगना हमें पूरे दिन के लिए बेहतर ढंग से तैयार करता है। हम रात में सही टाइम पर सोएंगे तभी सुबह सही टाइम पर जग पाएंगे। और दोस्तों, सुबह जल्दी जगने के बहुत से फायदे हैं। सुबह हमारा शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है जो कि स्ट्रेस को कम करता है। यानी सुबह जगना हमारे तनाव को कम करने में मदद करता है। सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेने से दिमाग में हम ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे कि सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता में विकास होता है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स को तो कहीं ज़्यादा इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप सुबह उठो, सुबह की खुली हवा में सांस लो, सुबह पढ़ाई करो, क्योंकि सुबह याद की हुई चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। यानी दोस्तों, सुबह जल्दी जगना हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दो

दोनों के लिए ही बहुत लाभदायक है। और दोस्तों, प्रोग्राम में हमारी बातें तो अभी बहुत सी हैं आपसे करनी, लेकिन आइए प्रोग्राम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं ये पहला ट्रैक।

शिल्पा राव की आवाज़ में अभी हम सुन रहे थे लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल से ये ट्रैक। और अब आइए दोस्तों बात करते हैं आज एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं

बल्कि पूरी मानवता के सामने एक गंभीर चुनौती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज मनाए जा रहे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन के बारे में आपको बताएं तो हर साल 12 जून की तारीख को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को बाल श्रम की समस्या के प्रति जागरूक करना, साथ ही बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और उनके सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिलाना है। दोस्तों, बचपन जीवन का सबसे सुंदर और सुनहरा समय होता है। ये वो अवस्था है जब बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, खिलौने और सपने होने चाहिए। उन्हें स्कूल के मैदानों में खेलना चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए और साथ ही पढ़ाई करके अपने भविष्य का निर्माण भी करना चाहिए। लेकिन दुख की बात ये है कि दुनिया के करोड़ों बच्चे आज भी गरीबी, मजबूरी और सामाजिक असमानता के कारण बाल श्रम करने के लिए विवश हैं। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं होटलों, ढाबों, कारखानों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, जबकि यही वो टाइम है जब उन्हें स्कूल में होना चाहिए। तो दोस्तों, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये किसी भी देश का भविष्य है। हमारा पूरा फ्यूचर इन बच्चों पर डिपेंड कर रहा है। एक बच्चे के लिए शिक्षा उसके रोजगार का साधन तो बनता ही है, साथ ही उसके सर्वांगीण विकास का माध्यम भी बनता है। तो वहीं बाल श्रम बच्चों के वर्तमान के साथ साथ भविष्य दोनों को ही प्रभावित करता है। दोस्तों, ऐसे अगर हम समझें कि बाल श्रम क्या है, तो जब भी किसी बच्चे से उसकी उम्र के अनुसार कोई भी अनुचित या फिर खतरनाक काम कराया जाता है, जिससे कि उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास प्रभावित हो रही हो, तो उसे हम बाल श्रम कहते हैं। दोस्तों, बाल श्रम के वैसे तो कई कारण हैं, हम आगे भी प्रोग्राम में बातें आपसे करेंगे। आइए अभी पहले हम सुन लेते हैं प्रोग्राम में ये अगला ट्रैक।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे हिचकी मूवी से ये ट्रैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी और अभी दोस्तों हम इस ट्रैक से पहले बात कर रहे थे आज मनाए जा रहे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में। तो दोस्तों हमने बात की कि बाल श्रम क्या है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि आखिर ये बाल श्रम क्यों है। तो दोस्तों पहला और सबसे बड़ा जो कारण है जिम्मेदार जो इस चीज़ के लिए वो है गरीबी। जब परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम पर भेजने के लिए कई बार मजबूर हो जाते हैं। कई परिवारों में दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता है, इसलिए बच्चों की कमाई परिवार की जरूरत बन जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है अशिक्षा। जब माता पिता शिक्षा के महत्व को नहीं समझते तब वो बच्चों को स्कूल भेजने की ज़रूरत ही नहीं समझते। उन्हें लगता है कि पढ़ाई में समय और पैसा खर्च करने से बेहतर है कि बच्चा कुछ कमाने ही लगे। तीसरा कारण है दोस्तों बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा। यानी जब परिवार के बड़े सदस्यों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिलता तब बच्चों पर भी काम करने का दबाव बन जाता है। कई बार बच्चे परिवार की आय का महत्वपूर्ण स्रोत भी बन जाते हैं। चौथा कारण है दोस्तों सस्ती मजदूरी की मांग। यानी कुछ लोग बाल श्रम को एक सामान्य बात मान लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो कम पैसे में अधिक काम करवा रहे होते हैं बच्चों से, और ये कितना गलत है। यही कारण है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में, कुछ बिजनेसेस में बच्चों को रोज़गार सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि वो बड़ों से कम पैसे में काम करेंगे। दोस्तों ना तो ये सिर्फ कानून के विरुद्ध है बल्कि बच्चों के अधिकारों का भी साफ साफ उल्लंघन है। कई लोग बाल श्रम को एक सामान्य बात मान लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि एक काम करता हुआ बच्चा केवल मजदूरी नहीं कर रहा होता है बल्कि उसका बचपन, उसकी शिक्षा और उसका भविष्य उससे छीन रहा होता है। दोस्तों बाल श्रम के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इससे बच्चों की शिक्षा छूट जाती है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी प्रभावित होता है और वो पूरी जिंदगी के लिए इस गरीबी और संघर्ष के चक्र में फंसे रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो बाल श्रम है इसे समाप्त करने के लिए तो हमारी सरकार ने बहुत सी प्रावधान लाए हैं, बहुत से कानून बनाए हैं। दोस्तों इस ओर कानून की बात करें तो हमारा संविधान बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा भी कई तरीके के कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं बाल श्रम को रोकने के लिए, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से दोस्तों इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता। बाल श्रम खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि ये हम सब का कर्तव्य है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें, समाज में जागरूकता फैलाएं, इस चीज़ की ओर ध्यान दिलाएं कि एक बच्चे की पहचान मजदूर के रूप में नहीं बल्कि एक बच्चे, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बचपन किसी फैक्ट्री में नहीं स्कूल में खिलता है। हर एक बच्चे का अधिकार है शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। और जब तक एक बच्चा भी शिक्षा से वंचित होकर मजदूरी करने को मजबूर है तब तक हमारा विकास अधूरा है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि बाल श्रम केवल बच्चों की नहीं पूरे समाज की समस्या है। तो दोस्तों हमारी बातें प्रोग्राम में आगे भी जारी हैं। अभी आइए इस प्रोग्राम में सुनवाते हैं आपको ये अगला ट्रैक और सेलिब्रेट करते हैं बच्चों को, उनके बचपने को।

शान की आवाज़ में अभी हम सुन रहे थे तारे जमी पर मूवी से ये ट्रैक। और अब दोस्तों आपको बताते हैं कुछ रोचक तथ्य जो कि जानवरों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों हम हमेशा से सुनते आए हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, लेकिन दोस्तों गिरगिट जो है वो अपना रंग सिर्फ छिपने के लिए नहीं बदलते, बल्कि टेम्परेचर और मूड के हिसाब से बदलते हैं। इनकी स्किन में स्पेशल सेल्स क्रोमेटोफोर्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईगल ईगल की आई साइट जो होती है वो इंसानों के मुकाबले 4 से 5 गुना

0: ज़्यादा तेज़ होती है। ये बहुत ऊंचाई से भी छोटे शिकार को साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कुत्तों की, तो डॉग की स्मेलिंग सेंस इंसानों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती है, इसीलिए वो ड्रग्स, बॉम्ब्स और कई तरह की बीमारियां तक डिटेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ऑक्टोपस जो है वो सिर्फ रंग नहीं बदलते बल्कि अपने शरीर का शेप और टेक्सचर भी बदल सकते हैं। वो रॉक या फिर कोरल जैसे दिख सकते हैं और पूरी तरह से छिप सकते हैं। दोस्तों हमिंगबर्ड ये हवा में एक जगह स्थिर रह सकते हैं और ये उल्टा भी उड़ने में सक्षम है, जो कि बहुत ही रेयर चीज़ है। तो दोस्तों आपको बताई ना हमने बहुत ही रोचक जानकारियाँ जानवरों से जुड़ी हुई। अब आइए दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आपको प्रोग्राम में ये आखिरी ट्रैक।
1: Natural night. Do you feel alright? Wanna natural night?

शान वसुंधरा दास की आवाज़ में अभी हम सुन रहे थे कभी अलविदा ना कहना मूवी से ये ट्रैक। और इसी के साथ दोस्तों, अब स्टूडियो की घड़ी ने कर दिया है इशारा, हो गया है समय हमारे जाने का। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखिए अपना और अपनों का। और अब दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट और दोस्त नेहा वत्स को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आरती सुनने वाला हमारे सभन सुनिहार लोगिन के राहुल विनीता के एक बार फिर से प्रेम भरल नमस्कार। आज दिन शुक्रवार है और आज हमने नापन कार्यक्रम के दौरान रुआ सभन के फिल्म संगीत जरूर सुनवाए। आ देखिए हम अपन हमेशा नियन निमन निमन जानकारी भरल बात के साथ है रुआ सभी खातिर वार्ता भी लेके आई ला। तो आज के वार्ता सुनल जाए विषय बारा शुरुआत की भावना ब्रजभूषण मिश्रा जी से। लेकिन उससे पहले बात करी हम गर्मी के मौसम के, तो गर्मी के ए मौसम में सभन स्कूलन में छुट्टी चला था आ इहे छुट्टी में बाल बच्चा लोग नानी घरे मामा घरे आजी घरे घूमे आयल बारन लोग। खूबे मस्ती मजा चल रहल बा, घर भरल बा, दिन रात के फरके नहीं खे बुझात। अब साच पूछी तो इ चहल कदमी में मन तो खूब लागता, लेकिन इहे चहल कदमी के साथे साथे अगर हम बात करी एगो और बात के, काहे कि मस्ती मजा बचपन लोग तो कबे करी हैं, बड़ा होखला के बाद तो सभी के

के जिम्मेदारी के बोझ उठा वहीं पड़े ला। ऐसे इहे बचपन तक बा जौना में बिना कोनो गम फिकिर के बाल बच्चा खेलेला खाला आ तहलका मचावेला। लेकिन जाना तनी इहे छुट्टी में हमहूँ हाल ही में घूमे बहरा गइल रही, खूब मन लागल। लेकिन एगो ऐसन बात देखनी जिससे मन भारी भ गई, जहाँ ई कुड़िया हमनिन सबन अपन लइकन के इतना लाड दुलार में पालेला, पढ़ाईला खियाईला घुमाईला, उहो में दूसरका तरफ कुछ मजबूरी के चलते छोट छोट लइकन के काम करे पड़ेला। जौना उमिर में लइकन के हाथ में किताब बस्ता आ खिलौना होखे के चाही, ओह उमिर में उनका हाथ में हथौड़ा आ कपार पर भारी बोझा आ गोड़ में फाटल बेवाई देख के साँचो करेजा काँप जाला। का भ गइल बा हमने इनके समाज के, जहाँ छोट छोट लइकन से बाल मजदूरी करवावे लगा तारे लोग। उसन कोनो लइका जे कनहु ईंटा ढोत। ईंटा ढोत चाहे सड़क किनारे कबाड़ी चुनत, कोनो ढाबा में बर्तन मांजत, देखाई दे जाले तो साँचो ओकर मरत बचपन देख के आँखी भर जाला। ओह लइकन के पढ़ाई तो छुटिए जाला आ साथ ही कमे उम्र से भारी भारी काम कैला से देहो कमजोर हो जाला। खेले खाए के उम्र में उ तनाव के शिकार हो जालन। ऐसे बहुत जरूरी बा कि हम निना अपन आँख खोली आ तनिका एह पर ठोस कदम उठाएं। सरकार एक खातिर बाल श्रम निषेध कानून बनवले बारन, लेकिन जब तक हम आप ना जागब तब तक ई पाप ना रुकी। कोनो दुकान होटल कारखाना में अगर कोनो छोट लड़का से काम करवावल जाता तो ओकरा खिलाफ आवाज उठाई। हमनीने के लड़का ऐसन ओहो केहू माई बाप के दुलड़ैता होखी, बस 2 पैसा के लाचारी में वो ऐसन काम करे लागले। लेकिन हमारा और फर्ज है कि वैसन लड़कन के स्कूल भेजल जाओ। सरकार ओ खातिर एकदम मुफ्त पढ़ाई या खाना के इंतजाम कैले बारे, ओकर फायदा उठाई लड़काई बचाई, तबे नु देश बाची। आ यही के साथे सुनी सभे ई फिल्म संगीत।

0: तब कैसन लागल रहे नू बहुते नीक ई गाना, कब हुई है गवनवा हमार फिल्म से मोहम्मद रफी जी के आवाज में ई गाना रहे। आगे भी इसने नीक फिल्म संगीत हम जरूर सुनवाएं रुआ सभी के, लेकिन यही के साथे हम एगो औरी बात रुआ सभी से कहल चाहब कि कितना भी ऐसा होकेला कि कोनो विपदा चाहे काम अचके पा जाला आ ओह घड़ी हाथ खाली रहेला, आ ऐसा स्थिति में आँखी त अन्हार होके लागेला कि अब का करी। दुख के ओह बेरा में कोनो आपन पराया से मदद मंगला पर भी कबहू कबहू ना सुने के पड़ जाला। तो हम आज इहे बात रउआ सभी के कहल चाहतनी कि भविष्य खातिर बचत बहुत जरूरी होला। रुआ सभी जरूर सुन ले हुकम कि बूंदे बूंदे घरा भरेला, ऐसे इ महंगाई के जमाना में जहाँ आमदनी अठन्नी या खर्चा रुपया हो जाता ई ना होखे के चाहिए। कमाई हो तो देर ना लागे, मुदा हाथ से पैसों कैसे फिसल जाला ई हो ना बुझाए। ऐसे बहुत जरूरी बा कि 4 पैसा में 2 पैसा बचावल जाओ आवे वाला समय के खातिर। ई सोच की कि आज के खूब ऐसो आराम से जी लेवल जाओ, काल के काल देखल जाए, ई एकदम गलत सोच बा। कौनो घटना दुर्घटना बता के ना आवे, ओकर इहे बचल का पैसवा काम आवेला। आज के जमाना में देखते बनी रहुआ सभी की पढ़ाई चाहे ब्याह शादी कितना महंग भ गइल बा, ऐसे थोड़ो थोड़ो अगर बचाएं तो उहे पैसवा आगे चल के राउर अराउर लइकन के सपना के पूरा करी। इतने ना राउर बुढ़ारी में भी जब हाथ गोर काम कइल बंद कर दिनो तो उहो घड़ी केकरो आगे रुआ हाथ ना फैलावे पड़े, आ एह खातिर आजे से बचत जरूरी बा। एह खातिर बस तनिका प्रयास के जरूरत बा। जब राउर हाथ में पैसा आवे तो पहले बचत खातिर ओह में से पैसा निकाल लें, तब वह पैसा से घर चलाएं, ऐसे फिजूल खर्ची पर लगाम लागे। आ सरकार भी रो पैसा बचावे खातिर छोट छोट योजना चलवले पर, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना भइल, पोस्ट ऑफिस बचत भइल, अटल पेंशन योजना भइल, ये सबन से पैसा तो जमा हो कबे करी, राउर पैसा सुरक्षित रहला के साथे साथे बढ़वो करे। तो देखी आज से नियम बनाए, चाहे 10 रुपया होके 100 होके, मुदा बचत जरूर करम सभे। आज जौन पैसा के रुआ बचाइब नु उहो पैसवा काल के रउआ बचाई। तो चली अब नीक नीक बातचीत के जोर ही लगले एगो वार्ता भी हम रुआ सभे के सुनवाइए दही श्री ब्रजभूषण मिश्रा जी से, जेकर विषय है राष्ट्रवाद के भावना। तो सुनी सभे ए वार्ता के।
1: आज के विषय बा राष्ट्रवाद के भावना। ऐसे तो राष्ट्रवाद के अर्थ अपना राष्ट्र के प्रति निष्ठा प्रेम समर्पण त्याग ओकर उन्नति बढ़ंती या ओकरा के बनौले बचौले राखे के सोच विचार होला। ई खलीसा विचारे तक बन्हाई ना रहेला, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान भाव राखे वाला हर व्यक्ति के क्रियाकलापों में शामिल होला। राष्ट्रवाद के भावना के समझे खातिर कुछ बिंदुअन पर विचार जरूरी बा। साझा पहचान राष्ट्रवाद का भावना के जड़ है, जौन जाति इतिहास परंपरा भाषा संस्कृति भौगोलिक क्षेत्र चाहे कौनो और विशेषता पर आधारित होला। राष्ट्रवाद के भावना कौनो आपत विपत में पैदा होला जे राष्ट्र के निवासियन के एकजुट कर देवेला। एक लेखे राष्ट्रवाद के भावना राष्ट्र के स्वतंत्रता संप्रभुता के इच्छा के चलते जागेला आ ना चाहेला कि ओकर कौनो तरह के दूसरा देश के बाहरी नियंत्रण होखे। राष्ट्रवाद के भावना राष्ट्र के निर्माण खातिर आजादी बराबरी उदारता या भाईबंदी के जरूरी समझेला। राष्ट्रवाद के भावना के देशभक्तियों से जोड़ल जाला, एह में देश से प्रेम आ ओकरा भलाई के भावना भरल रहेला। कतिपय विचारक लोग राष्ट्रवाद के भावना में संकीर्ण भाव आ धार्मिक भाव के पैसार मन लेबा। सब बात पर विचार करके देखी

भीतर राष्ट्रवाद के भावना अपना राष्ट्र के प्रति गहिरा प्रेम निष्ठा या समर्पण के भावना ह जो ओकरा निवासी लोग के एगो साझा पहचान देवेला आ एक उद्देश्य एकजुट करेला चाहे राखेला और राष्ट्र के संप्रभुत्व आ प्रगति खातिर बढ़ावा देवेला। कुछ लोग राष्ट्रवाद के उदय यूरोप से मान लेबा, बाकी भारत के विचारक लोग भारत में वैदिक काल से एकर उदय मानेला। अथर्व वेद के पृथ्वी सूक्त में कहल गईल माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या ऐसन पाती से तई अपना विस्तार के छोट चौहद्दी से निकल के बढ़ा देत बा। वसुधैव कुटुम्बकम के भावना त भूमि के कौनो छोटहन टुकड़ा से बढ़ के सौंसे संसार के एगो परिवार मानत बा। भारतीय विचारधारा में कतही से संकीर्ण भाव नहीं राखत। भारत में राष्ट्रवाद के अवधारणा सांस्कृतिक प्राकृतिक बा। वाल्मीकि रामायण में कहल बा जननी जन्म भूमिश्य स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसे भारतीय मान्यता बा कि जन्म स्थान स्वर्गो से बढ़ के है, अपना जन्म भूमि से प्रेम राष्ट्रवाद के भाव राखत बा। नदी संस्कृति के वाहिका है तो प्रकृति के तत्व भी है। हमने के यहाँ पर्व त्यौहार पूजा अनुष्ठान सब प्रकृति से जुड़ल बा। पूजा अनुष्ठान के समय जल शुद्धि खातिर सात गो पवित्र नदियन के आवाहन कई जाला। ओम गंगे च जमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। अब देखी तो पूर्व से पश्चिम ले आ उत्तर से दक्षिण ले, यह नदियन के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व बा। विष्णु पुराण में तो राष्ट्र भावना अपना चरम पर दिखाई पड़त बा। एह में भारत वर्ष के यशगान धरती पर सड़क के रूप में कई गई बा। अत्रापि भारत श्रेष्ठम जम्बू दीपे महागने यतो हि कर्म भूरेशा हत्यो अन्या भोग भूमय गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्या स्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप स्वर्गास्पद मार्गे भूते भवन्ति भूतः पुरुषा सुरत्वात्। ऐसन उक्ति या कथन भारतीय दर्शन में भरल पड़ल बा जे भारत वर्ष के प्रति श्रद्धा या प्रेम के प्रगट करत बा। भारत पर कम आक्रमण नहीं भइल आ जब जब भइल बा तब तब ई राष्ट्रवाद के भावना जागल बा, अपना राष्ट्र के रक्षा खातिर जूझल बा। ई अंग्रेजन के खिलाफ अपन भूमि या अधिकार खातिर लड़ल गई पहला लड़ाई रहे जब फतेह बहादुर शाही थुआ के राजा रही या वहाँ का अंग्रेजन के खिलाफ लड़ रही। 1857 ईस्वी में भोजपुरिया मंगल पांडे सिपाही विद्रोह शुरू कैलन आ पहला स्वतंत्रता आंदोलन के लड़ाई जौन लोग लड़ल ओह में भोजपुरिया वीर कुंवर सिंह अग्रणी रहनी। अंग्रेज के खिलाफ तनी मनी जौन कामयाबी मिलल उ कुंवर सिंह का मिलल। कुंवर सिंह अंग्रेजन के गोली से घायल अपन बाह काट के गंगा जी में बहवा दिली आ राष्ट्र प्रेम के अद्भुत उदाहरण पेश कैली। भोजपुरी लोग कुंवर सिंह के स्वर्ज गाथा गा के राष्ट्रवाद के भावना खूबे बढ़ावल। जब ही कुंवर सिंह खिचले लगमिया घोरा उड़ी चलल आकाश फर फर फरेला विजय के पतखवा झनर झनर बाजे तरुआर। कुंवर सिंह के साथ देवे वाला हथुआ राज के राज कवि तोफा राय ओह युद्ध के आखिन देखल वर्णन करत 50 वो कविता लिखली जे राष्ट्रवादी भावना बढ़ावे वाला रहे। एक वंश देखी झूमत कुंवर बाका वैसे रणबीच जैसे कोपित सिंह दहारत हाथी दल पैठल नु। रघुवीर नारायण के रचना 1911 ईस्वी में राष्ट्र जौन बटोहिया राष्ट्रगीत में भारत के विशेषता के बर्णाका आयल। गंगा रे जमुनवा के झगमग पनिया से सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत निशिति ने सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। इतने ना यह गीत में राम कृष्ण बुद्ध विक्रमादित्य शिवाजी व्यास वाल्मीकि गौतम कपिल रामानुज रामानंद विद्यापति कालिदास कबीर सूर तुलसी जयदेव की याद करा के भारत भूमि के प्रति अनुराग भाग जगावल गई बा। बिहार का चंपारण में निलहा अंग्रेज लोग के अत्याचार से परेशान किसान लोग की समस्या बढ़ गई रहे। किसान राजकुमार शुक्ल के कोशिश से महात्मा गांधी चंपारण आनी आ वहाँ के त्याग्रह का पहल सफलता मिलल जौन राष्ट्रवाद के चेतना के बढ़ौलस। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन आगे बढ़ल। राष्ट्रवाद के भावना से अंग्रेज लोग के क्रियाकलाप के विरोध होके लागल। भारत के कुटीर उद्योग कृषि के विनाश आ जालियांवाला बाग के नरसंहार के व्यापक विरोध भइल। मनोरंजन बाबू फिरंगिया लिख के विरोध कैले जहाँ थोड़े ही दिन पहले ही होत रहे लाखों मन गल्ला वो धान रे फिरंगिया उहे आज हाय राम माथवा पर हाथ धरी बिलक के रोवेला किसान रे फिरंगिया। भारत के छाती पर भारत के बचवन के बहल

कतवा के धार रे बटोहिया, छोटे छोटे लाल सब बालक मदन सब तरपी तरपी दे जान रे फिरंगिया। क्रांतिकारी आंदोलन सब राष्ट्रवाद के भावना से ओतप्रोत रहे आ देश के स्वतंत्रता करावे खातिर खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुरसेन, बाघा जतीन, बीना बसु, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता जैसन कितने लोग अपन बलिदान दे दीहल। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रवाद के अवधारणा पर आधारित रहे जे भारत के स्वतंत्रता संप्रभुता खातिर 1942

0: अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रवाद के अवधारणा पर आधारित रहे जे भारत के स्वतंत्रता संप्रभुता खातिर 1942 में भइल रहे। आखिरकार 1947 ईस्वी में भारत आजाद भइल और एगो संप्रभु राष्ट्र बनल। छोट छोट रियासतन के मिला के सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कनिया यह देश के एगो भौगोलिक मजबूती दिली। ओकरा बाद से जब जब राष्ट्र पर संकट आयल, चाहे चीन के साथ 1962 ईस्वी के युद्ध होके, चाहे 1965 ईस्वी या 1971 ईस्वी के पाकिस्तान के साथ युद्ध होके, चाहे 1999 ईस्वी के कारगिल युद्ध, राष्ट्रवाद के भावना उफान मारत रहल। जब जब कोनो आतंकवादी हमला होला तो राष्ट्रवाद के भावना जाग जाला आ देश आवासियन के भाव विचार से करेला। भोजपुरिया समाज में राष्ट्रवादी भाव कूट कूट के भरल बा। तब तो चिन्ह युद्ध के समय गणेश दत्त किरण के स्वर में चीन के धमकौलस, धई के कचारब लथारब हम पटक पटक बांधब मुसुकदू नो बाहिन के चौर चौर, छरपट छोड़ाई देव थूर देव लोल दूनो ठेंगन ठेठाई देव हुमच हुमच ठौर ठौर। तो अनिरुद्ध जी के स्वर में अपना लोक के युद्ध खातिर आह्वान कैलस, आज महाभारत में देश के पुकार बा, कर्म के गुहार बा, सामने पहाड़ बा, तू जवान चढ़ चल झूम झूम बढ़ चल। आखिर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के उद्धृत करे के चाहब, जब पिछला साल अगस्त में वहाँ का एगो सेमिनार में राष्ट्रवाद के भाव में बढ़ंती के बारे में बतावत कहले रही कि आवे वाला समय में राष्ट्रवाद के भाव तेजी से बढ़े वाला बा। वहाँ के कहनाम रहे कि आखिरकार ये राष्ट्रवाद ही रहे जे स्वतंत्रता विकास पुनर्संतुलन आ बहुध्रुवीयता के जन्म दिलस। वहाँ के मान्यता बा कि आवे वाला समय में दुनिया कुछ बेसिये राष्ट्रवादी हो जाई। यही साल जब पहलगाम में आतंकी हमला भइल तो राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार भइल। एकरा प्रतिकार में सेना आतंकवादियन के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलौलस आ पाकिस्तान स्थित आतंकवादियन के अड्डा ध्वस्त कैलस। यह समय देश में राष्ट्रवाद के भावना बलवती भइल। लोग सरकार के निर्णय कार्रवाई के खुल के समर्थन कैल। हालांकि राजनीतिक कारण से कुछ लोग आम जन के बहकावे के चाहल आ सेना और सरकार पर सवाल उठावे के गलत कोशिश कैल, बाकी हमनी का कोनो बहकावा में ना आवे के चाही। देश के स्वतंत्रता संप्रभुता आ विकास खातिर यह राष्ट्रवाद के भाव के बनौले रखे के पड़ी।
1: बहुत ही नीमन ये विषय राष्ट्रवाद के भावना पर अभी अभी हमने वार्ता सुननी जा श्री ब्रजभूषण मिश्रा जी से। यह वार्ता खातिर इनका बहुत ही धन्यवाद बा। अब देखिए एगो और बात हम रोगा सब से कहल चाहम कि यह भागदौड़ के जीवन में हमने पैसा कमाए के पीछे एकदम लागल बनी जा। आज के समय में बहुत लोग रोगा देखतो होखम कि पैसा कमाए के साथे साथे धर्म कर्म में भी खूब लागल बने। जौन जगह देखी अब चाहे कौनो भगवान देवता के दुआरी होके अभी एकदम भीड़े भीड़ चलता, कन्हू रोगा खाली ना भेटाई। जहाँ जाई जहाँ सुनी वही जे भीड़ बा, सभी कहू भगवान के दुआरी जाता रे, भगवान के दर्शन करता रे, उनका आशीर्वाद पावल चाहता रे। कहे में सुने में तनिका बनावटी जरूर रोगा सभी के बुझाई, लेकिन साँच पूछी तो असली तीरथ हर में से हर केहू खातिर घर ही में होला। आई बात सभे केहू जानेला। ये हमार कहला से ना बलुक रउआ सभे भी अपन मन में ये बात के जानत होकम गुनत होकम कि हमने इनके असली तीरथ घर में के बा। हाँ, हमार इशारा उहे बूढ़ पुरनिया लोगिन पर बा। जब घर के द्वार पर कोनो पुरान छाह देवे वाला बरगद के पेड़ होला तो घामा कतनो कड़ा होके ओकरा नीचे बैठला पर कैसन लागेला, लागेला नू एकदम ठंडा ठंडा आ एकदम सुरक्षित। हमने के घर के बूढ़ पुरनिया जौन बारे लोग हमने के माई बाप भइले चाहे बाबा आजी होइले ओइसे ही होलन। उनकरा लोगिन के सेवा कैल कौनो एहसान ना, बलुक हमने के धर्म आ कर्म हो। आज के भाग दौड़ की जिंदगी में हमने ना इतना मगन हो गई बनी जा कि जौना हाथ हमने के अंगुली पकड़ के चलल सिखवलक आज उहे हाथ के कापत देख के हमने के मुंह फोड़ लेला। बूढ़ भइला पर मन अउरी शरीर दुनू कमजोर हो जाला आ ओह घड़ी ओकनी के कौनो धन दौलत ना, बल्कि खाली हमने के थोड़का मनी समय अपे

प्यार चाहेला। उनकर झुरीदार हाथन में जिंदगी के तजुर्बा होला। जब कोनो मुसीबत आवेला नो तो उनका लोगिन के एक एगो सलाह सब दुख दूर कर देला। लैकन के नीक संस्कारी बनावे में बाबा आजी के कहानी उनकर दुलार सबसे बड़ रोल निभावेला। जौना घर में बुजुर्ग मुस्कुरावत रहले ओ घर में साक्षात भगवान वास करलन। उनकर आशीष आशीर्वाद कोनो बड़का ढाल से कम ना होखे। आज हमनिन के जौन व्यवहार उनका लोगिन साथे करम काल हमनिन के लैकन भी उहे व्यवहार हमनिन के साथे करी हैं। सेवा करे के मतलब ही नहीं है कि खाली उनका लोगिन के दवाई खाना दे देवल गई आ आपन निकल गई नहीं जा हमनिन के आपन काम से। एकदम ना असली सेवा तो ई बा कि रउआ उनका लोगिन पास ही घड़ी दू घड़ी बैठी उनकर सुख दुख सुनी उनका कि ये एहसास कराएं कि रउआ हमनिन खातिर आजुओ उतने जरूरी बनी जितना कि पहले रही। जौन माई बाप अपन पेट काट के हमनिन के पालेलन बुढ़ापा में उनकर आँख में आंसू आवे के मतलब बा कि हमनिन के इंसानियत हार गई। बूढ़ पुरनिया के सेवा ही असली तीरत बा असली पूजा धर्म हौ। तो देखी हमार त रउआ सभी से दसो नोह जोड़ के निहोरा बा कि रउआ सभी जब आज घर जाएं तो अपन माई बाबूजी के आजी के बाबा के गोर छुई उनका साथे तनी समय बिताएं। उनकर मुस्कुरात चेहरा देख के जौन सुकून मिली नो साच पूछी वो दुनिया के कौनो कोना में ना भेटाई। ऐसे हम कहम कि रउआ ई प्रयास जरूर करी कि सभे तीर्थ घूमी सब धर्म करी लेकिन अपन घर के बूढ़ पुरनिया के असली सेवा धर्म उहे है। तो ओह से जरूर इनकार मत करी ओह से मुंह मत फेरी अपन लैकन के भी सिखाई कि कैसे दादा दादी के सेवा करे के बा उनकर बात माने के बा उनकर सम्मान करे के बा काहे कि हमनिन के भविष्य उहे हवे। तो देखी जब बात इतना निमन निमन होखत होको तो काहे ना राउर मन मनसावन करे खातिर हम एगो नीक फिल्म संगीत भी सुनवा दी। तो आई सुनी सभी ई फिल्म संगीत।

0: सुधिया विसर गई है ना मालूम हमार सुधिया।
1: तब कैसन लागल यो संगीत? हमरा तो साज पूछी तो मन झूमत रहे, बहुते निमन रहे। ये गीत कब हुई है गवनवा हमार फिल्म से? आ देखी, हम हमेशा शुक्रवार के शुक्रवार और मन मन सावन करे खातिर ऐसने नीक नीक संगीत लेके आवत रहम। आ हमार भोजपुरी जो नीक कार्यक्रम बा में नीक नीक बात के जोड़े नीक नीक चर्चा होकत रही। आ रउआ सभी के हमारी कार्यक्रम कैसन लागत अपन सुझाव के जरूर रउआ सभी हमारे जोड़े साझा करब। आ यही के साथे साथे अब हमरो जाए के बेरा भ गए, तब हमार मने राउर विनीता के निहोरा बा कि हमरा के जाए देवल जाओ। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए इस सभा में आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।

6:10 पर आप सुनेंगे यूनिसेफ द्वारा आयोजित मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा विश्व बाल श्रम निरोध दिवस, सुनेंगे वार्ता महिलाओं के लिए कृषि आधारित उद्योग, वार्ताकार होंगे डॉक्टर ज्योति सिन्हा, साथ ही आनंद ले सकेंगे पारंपरिक लोकगीतों का, कलाकार होंगे प्रमोद कुमार दुबे। सात बजे का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा मुर्गियों में रानीखेत रोग, सुनेंगे वार्ता जामुन के बाग लगाएं, वार्ताकार होंगी डॉक्टर सीमा और सुनेंगे लोकगीत प्रमोद कुमार दुबे के स्वर में। सात बजकर 52 पर आप सुनेंगे सरकार की 12 साल पूरे होने के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार से साक्षात्कार। 8:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, थीम होगा जन विश्वास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 9:30 पर आप सुनेंगे साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संपादकीय गीतांजलि श्री, जरा सोचिए में सुनेंगे बुजुर्गों का साथ, सुनेंगे कहानी खट्टा मीठा, कहानीकार होंगे संजीव कुमार और सुनेंगे कविता, कवि होंगे विनोद कुमार चौधरी। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ डॉक्टर निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। भाजपा के वरिष्ठ नेता और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नया ऊंचाइयन के छुअता। वो कहलन कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सबसे लंबा कार्यकाल के रिकॉर्ड बनौले बाड़े, जे जनता के विश्वास के प्रमाण बा। श्री चौधरी मोदी सरकार के 12 साल पूरा होके पर पटना में आयोजित मीडिया संवाद के संबोधित करत रहलन। श्री चौधरी कहलन कि भारतीय जनता पार्टी जे भी संकल्प जनता के सामने रखलस ओकरा पूरा करे के प्रयास कैलस। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के खत्म करे के पार्टी के ऐतिहासिक प्रतिबद्धता रहल, जेकरा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा कैल गइल बा। एकरा अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के सपना भी पूरा भइल। श्री चौधरी कहलन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन कार्यकाल में बिहार के विकास खातिर अपन प्रतिबद्धता दिखौलन, जौना कारण राज्य आज प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहल बा। केंद्र सरकार संस्थागत औद्योगिक आ व्यावसायिक ग्राहकन के खुदरा विक्रेता लोग से मोटर ईंधन आ हाई स्पीड डीजल खरीदे पर रोक लगा देले बा। ये फैसला पश्चिम एशिया संकट के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आयल बाधा के बीच स्थानीय स्तर पर तेल के कमी के रोके खातिर लिहल गइल बा। पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्रालय एगो अधिसूचना में कहलस कि ई प्रतिबंध 90 दिन तक लागू रही। NTA माने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आगामी 21 जून के होवे वाला नीट UG पुनर्परीक्षा के परीक्षा समय के 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट कर देले बा। नया समय दुपहरिया 2 बजे से सांझ 5:15 बजे तक रही। संशोधित परीक्षा समय में जरूरी परीक्षा औपचारिकता खातिर लागल समय शामिल बा। संगे संगे एजेंसी प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथे दिहल जावे वाला रफ वर्कशीट के 2 पन्ना से बढ़ा के 4 पन्ना कर देले बिया। केंद्र सरकार प्याज के खरीद दर के संशोधित करके 1,650 रुपया प्रति क्विंटल कर देले बिया। उपभोक्ता मामले खाद्य आ सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी एगो सोशल मीडिया पोस्ट में ई जानकारी देले बाड़न। बेगूसराय जिला के बखड्डा स्थित NH 31 पर भइल सड़क हादसा में मधेपुरा जिला के 3 गो थाना प्रभारी समेत 4 लोग के मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार बतौले कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात 4 पहिया गाड़ी के अनियंत्रित होके ट्रक से टकराए के चलते ई हादसा भइल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हादसा में 3 थानाध्यक्ष समेत 4 आदमी के निधन पर गहरा दुख जतौले बाड़े। भारतीय निशानेबाज आ एशिया

0: एशियाई खेलन में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा के आज नई दिल्ली के एगो अस्पताल में 49 बरिस के उम्र में निधन हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जसपाल राणा के निधन पर गहरा दुख जतौलन सन। मुजफ्फरपुर के एगो निजी अस्पताल में पिछला दिनन भइल भीषण आगलगी मामला के जांच खातिर बनल उच्च स्तरीय समिति के रिपोर्ट में कई गो गड़बड़ी सामने आयल बा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बतौले कि अस्पताल भवन के निर्माण स्वीकृत नक्शा के मुताबिक ना भइल रहे। वो कहले कि इस मामला में नगर निगम अस्पताल प्रबंधन के नोटिस भेज ले बा। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बा। दुनिया भर में छोट छोट लइकन से काम करावे के प्रथा के खत्म करे आ सब लोगन के एकरा प्रति जागरूक करे के उद्देश्य से ई दिवस मनावल जाला। ए साल ई दिवस के थीम बा बाल मजदूरी के रेड कार्ड, लइकन खातिर निष्पक्ष खेल, सयाना लोग खातिर सम्मानजनक काम। बाल श्रम निषेध दिवस के मौका पर पूरा प्रदेश में कई गो जागरूकता कार्यक्रम कैल जा रहल बा। प्रदेश में मानसून के असर से बरखा के माहौल बनल बा। मौसम विभाग कहले बा कि अगला दो दिन के भीतर मानसून के फैलाव राज्य के ज्यादातर हिस्सा में हो जाए। विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा में कटिहार जिला में भारी बूंदी पड़ल बा। जिला के प्राणपुर में सबसे बेसी 82.8 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कैल गेल। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जा समाप्त भइल।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोता आइए सुनते हैं यूनिसेफ द्वारा आयोजित मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
2: प्रस्तुत है यूनिसेफ द्वारा आयोजित मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आज दिनांक 12 जून 2026 को पटना के एक होटल में यूनिसेफ द्वारा आपातकालीन स्थितियों में बच्चों और जेंडर के प्रति संवेदनशील रिपोर्टिंग पर मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ यूनिसेफ के सीएपी विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा के स्वागत उद्बोधन से हुआ।
3: हम सब जानते हैं कि बिहार जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की दोहरी मार को झेलता है। एक ही वर्ष में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, और हर आपदा में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं। स्कूल छूट जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होती हैं, विस्थापन के साथ बढ़ जाती हैं वे असुरक्षाएं जिनकी चर्चा प्रायः सुर्खियों में नहीं हो पाती। लेकिन साथियों, सवाल केवल ये नहीं है कि इन आपदाओं की रिपोर्टिंग हो, सवाल ये है कि रिपोर्टिंग कैसे हो, और यही आज की चर्चा का केंद्र है।
2: डॉक्टर मोनिका नेल्सन, सीएफओ यूनिसेफ ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए मीडिया और यूनिसेफ के संबंधों को रेखांकित किया।
4: There is something I want to say and I mean it very sincerely. The relationship between UNICEF and the media in Bihar is one which we deeply value and never take for granted. Over the years, journalists in the States have amplified our work on child nutrition, immunization, newborn survival, and child protection in ways no report or press release alone ever could. You have given faces and names to statistics. You have carried evidence into living rooms and village squares. You have asked hard questions of systems, and in doing so, you have stood up for children's future. On behalf of UNICEF Bihar, thank you.
2: आपदा में मीडिया की भूमिका को उल्लेखित करते हुए मोहम्मद नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी, संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार ने कहा,
5: यानी जलवायु प्रेरित आपदाओं के दौरान मीडिया की भूमिका जैसे अत्यंत प्रासंगिक और संवेदनशील विषय पर ये कार्यशाला का आयोजन किया। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मीडिया केवल सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि जन जागरूकता, सटीक एवं समयबद्ध चेतावनी, अफवाहों का खंडन, और सामुदायिक लचीलापन दैट इज

0: कम्युनिटी रेजिलियंस को सुदृढ़ करने वाला हमारा महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार है।
1: उन्होंने आपदा से संबंधित प्रधानमंत्री के 10 सूत्रों को भी उल्लेखित किया।
0: आप लोगों को मालूम होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 एजेंडा में शामिल जो हमारी जो मुख्य बातें हैं वो क्या है, एक बार जान लें हमारे मीडिया के सहभागी। पहला है विकास के प्रत्येक क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाना। इसी तरह से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल अस्पताल बिजली ग्रिड को आपदा सहिष्णु बनाना, दैट इज डिजास्टर रेजिलिएंट बनाना। आपदा प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं के नेतृत्व को प्राथमिकता देना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं ही मेजोरिटी में है जी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी चेतावनी को सरल स्थानीय भाषा में आम जन तक पहुंचाना, पंचायत स्तर तक स्थानीय और सामुदायिक क्षमताओं जैसे आपदा मित्र का निर्माण करना, पुनर्निर्माण के कार्यों में बिल्ड बैक बेटर के सिद्धांत को लागू करना, और सातवां है पूर्व चेतावनी और राहत कार्यों में प्रौद्योगिकी GIS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाना। सरकार कॉरपोरेट मीडिया और नागरिक समाज के बीच मजबूत साझेदारी विकसित करना, और लास्ट में है युवाओं को जागरूकता और स्वयं सेवा के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण का दूत बनाया जाना।
1: श्री सिद्दीकी ने मीडिया के साथियों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा,
0: इस कार्यशाला में का जो केंद्र बिंदु है वो मीडिया कर्मी यानी आप हैं, और इसीलिए मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जब आपदा दस्तक देती है तब आपकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। बाढ़ के तीनों चरणों, आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात कुछ सिद्धांत हैं जो आप लोग खुद अपनाते ही हैं, थोड़ा सा मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि सत्यापित सूचना केवल आधिकारिक और पुष्ट खबरों को ही प्रसारित किया जाए। प्राथमिकता आपकी क्या हो वो है सरकारी चेतावनियां, सलाह जो एडवाइजरीज हम जारी करते हैं, और हेल्पलाइन नंबर जो हम देते हैं उनको अपने चैनलों में अपने अखबार में उसको प्राथमिकता देना। सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी हमारी क्या होनी चाहिए कि अफवाहों और पैनिक फैलाने वाली खबरों से हमें बचना चाहिए। समाधान आधारित पत्रकारिता को बढ़ावा देना हमें चाहिए। साथ ही आपसे ये भी अनुरोध होगा कि संवेदनशीलता का जहां तक ताल्लुक है प्रभावित बच्चों और महिलाओं की निजता और गरिमा का भी सम्मान किया जाना है। इसी तरह से आपसे ये भी अनुरोध होगा कि आपसे हम प्रेरणा लें कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, आपदा मित्रों और आपदा के बीच से उपजे मानवीय साहस के सकारात्मक उदाहरणों को समाज के सामने लाएं।
1: तकनीकी सत्र के पहले भाग में मिन्नती चकलानविस जनसंपर्क विशेषज्ञ ने रिपोर्टिंग की नैतिकता के बारे में बताया।
2: नैतिकता एक ऐसी चीज है ना, हम सभी को पता है, शायद ही यहाँ पे सभागार में उपस्थित जो हमारे भाई बहन हैं, शायद ही ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होगा। लेकिन मुश्किल की बात है कि चूंकि ये चीजें इतनी ज्यादा पता है कि चूक हो जाती है। जब हम जाते हैं तो उसमें बहुत तरह की चीजें, मीरियड्स ऑफ थॉट हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, और उस समय कुछ कुछ चीजें शायद चूक हो जाती है, और बाद में आकर लगता है कि इस स्टोरी को शायद दूसरे एंगल से लिखा जा सकता था, या फिर इस फोटोग्राफ को जो हमने लिया दूसरे एंगल पे लिया जा सकता था।
1: उन्होंने कहा कि किसी काम को क्यों करते हैं पत्रकारों को जरूर जानना चाहिए।
2: कोई भी काम करें एक बार वाई जरूर पूछें कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास उस वाई का एक सटीक जवाब नहीं है, एक कन्विंसिंग रिप्लाई नहीं है, तो बेहतर है आप उस काम को ना करें, क्योंकि नहीं करना इज ऑलवेज बेटर देन रॉन्ग डूइंग। तो ये अब हम लोग अगर यहाँ पे सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जो ग्राउंड रियलिटी है कि हर मामले में किसी भी त्रासदी को देखिए, किसी भी दुर्घटना को देखिए, किसी भी डिजास्टर को देखिए, सबसे ज्यादा अगर अफेक्टेड होता है तो वो बच्चे ही होते हैं। और बिहार का जो ये पेरिनियल, मतलब वो हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि ये साल बच गया, बस यही है कि आंकड़े थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन नुकसान तो होता ही है, कुछ परिवार हमेशा उससे अफेक्टेड होता है। और साथ ही साथ जो एक पैटर्न है मीडिया का कि जब वो उफान आता है तो

0: ज्यादा पूरे अखबार पूरे चैनल्स में बस उसकी खबरें होती हैं, लेकिन उसके बाद एक महीने बाद या 2 महीने बाद वो खबरें इतनी कम हो जाती हैं कि लोग भूल जाते हैं। तो यहीं पे आता है कि थोड़ी सी पैराशूट मतलब रिपोर्टिंग ना करके अगर हम वहां से थोड़ा स्टे करें, चीजों को जाने, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। आप सभी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वही है कि नैतिकता की बात है, थोड़ी सी रिमाइंडर की बार बार जरूरत पड़ती है।
1: बच्चों और महिलाओं से संबंधित रिपोर्टिंग के संदर्भ में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। तकनीकी सत्र के
0: भवंतः
1: दूसरे भाग में सुधाकर रेड्डी, वर्ष विशेषज्ञ यूनिसेफ ने जलवायु परिवर्तन पर विस्तार से जानकारी दी। जलवायु परिवर्तन पर मीडिया के रोल को भी उन्होंने उल्लेखित किया।
2: क्लाइमेट की पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया में ये 4 पॉइंट अवेयरनेस हम लोग कैसे लोगों को कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबका मुद्दा है और हम लोग क्लाइमेट चेंज को कैसे लोगों तक पहुंचा सके हैं कि भाई उसमें लोगों की भूमिका क्या हो सके, और लोकल इम्पैक्ट को हम लोग कैसे हाईलाइट करें कि आप ट्रेंड देख रहे हैं कि पहला कैसा था अभी कैसा है, और बिहेवियर चेंज इसके थ्रू हम लोग लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ अच्छे इनोवेशन को हम लोग शोकेस कर सकते हैं, लोकल में बहुत सारे इनोवेशन होते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे यूनिसेफ द्वारा आयोजित मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। सुनते हैं संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्णक्षमतायाः साक्षात्काराय गतद्वादशवर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितमिति। गृहमन्त्री अमितशाहः नवदेहल्यां श्री अमरनाथयात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीय प्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोल पंप इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबंधितम्। संयुक्तराष्ट्रसंघः ओमान देशस्य तटे तैल नौकास्थानां भारतीय नाविकानां उपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत्। भारतीयस्य दिग्गज लक्ष्य भेदन स्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 51 तमे वयसि मृत्युः अभवत्। अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां कैनेडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अवदत् यत् वित्तीय समावेशे उद्यमशीलता इत्यतः आरभ्य शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, स्वच्छता, गृहनिर्माण, क्रीडा विज्ञानं, प्रशासनञ्च यावत् विविधेषु क्षेत्रेषु महिलाः प्रमुखां भूमिकां निर्वहन्त्यः सन्ति। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् ड्रोन तन्त्रज्ञानमित्यादिषु उदयोन्मुख क्षेत्रेषु महिलानां वर्धमान सहभागित्वेन अवसरस्य नूतनाः मार्गाः उद्घाट्यन्ते। सम्पूर्णे देशे च विकास परिदृश्यं परिवर्तते। तत्पूर्वम् एकस्मिन् कार्यक्रमे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् गत द्वादशवर्षेषु NDA इत्यस्य सर्वकारः महिलानां नेतृत्वे विकासकार्यम् अकरोत्। एतच्च अन्येषु क्षेत्रेष्वपि दृश्यते।
5: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
6: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
5: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
6: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतदपि अवदत् यत् सर्वकारः याः महिलाः आर्थिकरूपेण स्वतन्त्राः भवितुं दीर्घकालं यावत् प्रयतन्त्यः आसन् ताः स्वसहायता समूहान् सक्रियतया समर्थयन्तीति। प्रधानमन्त्री इतोपि अधोरेखितवान् यत् सर्वकारस्य

0: नमस्कार उदय भाई।
1: नमस्ते अंजुला बहन, कहीं काल समाचार? सब बढ़िया बा।
0: हाँ सब ठीक है, सब कुशले मंगल है। अब तो तनी मौसम के मिजाज गरमाल गई है, लेकिन वो तो चलते रहे, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी कुछ वही
1: मौसम
0: में।
1: हाँ बदलत रही,
0: हाँ तू पर बदलन मौसम में भी
1: मौसम
0: काम करे
1: जेबा
0: पड़े हम सबके।
1: जीवन के मौसम भी बदलला, वही तरह से जे प्रकृति के मौसम बा वो भी बदलला। और बदलाव जे बा वो शाश्वत है, ऐसे
0: बिल्कुल।
1: कभी मान के ना चलें कि बदलाव जे बा वो ना होई, या फिर ही कोनो ऐसन बा जो ने के हमने का कुछ जैसे नया चीज हो।
0: बिल्कुल। तो बदलाव की जब हम बात कर रहे तो हम सब बात करें भाई कि बाल बच्चा से जो काम करावल जाए कहीं कहीं, ओकरा में भी बदलाव होवे के चाहिए। और आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, तो यही पर हम सब बातचीत करवे कि बाल श्रम करवाना अपराध के श्रेणी में आब है। बच्चा के खाए खेले के उम्र है और ओकरा में काम के बोझ ना डाले के चाहिए। वो मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरा परिपक्व ना होवथिन, ऐसन में उनका से काम ना लेवे के चाहिए।
1: देखिए एक चीज बा, पहले हूँ हमने के यहाँ हमने के घर में टहलुआ वाला कॉन्सेप्ट रहे पहले, बहुत पहले से, जब मैं छोट छोट लेकिन के हमने के अपना घर में उगरे के रखी, और उकरा से जेबा सामान्य तौर पर जे घरेलू सहयोग के काम होके उली, क्योंकि वो बेरा हमने के ज़्यादा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहे, आज भी बा, लेकिन वह समय में एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के हिस्सा कृषि से जुड़ल रहे, तो सामान्य रूप से ग्रामीण जीवन के हिस्सा रहे। लेकिन वह बेरा भी एक के बड़ा शिद्दत के साथ महसूस कैल गेल, और जब भारत के संविधान बनल तो वह संविधान में ओकर अनुच्छेद 23 में वही बेरा ये प्रावधान कैल गेल कि छोट छोट लइकन से जे बा वो काम ना लिए, वहाँ से
0: बिल्कुल।
1: खतरनाक जे सामान्य भी जे घरेलू सहयोग बा वो तो कुछ हद तक हो ही लेवल जा सकेला, लेकिन वहाँ के कोनो वो तरह के खतरनाक काम में ना लगाओ जाए जो ना में जोखिम हो के, जो ना में वहाँ के कोनो तरह के वहाँ का हानि पहुँचे।
0: मैंने अपने कहे के मतलब कि ऐसा खतरनाक काम जैसे कि पटाखा के फैक्ट्री हो गई या कोई कैसे कल खरखाना।

0: जहाँ जोखिम भरल भरल है, तो वहाँ पर ऐसे ऐसा बच्चा सबके काम ना देवे के चाहिए।
1: और ये बात ठीक कहनी है कि उकड़े के वही आधार पर जो अनुच्छेद 23 जो ना के हम चर्चा कहनी है उकड़े आधार पर हमनी के यहाँ बाल श्रम कानून एवं विनियमन अधिनियम 1986 एकरा के ले आवल गेल और एकरा में कई प्रावधान कैल गेल बा। प्रावधान ई कैल गेल कि कोनो भी जे 14 साल से कम उम्र के लड़का बा ओकरा से कोनो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में काम ना लिए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और ओमें ये भी प्रावधान कैल गेल बा कि 14 से 18 साल के जे लड़का होई ओकरा से एह तरह के प्रतिष्ठान में जोखिम भरल काम ना देवल जाए।
0: अगर ऐसा कोई जोखिम भरल काम अगर
1: हाँ
0: ले हथिन तो एकरा लगी कानून में ये भी प्रावधान है कि उनखा पर जुर्माना और जेल भी हो सके है, ऐसा दोनों
1: यही
0: प्रावधान
1: यही
0: है।
1: यही यही अधिनियम के धारा 14 में ये प्रावधान कैल गेल बा कि यदि वह तरह से वहाँ का कोनो काम ले तनी तो 6 महीना से लेके 2 साल तक के वहाँ के सजाए हो सकेला।
0: और उदय
1: और
0: भाई ऐसा कुछ संस्था भी बनल है जैसे कि जहाँ अगर कुछ इस तरह के बात पता चल रही तो वहाँ शिकायत दर्ज करल जा सके है, जैसे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
1: बाल संरक्षण खातिर केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी बाल श्रम आयोग जे बा वो दोनों जगह काम करेला और ई जे बा इहे देखेला कि कोनो एह तरह के प्रतिष्ठान में एह तरह से बाल श्रम होत नहीं। एक चीज हमें जरूर लोगों के उल्लेख करे के चाहे कि यदि 14 साल के लेकर कोनो पारिवारिक सहयोग करत कोनो काम में तो ओकरा के बाल श्रम के परिभाषा से बाहर रखल गेल बा ताकि बाल श्रम ना मानल जाए। दूसरा चीज ई बा कि यदि एह तरह के कोई भी यदि बाल श्रमिक से रुआ काम लेतनी यहाँ तक कि यदि रुआ ओकरा के घर पर ले जब जो रुआ पहले इशारा कैनी है तो ओकरा में रुआ दंड के भी प्रावधान कैल गेल बा और 20,000 से लेके 50,000 तक दंड के
0: तो
1: प्रावधान
0: हम
1: बा।
0: अपने से भी एगो
1: वही
0: जानकारी लेवल चाहे श्रोता लोग के विधि भी कि जैसे पारिवारिक सहयोग के बात करते हैं कि अगर लेकिन अगर परिवार के
1: वो
0: सहयोग
1: अपना घर में यदि करे तो
0: करते में कोई व्यवसाय है और वो अगर ये कहे कि हम परिवार के सहयोग कर लिए है व्यवसाय करके तो क्या वो दंड के
1: लेकिन
0: प्रावधान
1: लेकिन
0: में
1: लेकिन
0: के।
1: वो ओकर व्यक्तिगत ओकर परिवार से जुड़ल हुई कभी भी वो बाहरी निखे हो सके ओकरा ही परिवार से जुड़ल। दूसरा दूसर का चीज ये बा कि यदि रुआ इस तरह के अपराध के दोहरा रहल बनी मान ली कि रुआ एक बार इस तरह के अपराध में रुआ दोषी हो गई नहीं या पकड़ा गई नहीं और फिर से रुआ एक दोहरा होता नहीं तो 1 साल से लेके 3 साल तक सजा के प्रावधान भी कैल गेल बा। कुल मिला के ई बा कि बाल श्रम जे बा वो हमनी के समाज खातिर कोनो रूप में वो ओकरा के निषेध कैल गेल बा। ऐसे कि यदि अभी ही कम उम्र में ही जब पढ़े खेले खाए की उम्र में ही वहाँ के रुआ कोनो श्रम में उस तरह से लगा दे तो पूरा पूरा उनकर जीवन जे बा ओकरा से प्रभावित होला
0: बिल्कुल
1: उनकर विकास प्रभावित होला लड़का के जे भविष्य बा वो भी ओकरा से।
0: चौपट हो जाए।
1: हाँ
0: तो बाल श्रम निषेध है और करे के भी कोशिश ना करे के चाहिए और जाने और अनजाने से भी तो कर लगे दंड के प्रावधान है। तो आज हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बातचीत के लिए उदय भाई और हम श्रोता लोग इंतजार करते होथिन कि लोकगीत कखनी सुनबैथिन। तो हम सब सुने ही लोकगीत।
1: आज लोकगीत के कलाकार बने प्रमोद कुमार दुबे सुने के वहां से।

0: वाह,
1: बढ़िया सुनोनी,
0: बहुत
1: प्रमोद
0: बढ़िया
1: कुमार
0: जी।
1: दुबे जी रहनी है, आगे भी यहाँ से और गीत सुनल जी। लेकिन अभी समय भाई को वार्ता सुने के महिलाओं के लिए कृषि आधारित उद्योग, वार्ताकार बनी डॉक्टर ज्योति सिन्हा,
0: चला
1: सुने के
0: इनका
1: लिए
0: से
1: वार्ता।
0: सुनाई वार्ता।
2: प्रकृति ने सभी महिलाओं को चुनौतियों से लड़ने की अभूतपूर्व क्षमता दी है। इस क्षमता का उपयोग कर सार्थक आजीविका पैदा करने एवं स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने में आज महिलाएं पूरी तरह से सक्षम हैं। शहर अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। वस्तुतः महिलाएं 80% कार्य करती हैं, परंतु पारिश्रमिक के हिसाब से यह कार्य रोजगार में गिना नहीं जाता। आमतौर पर प्रत्येक महिला के सामने घर एवं कार्यस्थल कैरियर के बीच सामंजस्य की समस्या आती है, परंतु घर बैठे कुछ ऐसे कार्य शुरू किए जा सकते हैं जिसमें वे अपना समय परिवार को भी दे सकें, साथ ही साथ व्यवसाय भी स्थापित कर सकें।

शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोजगार अलग अलग हो सकते हैं। स्वरोजगार एवं उद्यम के लिए प्रशिक्षण लेने की भी कई योजनाएं चलती हैं। इनमें विभिन्न संस्थानों अथवा केंद्रों द्वारा कृषि, बागवानी, प्रसंस्करण, सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प, पर्यटन, आतिथ्य आभूषण बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि घर अथवा आसपास नए रोजगार शुरू किए जा सकें। आज के दौर में बिहार की कृषि महिलाओं के हाथ में आने लगी है। कृषि छोड़कर अन्य नौकरी के लिए गांवों से पलायन एक मुख्य समस्या बन गई है। 70% ग्रामीण महिलाओं के ऊपर परिवार एवं कृषि प्रबंध दोनों ही मुख्य जिम्मेदार बन गई है। इससे वे महिलाएं जो कि पशुपालन, बकरी, मुर्गी, मत्स्य अथवा अन्य कृषि उद्योगों में भी अपना समय दे रही हैं। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनमें स्वावलंबन, निर्णय लेने की क्षमता, अद्यतन जानकारी एवं तकनीक की पहुंच अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीज गिराने से लेकर फसल काटने, सुखाने, भंडारण, संरक्षण, प्रसंस्करण एवं प्रयोग के समय तक गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी महिलाओं की है। आजादी के तुरंत बाद यह आवश्यकता महसूस की गई कि उद्यमिता विकास द्वारा समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कृषि में महिलाओं के अनिवार्य सहयोग को महसूस करते हुए ऐसे उद्यमों को पहचाना जाए जिसमें महिलाएं बच्चों एवं परिवार की उचित देखभाल के साथ गृह व्यवस्था, कृषि कार्य, रोजगार सृजन एवं उद्यमिता प्रबंधन के बीच ठीक ठाक सामंजस्य बना सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि कृषि की प्रगति एवं जीवन स्तर में सुधार एक दूसरे पर निर्भर है। वातावरण, तकनीक, उत्पादन प्रबंधन एवं प्रगति में सही तालमेल होना चाहिए। महिलाओं में दृढ़ता एवं स्वतंत्र निर्णय क्षमता विकसित होनी चाहिए। घरेलू एवं संसाधनों द्वारा उद्यमिता विकास के नए आधार खोजे जाएं एवं कम श्रम वाली तकनीक को बढ़ावा मिले। आज के बदलते परिवेश में महिला गोष्ठियों का आयोजन समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से नई तकनीक एवं कृषि आधारित नए और लघु उद्योगों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी जा रही है। महिलाओं के लिए जो प्रमुख कृषि आधारित उद्योग हैं, उन्हें कई तरह से विभाजित किया जा सकता है। इनमें से कुछ खाद्य आधारित कृषि उद्योग होते हैं और कुछ अखाद्य कृषि से संबंधित उद्योग होते हैं। खाद्य आधारित कृषि उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि फल एवं सब्जी उत्पादन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बर्बादी अधिक होती है। भंडारण क्षमता न होने के कारण किसानों को कम दामों पर ही सब्जियों को बेचना पड़ता है। इसका निराकरण प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन द्वारा किया जा सकता है। फल एवं सब्जियों के मूल्यवर्धित उत्पाद सुखौता, पाउडर, अचार, जैम, सॉस, चिप्स, मार्मलेड, चटनी इत्यादि बनाई जा सकती है। आजकल प्याज का पाउडर, लहसुन, अदरक का पाउडर, आलू का आटा, शकरकंद का आटा, सूजी, सिंघाड़े का आटा इत्यादि की मांग बहुत है। जीवन शैली बदलने के कारण इनका सुगम प्रयोग भोजन में विविधता तथा तत्परता के लिए अनिवार्य हो गया है। अचार, पापड़, बड़ी, नमकीन, मसाले, चटनी और सूखे फलों की पैकिंग जैसे उद्योगों में महिलाएं बड़ी सफलता प्राप्त कर रही हैं। यह उद्योग कम निवेश में घर में ही शुरू किया जा सकता है। यदि कुछ नया करने एवं बाजार में पकड़ बनाने के लिए आवश्यकता हो तो विभिन्न प्रकार की दालें, चावल, गेहूं, बाजरा, मड़ुआ, सोयाबीन, जौ आदि को प्रसंस्कृत कर आटे की विभिन्न मात्रा में मिश्रित कर नए उत्पाद भी बाजार में बेचे जा रहे हैं। मिश्रित आटा, सेवई, नूडल्स, पास्ता, दाल मिक्स, इडली मिक्स, पापड़, बड़ी आदि उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फाइबर युक्त चोकर आटा, बच्चों के लिए मिश्रित अनाज आधारित रेडी मिक्स या बेबी फूड जिसे पूरक आहार भी कहते हैं, घरेलू स्तर पर बनाया जा सकता है। पालक अथवा गाजर का चूर्ण मिलाने से यही मिश्रण और अधिक पौष्टिक बन जाता है। खाद्यान्न आधारित अन्य उद्योग जैसे दलहन आधारित, फल एवं सब्जी आधारित, मसालों पर आधारित उद्योग भी शुरू किए जा सकते हैं। आजकल नीरा प्रसंस्करण अथवा गुड़ के भी विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसमें ताड़ गुड़, ताल मिश्री, जैम, शरबत इत्यादि भी उपलब्ध हैं। अन्य उद्योग जैसे डेयरी उद्योग, ग्रामीण भारत में दुग्ध उत्पादन का बड़ा हिस्सा महिलाएं संभालती हैं, अतः दुग्ध संग्रहण, पनीर उत्पादन, घी उत्पादन और दुग्ध के विपणन में भी महिलाएं सक्रिय हो रही हैं। जिन घरों में पशुपालन हो रहा है वहां दुग्ध प्रसंस्करण, छेना, पनीर, घी, खोआ और मिठाइयों का
उत्पादन किया जा सकता है। मशरूम उत्पादन भी कम लागत और कम जगह में शुरू किया जा सकता है और इसमें अधिक लाभ की संभावनाएं हो सकती हैं। इसमें महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, जो कि पर्यावरण के अनुकूल और उच्च लाभ वाला उद्योग है,

में राज्य सरकारें महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देती हैं। नर्सरी और फूलों की खेती, जरबेरा, गुलाब, गेंदा आदि की नर्सरी भी महिलाओं के लिए अच्छा साधन है। जैविक खाद निर्माण, वर्मी कंपोस्ट का कार्य महिलाएं बड़े स्तर पर कर रही हैं और इसकी मांग बाजार में लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा फल एवं सब्जी, अनाज के बीज उत्पादन, फल एवं सब्जी संरक्षण, सुगंधित एवं औषधीय पौधों की खेती, फलों का व्यावसायिक उत्पादन और माली प्रशिक्षण में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। पशुपालन से जुड़े हुए अन्य व्यवसाय जैसे दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, रेशम कीट पालन, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की स्थापना एवं चारा उत्पादन में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। अन्य व्यवसाय जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती उद्योग, पापड़ उद्योग, ये सारे कुछ अन्य व्यवसाय हैं जो कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। नई योजनाएं ग्रामीण महिलाओं में चेतना सृजन करने में मददगार साबित हो रही है, ताकि ये दुगने उत्साह एवं उद्यम

शायद जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती उद्योग, पापड़ उद्योग, ये सारे कुछ अन्य व्यवसाय हैं जो कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। नई योजनाएं ग्रामीण महिलाओं में चेतना सृजन करने में मददगार साबित हो रही हैं, ताकि ये दुगने उत्साह एवं उद्यमिता के साथ आर्थिक स्वावलंबन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कृषक महिलाओं में नेतृत्व कौशल का विकास कर महिलाओं की भूमिका सिर्फ फसल उत्पादन एवं भंडारण तक सीमित न रहकर उनके विपणन में भी गिनी जा सकती है। कृषि आधारित अखाद्य पदार्थों का भी बाजार उपलब्ध है। इसमें रोजगार के सुलभ अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ताड़ के पत्ते, छाल, जड़ का प्रयोग करके डलिया, पंखा, झाड़ू इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। बांस के पत्तों से डलिया, खिलौने तथा सजावट के अन्य सामान बनाए जा सकते हैं। गेहूं के पुआल और विभिन्न प्रकार के बीजों का इस्तेमाल करके ज्वेलरी, सजावटी सामान, सीनरी, फाइल कवर, फोटो फ्रेम इत्यादि बनाए जा रहे हैं। जूट एवं रेशे की बनी ज्वेलरी, फाइल कवर और बैग की मांग तो विदेशों में भी है। इसके अलावा सूखे फूल, डंठल और विभिन्न प्रकार के पौधों को सुखाकर ड्राई डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। सूखे हुए फूल एवं पत्तों की सजावट काफी महंगे तथा आलिशान सजावटों में गिनी जाती है, जिसका उचित मूल्य प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से हल्दी का प्रयोग पीले रंग के लिए किया जा रहा है और जैविक रंगों में इसकी विशेष मांग है। इसके अलावा चुकंदर, गाजर, जामुन, पालक, गेंदा के फूल, हरसिंगार तथा नींबू एवं संतरे का ऊपरी छिलका इत्यादि से अलग अलग रंग तथा खुशबू मिलते हैं, जिनका प्रयोग खाद्य पदार्थों में होता है। किसी भी अवस्था में यह रासायनिक खाद्य रंगों से बहुत उत्कृष्ट हैं। इनका प्रयोग सूती हैंडलूम कपड़े के रंगों में भी किया जाता है। थोड़ी सी कौशल एवं तकनीक के साथ इन प्राकृतिक रंगों को घरेलू स्तर पर भी निकाला जा सकता है, जिससे रंग भी बनाए जा सकते हैं एवं इससे अब हर्बल गुलाल भी उपलब्ध है। इसके अलावा पेपर बैग, पेपर मशी के विभिन्न उत्पाद जो पर्यावरण की दृष्टि से बेहद उपयोगी साबित हो। इस प्रकार कृषि एवं कृषि आधारित अनेक उद्योग हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाएं अपना रोजगार सृजन कर सकती हैं। बैंक के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं, परंतु बेहतर यह होता है कि महिलाएं भी समूह अथवा क्लब का निर्माण करके कुछ ठोस रोजगार पर कार्य करें, ताकि वे सफल उद्यमी के आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन, स्थायित्व एवं ब्रांड के रूप में विकसित हो सके। महिलाओं के लिए कृषि आधारित उद्योग में भाग लेने से अनेक लाभ हैं। इनमें आर्थिक स्वावलंबन की भावना आती है, रोजगार की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में अब स्वयं के लिए एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा किया जा सकते हैं। उद्यमी महिलाएं एक समाज में आदर्श बनती हैं और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। वह परिवार एवं समाज में सम्मान पाती हैं। इससे इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। महिलाओं के उद्योगों से स्थानीय बाजार विकसित होते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अधिकांश उद्योग घर के पास किए जाते हैं, इससे महिलाएं घरेलू दायित्व और कार्य में संतुलन स्थापित कर पाती हैं। सरकार भी महिलाओं को कृषि आधारित उद्योग में बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला किसान सशक्तिकरण योजना तथा महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय सहायता। इन योजनाओं में लाखों महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वे छोटे छोटे उद्योग शुरू कर सकती हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित उद्यम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इनमें मुख्य है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक लोन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, महिला किसान सशक्तिकरण योजना एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सहायता। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, कम ब्याज पर ऋण, तकनीकी सहायता और विपणन सुविधाएं मिलती हैं। फिर भी यदि समूह एवं सामुदायिक स्तर पर महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें रोजगार संबंधी सभी आवश्यकताएं समय से पूरी करने में सफलता मिलती है। महिलाएं अपने हुनर के जरिए महिला ही ई हाट पर भी बिजनेस कर सकती हैं। अन्य कार्यों के लिए जिला उद्योग केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्रों से भी विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। आर्थिक सुविधा के साथ यह भी आवश्यक है कि काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास एवं बच्चों की देखभाल करने की भी व्यवस्था हो। अतः ऐसे कई केंद्रों पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल तथा क्रेश की सुविधाएं भी सरकारी योजनाओं में शामिल हैं। हालांकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, फिर भी कई चुनौतियां सामने हैं, जैसे पूंजी और वित्तीय संसाधनों की कमी, आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुँच, उत्पादों के विपणन में कठिनाई, पुरुष प्रधान समाज में निर्णय लेने की सीमा
सीमाएं और प्रशिक्षण एवं जागरूकता की कमी। यदि इन बाधाओं को दूर किया जाए तो महिलाएं कृषि आधारित उद्योगों में और अधिक योगदान दे सकती हैं। महिलाओं के लिए कृषि आधारित उद्योग केवल आर्थिक साधन ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। ये उद्योग न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं

0: बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः आवश्यकता है कि महिलाओं को समय पर आवश्यक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जाए। यदि सरकार, समाज और परिवार मिलकर सहयोग करे तो महिलाएं भारतीय कृषि प्रणाली और उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। अतः यह कहना उचित है कि कृषि आधारित उद्योग महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत नींव है और भारत के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: हाँ, तो अभी हम सब वार्ता सुनते हैं लिए
2: महिलाओं के लिए कृषि आधारित उद्योग, ये वार्ता हमने का सुननी है, वार्ता कर रही है डॉक्टर ज्योति सिन्हा,
1: इनका धन्यवाद।
2: और
1: आगे फिर हाँ
2: समय बाकी, अब एक और गीत हमने का सुने के कलाकार बनी प्रमोद कुमार दुबे।
1: सुने के

0: अंजला बहन बढ़िया स्वर रहा प्रमोद
1: बहुत
0: कुमार
1: बढ़िया।
0: दुबे जी रहनी है। यहाँ से गीत हमने सुननी, समय चौपाल के संपन्न हो गई, थोड़ा देर के बाद खेती गृहस्थी के बातचीत के लिए।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: दे भाई। खेती गृहस्थी में आज हम सब बात करवे मुर्गियों में रानी खेत रोग। देखते हैं कि रानी खेत रोग जो है ये मुर्गी में जो हो वही एगो विषाणु जनित रोग है। और
0: अच्छा
1: ये
0: एगो चीज बताइए, रानी खेते का है भाई।
1: रानी खेत मतलब ये
0: अंजुला बहन ऐसा बा कि उत्तराखंड में एक जगह बा रानी खेत, सबसे पहले ये रोग जो बा भारतवर्ष के अंदर वही जे बा ये प्रकाश में आयल, ध्यान
1: अच्छा
0: में
1: वहां
0: आयल,
1: से हाँ ये यही से
0: और बड़ा खतरनाक है कि एक बार जब हो जाए तो मुर्गी जो बा लगातार मर जाली सब, तो यही से रानी खेत कहल गई।
1: मैंने रानी खेत जगह से हीरो के पहचान होले तो यही से एकर नाम रानी खेत रोग पड़ गए। जो विषाणु जनित रोग है जे कि एकरा जे है कि 2 से 3 दिन में ही जो पक्षी जो है मुर्गी है कि बहुत कमजोर हो जाए। और ये बहुत ही संक्रामक मतलब संक्रमण एक बहुत ही संक्रमित रोग है और मुर्गी सब में बहुत जल्दी फैला है। ये रोग सभी उम्र के मुर्गी के हो सके ही लेकिन पहला सप्ताह से लेके 3 सप्ताह के उम्र के बीच मुर्गी जो हो गई ओकरा में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ा है। और एक जैसे कि लक्षण मुर्गी में यही है कि छींक आना, खांसे लगना, मुर्गी और के कभी पैर और जो पंख है हिले डुले लगे, जैसे जैसे लकवा टाइप से हो जाए या पॉटी जो है सफ़ेद सफ़ेद होवे लगे
0: हरा रंग
1: तो
0: के
1: हरा रंग के होवे लगे, क्षमा करते हैं हरा रंग के होवे लगे। सांस के नली भी मुर्गी के प्रभावित हो जाए और मुंह खोल के मुर्गी सांस लेवे लगते हैं। तो इस तरह के लक्षण मुर्गी में देखेला मिले लगा ही रोग के कारण।
0: देखिए एक चीज बात, सबसे बड़ बात तो ये कि सीधा तौर पर कर कोनो इलाज नहीं के, ऐसे बचाव और टीका ही एकरा रोकथाम खातिर हमनी का उपयोग में ले आइले। टीका में जब चूजा ही होके आ 5 से 7 दिन के होके, तो F1 लाइव या लशोता या स्ट्रेन ये 2 गो वैक्सीन बा, ये वैक्सीन जरूर दिलावे के चाहिए। एकर फिर बूस्टर डोज भी आवेला 8 से 9 सप्ताह के बाद, R2B कहल जले के या फिर स्ट्रेन, एकर टीका हमनी का लगवावे के चाहिए। तो ई टीका लगौला से का होला कि वैक्सीनेशन से उनका जे बा एह तरह के संक्रमण से लड़े के ताकत मिल जाला, और ई ताकत जे बा मुर्गी के रक्षा में सहायक होला। और तो बात रुआ बतेबे के नहीं है कि
1: हाँ और खासकर और ही
0: खासतौर
1: खाए खाए पिए भी मुर्गी के बढ़िया से खाना पीना खिलावे के चाहिए जैसे ओकरा के रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहे। और बीमारी से बचावे लगी ये भी है कि बाड़ा के साफ सुथरा रखे के चाहिए जेकरा में वो खा हथिन वो भी बर्तन के भी डिसइन्फेक्ट करे के कर देवे के चाहिए। अच्छा से बाड़ा में चारों तरफ छिड़काव करे के चाहिए कि संक्रमण ना लगे। इस तरह के कुछ उपाय करके मतलब रानीखेत के रोग से बचल जा सके है।
0: सबसे बड़ बात ये कि जब भी ये दिख जाला तो ई जे बा एकरा पर तुरंत ही जो है हमनी का ध्यान देवे के चाहिए। और यदि कहीं भी इस तरह के संक्रमण पावल गैल रुआ, यदि मान ली के रुआ बारा में या जहाँ भी, तो तुरंत जे बा जे भी संक्रमित मुर्गी बा ओकरा के

0: तुरंत जेबा नष्ट कर दी। सामान्य तौर पर ये जेबा ए तरह के ये बीमारी
1: नहीं ना कि मर गेल है मुर्गी तो ओकरा कहीं फेंक देली ऐसा
0: ना ना
1: ना
0: उड़ा के
1: ऐसे।
0: गड़ा
1: हाँ
0: खून के ओकरा में
1: हाँ गड्ढा खोद के दबा देवे
0: थोड़ा
1: के चाहिए या फिर।
0: सा ही होला कि मुर्गी के भोजन में सावधानी थोड़ा सा ओकरा के क्लोरीन और सोडियम के मात्रा जो नमक से सामान्य तौर पर मिलेल तो बहुत ज़्यादा ना दी ओकरा खातिर जो अनुशंसित मात्रा बा वो हिसाब से ओकरा के वो मात्रा उपलब्ध करावे के चाहिए। और सबसे बड़ उपाय कि वैक्सीनेशन कराई तभी जेबा एकरा से बेहतर बचाव हो सकेला। इस सब पर ध्यान दे के हमनी के बेहतर मुर्गी पालन कर सकेंगे।
1: तो ध्यान रखथिन मुर्गी पालन करे में और रोग से कैसे बचल जाए, अभी हम सब बातचीत में बतैली। और अब हम बतावे ही कि भाई कैसे लोकगीत में हमारे लोक संस्कृति छिपल है। तो स्वर है
0: बनी कलाकार आज के प्रमोद कुमार दुबे सुने के वहां से गीत।

0: वाह, अभी हम सब लोग गीत सुनते हैं लिए प्रमोद कुमार दुबे से। इनका
1: हाँ
0: से आगे भी गीत सुनवाई तो, और अभी एगो समय हो गए है वार्ता के।
1: जामुन के बाग लगाए,
0: हाँ हाँ
1: वार्ताकार बनी डॉक्टर सीमा।
0: चल रही,
1: सुनेंगे
0: इनका सुने वार्ता।
2: जामुन का वैज्ञानिक नाम सीजीजियम कॉम्युनी है। इसका उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी औसतन ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। इसके वृक्ष को एक बार लगाने के बाद यह 50 से 60 साल तक पैदावार देता है। जामुन का संपूर्ण वृक्ष ही काफी उपयोगी होता है। ज्यादातर लोग इसके फल को ही खाना पसंद करते हैं। इसके फलों का जैम, जेली, सिरका, जामुन चूर्ण, जामुन कैप्सूल, शराब और शरबत बनाने में भी उपयोग किया जाता है। जामुन विभिन्न पोषक तत्वों का पावर हाउस है। यह विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरा होने के कारण यह काफी उपयोगी होता है। इसके फलों के सेवन से मधुमेह, एनीमिया, दांत और पेट संबंधी बीमारियों में फायदा होता है। इसके अलावा ये त्वचा को स्वस्थ रखता है, वजन घटाने में मदद करता है, प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में कार्य करता है और गैस्ट्रिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। फल में मौजूद पॉलीफेनोलिक तत्व हृदय समस्या और कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं जामुन के बीज आयुर्वेदिक औषधि के निर्माण में भी काम आते हैं। इसके अलावा जामुन के पेड़ की लकड़ी मजबूत एवं पानी से न खराब होने के कारण इसका उपयोग चौखट, पटरा, रेलवे के शयन कक्ष एवं फर्नीचर आदि बनाने में किया जा सकता है। जामुन के पेड़ को उगाने के लिए समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। सर्दियों में पड़ने वाला पाला और गर्मियों में अत्यधिक तेज गर्मी जामुन के वृक्ष को प्रभावित करते हैं। इसके फलों के पकने में वर्षा का विशेष योगदान होता है, लेकिन फूल आने के दौरान बारिश इसके लिए हानिकारक होती है। जामुन की अधिक पैदावार लेने के लिए जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है तथा जमीन का पीएच मान 5 से 8 के बीच होना चाहिए। नए बाग लगाने के लिए जून, जुलाई, अगस्त का महीना सबसे अच्छा होता है। जामुन की कई उन्नत किस्में हैं जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले जामुन का अधिक उत्पाद लिया जा सकता है। जैसे राजा जामुन, देश में यह किस्म सबसे अधिक उगाई जाती है। यह इसके फल बहुत रसीले और बड़े आकार के होते हैं, जबकि गुठली का आकार छोटा होता है। CISHJ45 और CISHJ37 जामुन की इन किस्मों को सेंट्रल फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है। यह किस्म बारिश के मौसम में पककर तैयार होती है। ताजे फल और प्रसंस्करण दोनों के लिए उपयुक्त है। इसका अधिक गुदा प्रतिशत और छोटी गुठली उपभोक्ताओं को आकर्षित करती है। उत्तर भारत में जामुन की यह किस्म प्रसिद्ध है। री जामुन, यह किस्म के पौधे बारिश के मौसम में फल देते हैं। इसके फल अंडाकार और गुठली बहुत छोटी होती है। यह किस्म पंजाब में अधिक उगाई जाती है। गोमा प्रियंका, यह किस्म को केंद्रीय बागवानी प्रयोग केंद्र गोधरा गुजरात द्वारा विकसित किया गया है। जामुन की यह किस्म काफी अच्छी मानी जाती है। फल बारिश के मौसम में पककर तैयार होते हैं। उपरोक्त प्रजातियों के अलावा काथा, नरेंद्र 6, कोंकण भदोली, बादाम, जत्थी, राजेंद्र 1, पंत सुदर्शन, पंत स्वर्णा भी जामुन की उन्नत किस्में हैं, जिनसे अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। जामुन के पेड़ों को बीज और कलम से तैयार पौधों के माध्यम से किया जाता है। बीज से तैयार पौधा 6 से 7 साल बाद फल देना शुरू करता है, जबकि पैच बडिंग या कटिंग से तैयार पौधा 3 से 4 साल बाद फल आने शुरू हो जाते हैं। इनके पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल तापमान बारिश के मौसम को माना गया है। इसके अलावा यदि आपने रोपण बिजाई के माध्यम से की है तो आपको बीज की रोपाई बारिश के मौसम से पहले करनी होती है। इस दौरान बीजों की रोपाई फरवरी से मार्च माह के अंत तक की जा सकती है। जामुन के बीजों को अंकुरित होने के लिए लगभग 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अंकुरण के बाद पौधों को बढ़ने के लिए सामान्य तापमान

की आवश्यकता होती है। बीज विधि के लिए ताजे बीजों को बेवस्टीन दवा से उपचारित कर लेना चाहिए, इससे बीजों में रोग लगने का खतरा कम हो जाता है। भुरभुरी मिट्टी की नर्सरी में 25x15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक या दो बीज 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। इसके बाद जब पौधा अंकुरित हो जाए तो अच्छी तरह से विकसित होने वाले पौधे को रखकर दूसरे पौधे को हटा देना चाहिए। 10 से 15 दिन बाद बीजों में अंकुरण शुरू हो जाता है। जामुन में टी बडिंग, पैच बडिंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, ये कलम विधियां ज्यादा प्रचलित हैं। किसी भी विधि से नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए 1 साल पुराना रूट स्टॉक लेना चाहिए। ग्राफ्टिंग जुलाई अगस्त में करना चाहिए। जामुन का पूर्ण विकसित पौधा 50 वर्षों तक पैदावार देता है। इसके लिए खेत में पौध रोपाई से पूर्व खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर पुरानी फसल के अवशेष को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। खेत की जुताई के पश्चात उसमें पानी लगाकर पलेवा कर दें। पलेवा करने के कुछ दिन बाद रोटावेटर लगाकर खेत में मौजूद मिट्टी के ढेलों को तोड़कर भुरभुरा कर दिया जाता है और भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। जामुन के पौधे जून से अगस्त तक बरसात के मौसम में लगाए जाने चाहिए। इससे पौधे का विकास अच्छा होता है क्योंकि बरसात के मौसम में पौधों के विकास के लिए अनुकूल तापमान और आर्द्रता मिलता है। इसके बाद पौधों की रोपाई के लिए समतल खेत में 7 से 8 मीटर की दूरी रखते हुए 2 फीट गहरे और 1 मीटर चौड़े व्यास वाले गड्ढे तैयार किए जाते हैं। जामुन के पेड़ को ज्यादा उर्वरक की जरूरत नहीं होती है। पौधे लगाने के समय गड्ढे को अच्छी मिट्टी और सड़ी गोबर की खाद के साथ 3:1 अनुपात से मिलाकर भर दें। इस तरह से 10 से 15 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद गड्ढे में डालते हैं। गोबर की जगह वर्मी कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिक खाद के रूप में प्रत्येक पौधों को 100 ग्राम एनपीके की मात्रा को साल में 3 बार देनी चाहिए, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाए तब यह मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। पूर्ण विकसित पौधों को 50 से 60 किलो गोबर की सड़ी खाद एवं 1 किलो रासायनिक खाद की मात्रा को में 4 बार देना चाहिए। गड्ढे में खाद को डालने के बाद उन्हें हल्की सिंचाई कर दी जानी चाहिए। इन गड्ढों को पौधे रोपने से 1 महीने पहले तैयार कर लेना चाहिए। गर्मी के मौसम में पौधों को सप्ताह में 1 बार और सर्दी के मौसम में 15 दिन के अंतराल पर पानी देना पर्याप्त तो होता है। इसके पौधों की शुरुआत में सर्दी के पाले से दूर रखना चाहिए। इसके पौधों को अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। जामुन का पेड़ पूरी तरह से विकसित होने के बाद उसे साल में केवल 5 से 7 सिंचाई की जरूरत होती है, जो ज्यादातर फल बनने के दौरान की जाती है। जामुन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पहली गुड़ाई पौध रोपाई के 18 से 20 दिन पश्चात की जाती है। आरंभ के वर्ष में इसके पौधे को 7 से 8 गुड़ाई की आवश्यकता होती है। जामुन के पेड़ों के आसपास खरपतवार बढ़ने से कीट व रोगों की समस्या बढ़ जाती है। जामुन के वृक्ष में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका रहती है। जामुन वृक्षों पर लगने वाले कीट में पहला है मकड़ी। मकड़ी से रोकथाम के लिए एकत्रित की हुई पत्तियों को फल लगने से पहले ही तोड़कर जला दें। इसके साथ क्लोरोपीरिफॉस की 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स, इसे नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफॉस 50% EC 30 मिलीलीटर या एसीफेट 75% SP 18 ग्राम या फीफ्रोनील 5% SC 25 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। फल छेदक कीट से बचाव के लिए इमामो कीटन बेंजोएट 5% SG 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें या जैविक उपचार के रूप में बेवेरिया बेसियाना 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पत्ती झुलसा रोग से बचाने के लिए मेनकोजेब 75 WP की 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। एंथ्रेक्नोज रोग नियंत्रण के लिए मेनकोजेब 75 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें या जैविक रूप में ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
जामुन के पौधों को पैदावार देने में

0: 5 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। इस दौरान यदि किसान भाई चाहे तो पौधों के मध्य खाली पड़ी भूमि में कम समय में तैयार होने वाले सब्जी मसाला फसलों को उगाकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। पौधों की तुराई आमतौर पर मई जून में शुरू हो जाती है तथा अगस्त तक चलती है, जो फूल खिलने के करीब 1.5 महीने बाद पकने लगते हैं। फलों के पकने का समय वर्षा का होना लाभकारी होता है। फल पकने के तुरंत बाद ही तुराई कर लेनी चाहिए। इसके फल की तुराई हर दिन करनी चाहिए, क्योंकि इसका फल ज्यादा दिन तक पौधों पर नहीं रहता है। यह फल गिरते हैं तो जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके फलों की तुड़ाई के बाद इन्हें ठंडे पानी से धोना चाहिए। फलों को धोने के बाद उन्हें जालीदार टोकरी में रख लें। इस दौरान यदि कोई फल खराब दिखाई दे रहा है तो उसे अलग कर लेना चाहिए। फिर फलों को बांस की टोकरी या लकड़ी के बक्से में पैक किया जाता है। जामुन को 5 से 6 दिन तक रखने के लिए इनको कम ताप पर रखना होता है। फलों को नुकसान से बचाने के लिए अच्छी तरह से पैकिंग करें और सही समय पर बिक्री के लिए बाजार में ले जाएं। जामुन के एक पेड़ से 80 से 100 किलो फल लिया जा सकता है। जामुन का बाग स्थापित करने में लगभग 35,000 रुपए की लागत आती है और वार्षिक रख रखाव लागत 25,000 रुपए आकी गई है। इसका मुनाफा किस्म और बागों के रख रखाव पर निर्भर करता है। इसके बाग से लागत का 3 गुना शुद्ध लाभ मिल जाता है। इन दिनों जामुन की कीमत सेब संतरा और आम से ज्यादा मिल रही है। इसकी कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक हो रही है। जामुन के 1 हेक्टेयर जमीन से करीब 20 लाख रुपए की आमदनी होती है। हमें बाग से अगर मुनाफा कमाना है तो बाग लगाते समय और बाद में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बाग लगाने के लिए सही स्थान, जैसे बाग सदा पक्की सड़क अथवा रेलवे स्टेशन के पास हो, ताकि खराब होने से पहले बाग की उपज सुविधापूर्वक और समय से बाजार में बिकने के लिए पहुंच सके। उचित सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, विशेषकर ग्रीष्मकाल और फल लगने के बाद। उर्वरक भी समय से पौधों को देते रहना चाहिए, नहीं तो उपज प्रभावित होगा। बाग की सफाई का सदा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बीमारी अथवा कीड़ों के लगते ही उनको रोकने के लिए उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। अतः अंत में हम किसान बंधुओं से यही कहना चाहेंगे कि अगर उचित ढंग से बाग लगाया जाए और बाद में भी सही ढंग से उसकी देखभाल हो, तो लाभ न होने का कोई कारण नहीं है।
1: अभी हम सब बहुत ही उपयोगी वार्ता सुनते हैं लीप उदय भाई।
2: हाँ, जामुन के बाग लगाएं, वार्ता कर रही हैं डॉक्टर सीमा। और अब एक और गीत हमने क्या सुने के कलाकार बने प्रमोद कुमार दुबे।
1: चलो सुनेंगे।

0: वाह, बहुत ही बढ़िया झूमर झुमावे वाला प्रमोद कुमार दुबे के धन्यवाद करेंगे।
1: हाँ
0: और उदय भाई, अब घड़ी इशारा करते हैं, श्रोता लोग से भी विदा लेवे के, अपने से भी विदा ले ही। तो प्रणाम उदय भाई।
1: प्रणाम मंजुला बहन।
0: इस

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: छाया गीत और इंडिया रेडियो।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए
2: नमस्कार ये आकाशवाणी पटना है अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले मुख्य समाचार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत के साथ साथ बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है बेगूसराय जिले के पखट्टा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम 2 लोगों की गिरफ्तारी कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त और मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुरू हो जाएगी मॉनसून की बारिश अब समाचार विस्तार से भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है जो जनता के विश्वास का प्रमाण है श्री चौधरी मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पटना में आयोजित मीडिया संवाद को संबोधित कर रहे थे
3: आज लगभग 12 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हुए हैं साथियों और 12 साल के इतिहास में मैं सर्वप्रथम उनको बधाई भी देता हूं कि आज इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में जब से आजादी मिली और लोकतंत्र स्थापित हुआ 1952 में तब से सबसे लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं
2: श्री चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करना भाजपा की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा किया गया इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना भी पूरा हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई राज्य को विभिन्न मदों में 12,90,000 करोड़ रुपए की सहायता और आवंटन मिला श्री चौधरी ने बताया कि राजगीर और मुंगेर में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की योजना है जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे उन्होंने कहा कि सरकार ने एक वर्ष में 5,00,000 करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में लगातार प्रगति हो रही है
3: बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है कि हर हालत में 20 नवंबर को जब NDA सरकार का 1 साल पूरा होगा तो लगभग 5,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का काम इसकी व्यवस्था पर हम लोग चिंता कर
2: राज्य के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दे पर श्री चौधरी ने कहा कि वित्तीय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार नियोजित तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा हेल्थ केयर साफ सफाई आवास खेल विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है।

0: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक विक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। केंद्र सरकार ने प्याज के खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात चार पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने के चलते हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि मधेपुरा जिले के अरार थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, बेलारी थानाध्यक्ष नीरज कुमार तथा रतवारा थानाध्यक्ष साजन कुमार और कार चालक की मौत हो गई। सभी पुलिसकर्मी पटना से वापस लौट रहे थे।
1: देर रात में ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 लोग की मृत्यु हुई। 3 पुलिस ऑफिसर्स मधेपुरा पुलिस के सर्विंग एसएचओ

0: और एक जो ड्राइवर थी इस गाड़ी से लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से सैफपुर कमाल खान अंतर्गत हाईवे पे, उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। गाड़ी पटना से होते ही मतलब मधेपुरा की तरफ जा रही है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में 3 थानाध्यक्षों समेत 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है। बेगूसराय में 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश नाकाम हुई है। तकनीकी शाखा और पकड़ी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए परीक्षा में सेटिंग कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि छापेमारी कर आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश रोशन और दुलार चंद यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ डिवाइस लगा चप्पल, मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, चार्जर तथा कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र समेत अन्य उपकरण जब्त किए हैं। इससे पहले बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में भी धांधली और अवैध लाभ पहुंचाने के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मुंगेर और अरवल से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय थाना की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनु कुमारी ने बताया कि धांधली और साइबर गैंग की संलिप्तता की जांच की जा रही है।
2: कुल 10 अभ्यर्थी को अरवल एवं मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थापित किया जा रहा है। अभी तक इस कांड में कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ जो है वो स्कॉलर है, कुछ जो है वो अभ्यर्थी है, इन सबका सत्यापन किया जा रहा है।
1: मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुए भीषण अग्निकांड मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में कई अनियमितता सामने आई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार जिले में भारी बारिश हुई है। जिले के प्राणपुर में सबसे अधिक 82.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
3: राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के जिलों एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे

0: तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
1: राजधानी पटना में बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल का चौथा वार्षिक अधिवेशन कल से शुरू हो रहा है। दो दिवसीय इस अधिवेशन में देश विदेश के कई जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। भोजपुर जिले के धनगाई थाना क्षेत्र अंतर्गत महोरही ओवरब्रिज के पास से उत्पाद विभाग और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने एक ट्रक से 1,35,00,000 रुपए मूल्य की शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत के साथ साथ बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत। 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, 2 लोगों की गिरफ्तारी, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुरू हो जाएगी मॉनसून की बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
1: औरंगाबाद जिले में चालू खरीफ मौसम में धान की खेती के लिए विभाग और किसानों के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में इस वर्ष 1,72,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किसानों को धान की खेती के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। इसी क्रम में बीते दिनों खरीफ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि धान का अधिकाधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए किसानों को हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज ने कहा कि धान की खेती के लिए किसानों को खाद, बीज और अन्य आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्र सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय राजनीति के समकालीन इतिहास में पिछले 12 वर्षों को ऐसे दौर के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसमें सत्ता, सुशासन, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुधार और तकनीकी परिवर्तन के अनेक अध्याय एक साथ लिखे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक बने रहने का रिकॉर्ड स्थापित करने पर एनडीए के जनप्रतिनिधियों और

कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधायक प्रमोद कुमार सिंह, त्रिविक्रम नारायण सिंह, प्रकाश चंद्रा तथा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं कृष्ण बल्लभ सिंह बबुआ जी, अनिल कुमार सिंह और सतीश कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत पूरा भारत विकास के पथ पर अग्रसर है तथा देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में

0: तथा देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एनटीपीसी की ओर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बालिका सशक्तिकरण अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीआईएसएफ के आईजी प्रबोध चंद्र, एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक और परियोजना प्रमुख एलके बेहरा तथा स्वरा महिला क्लब की अध्यक्ष आरती बेहरा ने किया। इस अभियान के तहत चयनित 61 ग्रामीण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहीं भारतीय रेल बिजली कंपनी की ओर से बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत 40 ग्रामीण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक रंजन देहुरी ने बताया कि यह अभियान ग्रामीण बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला एक प्रेरक प्रयास साबित होगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को पार्टी के ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीते दिनों श्री चंद्रवंशी औरंगाबाद जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। श्री चंद्रवंशी ने बताया कि वे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि समाज के पिछड़े वर्गों को भी इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने 9 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर औरंगाबाद पटना सड़क को 4 लेन बनाने, जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना शीघ्र कराने तथा उत्तर कोयल नहर परियोजना के कार्यों में तेजी लाकर किसानों को सिंचाई का लाभ जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के सचिवों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं रफीगंज से जदयू विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य योजनाओं को तेजी से लागू करने का अनुरोध किया। औरंगाबाद डाल्टनगंज पथ पर बटाने नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का परिचालन बंद है। इससे आम यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक आवागमन के लिए डायवर्सन निर्माण की दिशा में पहल की है, ताकि जल्द से जल्द सामान्य यातायात बहाल किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। औरंगाबाद जिले में अपराध नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रात्रि गश्त तथा वाहन जांच अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल के मार्गदर्शन में सभी थाना क्षेत्रों में लोक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। औरंगाबाद की जिला पार्षद नीतू सिंह तथा कुटुम्बा प्रखंड के प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पंचायत स्तर पर बेहतर प्रशासन, जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधिश्री। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान बुनियादी ढांचे के विस्तार, जन कल्याणकारी योजनाओं, कृषि, डिजिटल सेवाओं और कनेक्टिविटी जैसे अनेक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहले की गई हैं। इन पहलों का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है, मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण बागी जी और साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रियरंजन भारती जी। आकाशवाणी में आप दोनों का हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: पहला सवाल प्रवीण बागी जी आपसे करना चाहूंगी कि अगर हम समग्र रूप से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के दौरान बिहार में विकास की तस्वीर को आप कैसे देखते हैं?
3: देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये बिहार की जो तस्वीर थी वो अब तक बड़ी धूमिल रही है और पिछड़ेपन के कारण बिहार की पहचान रही है। बिहार जाना जाता रहा है जहाँ भूखमरी है, पिछड़ापन है, अविकसित प्रदेश है, अपराध है, शिक्षा का अभाव है, जल जमाव और बाढ़ सुखाड़ की समस्या है। मगर अब जो बिहार दिखता है वो बिल्कुल एक स्वावलंबी बिहार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और लगातार विकास की योजनाएं एक एक करके आ रही हैं और बिहार का बहुत तेजी से विकास हो रहा है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या उद्योग लगाने की बात हो, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अपराध नियंत्रण की बात हो, सब में सरकार ने बहुत उल्लेखनीय काम किया है और इस सब के पीछे केंद्र सरकार की प्रेरणा रही है, क्योंकि बिहार में भी एनडीए की सरकार है।

0: तो इसलिए केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिला और प्रधानमंत्री मोदी की निजी दिलचस्पी रही है कि बिहार को विकास के शिखर तक पहुंचाया जाए।
1: गरीब कल्याण, खाद्यान्न सुरक्षा, आवास या स्वास्थ्य जुड़ी योजनाओं का बिहार के गरीब और वंचित वर्गों के जीवन पर कितना प्रभाव आप देखते हैं?
2: प्रवीण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बिहार की जो तस्वीर देश दुनिया में रही है वो बड़े पिछड़ेपन की आकृति वाली रही है। पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीबी में जीते हैं, इस तरह की एक तस्वीर दुनिया भर में, खास करके देश के कई राज्यों में जानी जाती है। पहचान बना हुआ है बिहार का अगर तो इसी रूप में। लेकिन अब इस 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए सरकार है उसने बिहार की इस बनी बनाई तस्वीर से इसको निकालने की जद्दोजहद की है। और वो सिर्फ नारे के रूप में नहीं है, सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लागू की और उन योजनाओं के बनिस्पत हम ये दावा कर सकते हैं कि बिहार की तस्वीर, बिहार की सूरत आज बदल रही है। अब बिहार विकसित राज्यों के, विकासशील राज्यों की श्रेणी में है, विकसित राज्य बनने की तरफ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर के आपने जो बात कही तो ये खाद्यान्न सुरक्षा और वित्तीय सहायता देने की योजना है और इसमें बिहार का 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है देश भर में। अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारियों के प्रति माह प्रति परिवार 35 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। इस व्यवस्था के तहत बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार का अनुपात भी बहुत हद तक उसमें प्रभावकारी है और मुझे लगता है कि इससे जो तंगहाली और भुखमरी की स्थितियां रही हैं बिहार में कई सुदूर इलाकों में वो आज की तारीख में वैसी दिख नहीं रही है। लेकिन कई और प्रयोग करने होंगे और काफी हद तक ये बात भी आई कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, बीएनडीए की सरकार है, तो इस सरकार के रहते बिहार की सरकार की अपनी योजनाओं का लाभ और केंद्र की योजना के लाभ से उत्तरोत्तर लोगों का कल्याण हो रहा है और ये तस्वीर बदलती नजर आ रही है।
1: फसल बीमा योजना का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी या किसान क्रेडिट कार्ड, इन पहलों ने आज की तारीख में जो बिहार के किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर या यूं कह लें कि खेती किसानी को किस प्रकार प्रभावित किया है?
2: संबल मिला है इससे काफी हद तक। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ बिहार के बहुतेरे किसान उठा रहे हैं, उनको मिल रहा है और इसके लिए बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। जो उस क्राइटेरिया में आते हैं उन किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लोग उठा रहे हैं और उसके साथ साथ क्षति जो होती है, बर्बादी होती है फसलों की, बाढ़ से होती है, सूखे से होती है या फिर अन्य तरह की आपदाओं से होती है, उन आपदाओं से जो क्षति होती है उसके लिए भी सरकार ने विशेष वित्तीय सहायता का प्रबंध किया है और उसका भी लाभ उठा रहे। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लोग, किसान और किसान का परिवार अगर लाभान्वित होता है सरकार की इस तरह की मदद से तो आप सोच लीजिए कि बिहार की सूरत तो स्वाभाविक रूप से बदलती हुई नजर आएगी। वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में भी किसानों को जो दिक्कतें आती थी उन दिक्कतों का भी अब समाधान सरकार ने करना शुरू किया है और इससे भी किसानों को फायदा मिल रहा है। किसानों के जो फसल नष्ट हो जाते थे कीटों के हमले से भी फसल नष्ट होती थी, उन कई कारण से भी, उन आपदाओं से भी सरकार ने निपटने के लिए इनकी आर्थिक सहायता के प्रबंध भरसक किए हैं और इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। और तस्वीर जो किसानों की है, किसान उसी पर निर्भर है, खेती किसानी पर निर्भर है, उनका परिवार उसी पर निर्भर करता है और उनके बाल बच्चे, उनके परिवार का पोषण, उस दृष्टि से आप देखिए कि सरकार की इन मदद से काफी हद तक अब उन्हें मजबूती मिली है, वो अब विकसित होते हुए नजर आ रहे हैं।
1: प्रवीण बागी जी, आपसे एक सवाल है कि पटना मेट्रो परियोजना या नए राष्ट्रीय राजमार्ग रेल परियोजना है, हवाई सेवाओं का जिस तरह विस्तार है, इन सबको अगर समग्र तौर पर देखें तो बिहार के विकास और शहरीकरण के संदर्भ में आप कैसे देखेंगे?
0: बिहार को माना जाता है कि मूलतः गांव का प्रदेश है, मगर हाल के वर्षों में बहुत तेजी से शहरीकरण हुआ।

0: है। शहरों में हालत ये हो गई है कि अब जमीन नहीं मिल रही है कि लोग घर बना सकें, तो शहरों का विकास किया जा रहा है। अभी बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 11 नए सेटेलाइट शहर बसाए जाएंगे बिहार में, और वहाँ एकदम आइडियल सिटी वो होगा, डेवलप सिटी होगा। तो उससे जो मौजूदा शहर हैं उन पर जो आबादी का बोझ बढ़ रहा है वो बोझ कम होगा, और वहाँ आबादी, नई आबादी शिफ्ट होगी। और मेट्रो की बात करें तो अभी देश के 15 शहरों में मेट्रो सेवा चल रही है, उसमें पटना भी इंक्लूड है। पटना में भी एक हिस्से में मेट्रो की सेवा शुरू हो गई है, हालांकि काम थोड़ा धीमा चल रहा है, मगर लगता है कि 5 साल के अंदर पूरा पटना शहर जो है, नगर निगम क्षेत्र, वो मेट्रो कवर कर लेगा। तो इससे एक बड़ी सुविधा होगी, खास करके जो डेली पैसेंजर हैं, जो ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनको बड़ी सुविधा होगी। और ये जो अभी ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है उससे भी उन्हें निजात मिलेगा। इस मामले में जो बिहार सरकार है या केंद्र सरकार है, दोनों ने बहुत मिलजुल करके, बेहतर तालमेल के साथ बहुत अच्छा काम किया है।
1: और एक सवाल आपसे लेना चाहूं प्रिय रंजन जी, तो अर्थव्यवस्था, निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर कितना असर पड़ा है इन विस्तारीकरण से?
2: सिद्धांततः अगर देखिए तो विस्तारीकरण से या विकासशीलता से रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों और रोजगार के अवसर हमेशा पैदा होते ही हैं। हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है, कुछ कुछ का उद्घाटन, कुछ की और प्रक्रिया चालू है, तो उसके साथ भी विकास की तरफ बढ़ने वाली रफ्तार है, और रोजगार के जो अवसर बनेंगे उसके साथ साथ जो बेरोजगारी की एक अजीब तरह की बनावट बन गई है बिहार के लिए, कि बिहार के लोग ज्यादा दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं, तो ऐसे अवसर जितने भी बढ़ेंगे उतना ही पलायन रुकेगा, और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों के लिए की ओर मुंह करने वाले कम हो जाएंगे। यानी बिहार में अपने घर में, अपने क्षेत्र में ही लोगों को अवसर मिलते हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों का पलायन रुकेगा, और जो पलायन रुकना भी चाहिए। इस दृष्टि से देखिए तो जितने भी ये निर्माण कार्य हो रहे हैं, और चाहे मेट्रो हो, हवाई अड्डों का निर्माण हो, पुलों का की संरचना का विकास हो, इन सबसे रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं, और सरकारी सेवाओं में भी लोगों को अवसर।
0: इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा
1: जी।
0: कि 11 शहरों को भी लिया गया है उड़ान योजना के तहत, जहाँ हवाई अड्डे बनेंगे वो पूरी तरह से केंद्रीय सहयोग से बनेगा, और पहले भी पूर्णिया में, दरभंगा में हवाई अड्डे बन चुके हैं, तो अब और 11 शहर बन जाएंगे, तो बिहार की जो वायु कनेक्टिविटी है, हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर और मजबूत हो जाएगी। इसका लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, और अभी जो ट्रेनों में भीड़ है, कई बार इमरजेंसी में भी टिकट नहीं मिल पाता है लोगों को, तो वो उस माध्यम से आना जाना कर सकेंगे।
1: तो इसमें विकसित भारत 2047 की जो बात हो रही है, बिहार की भूमिका कहाँ देखते हैं आप प्रवीण जी?
0: बिहार उनके जो जो उनकी सोच है, पीएम मोदी की जो सोच है, उस सोच के अनुरूप तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे पहले नीतीश जी की सरकार थी या अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती है,
1: जी।
0: और दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी का जो गाइडलाइन है प्रदेशों के विकास के लिए, उस पर काम कर रहे हैं, और इसका फायदा भी मिल रहा है। बिहार सरकार को हर तरह की मदद केंद्र सरकार से मिल रही है, और कई नई योजनाएं, विशिष्ट योजनाएं जो सिर्फ बिहार के लिए हैं, वो यहाँ लागू होने वाली हैं, कई लागू हो चुकी हैं, तो ये बिहार आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी जो कहते हैं वो सिर्फ कथन नहीं होता, वो उस पर एक्ट भी करते हैं, उस पर आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और भारत को लंबे अरसे के बाद ऐसा एक नेतृत्व मिला है जो एक दूरदृष्टि रखता है, और उस दिशा में देश को आगे ले जाने का संकल्प भी उसके पास है।
1: तो महत्वपूर्ण उपलब्धियां अगर मैं आपसे जानना चाहूं, और साथ में क्या आगे प्रमुख चुनौतियां हैं सरकार की?
2: कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी श्रृंखला है, लेकिन प्रमुखता से अगर देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीबों के लिए, और जनधन

0: खाता योजना शुरुआत में जिस तरह से आपाधापी हुई, जिनके पास खाते नहीं थे, बैंक में बैंक का मुंह नहीं देखा था, वैसे परिवारों के जनधन खाते खोले गए और जो भी आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से फसल के मद में या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के का जो की राशि होती है वो या विभिन्न मदों में जो सहायता मिलती है वो सीधे उनके खातों में पहुंचने लगी ये योजना। फिर देखें आप तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव और सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी एक ऐसी योजना है जो खस्ता हाल तंगहाली में जीने वाला परिवार है उनकी सहायता के लिए सुकन्या समृद्धि में शामिल किया जाना उन परिवारों को, उनकी बेहतरी के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए इस तरह की योजना बढ़ाई गई, उससे लाभ पहुंचा लोगों को, कन्याओं को विकसित करने और उनको शिक्षित बनाने, उनके शादी ब्याह के की तैयारियों में इस तरह की योजना से काफी मदद मिली। आयुष्मान भारत योजना तो सबसे मील का पत्थर साबित हुआ। अब आप देखिए कि ये योजना जो है जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उन परिवारों को मिलता है जो कि इसकी पात्रता रखते हैं, और वो पात्रता वैसी है कि जो आर्थिक रूप से बहुत संबल नहीं है, जो गरीबी रेखा के निचले स्तर पर रह रहे हैं, किसान हैं और दूसरे तरह के मजदूरी इस करके जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरह का लाभ मिलना। फिर आप किसान परिवार के लोगों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, ये सारी चीजें इस तरह की योजनाएं हैं जिस तरह लोगों को खास करके जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनके लिए ये कारगर योजनाएं साबित हुई हैं। और इसी के बूते आप कह सकते हैं कि तस्वीर बदल रही है, खास करके बिहार जैसे पिछड़े राज्य की तस्वीर तो बेशक बदल रही है, बहुत सारा विकास का पहिया अभी और घूमना है, लेकिन इन योजनाओं के मार्फत आप कह सकते हैं कि बिहार की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जिन योजनाओं की बात मैंने की उसके अलावा भी कई प्रमुख योजनाएं ऐसी हैं जिसका बहुत व्यापक असर हो रहा है, लोग के जीवन स्तर में सुधार हो रहे हैं। उसे गरीबों को पक्का घर देने की सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नीति बनाई गई उससे बहुत लोगों को, हालांकि उसमें भी अपने स्तर से जो अफसरान हैं भ्रष्ट वो लगे हुए हैं, कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसी तरह से आप देखिए कि डिजिटलाइजेशन के जरिए सरकार ने सारी योजनाओं को जिस तरह से डिजिटलाइज कर दिया है वो एक क्रांतिकारी कदम है, उससे बहुत, और स्वच्छता पर जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जोर दिया स्वच्छता अभियान का, वो अपने आप शौचालय निर्माण की दिशा में पहल और फिर स्वच्छता पर ज्यादा फोकस करने से सरकार जो तरक्की शुदा बनाना चाहती है देश को उसकी सूरत भी बदलती हुई दिखनी चाहिए और स्वच्छता का असर भी बहुत व्यापक रूप से पड़ा है।
1: डॉल्फिन संरक्षण परियोजना करके एक आया था और मुझे लगता है 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया था कि चर्चा कम होती है।
2: अब भागलपुर में डॉल्फिन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है गंगा में जी, और वो माना जाता है कि डॉल्फिन का पाया जाना इसका मतलब कि नदी का स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, तो तभी वही डॉल्फिन पाई जाती है। तो अज्ञानतावश उसको मछली समझ के उसका शिकार कर लेते थे पहले मछुआरे, मगर बाद में जब सरकारी अभियान योजनाएं शुरू हुई तो मछुआरों को भी जागरूक किया गया, तो अब मछुआरे खुद उसके रक्षक बन के खड़े हैं, तो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना में भी एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है यहाँ गंगा नदी के किनारे, मगर वो अभी फंक्शनल नहीं हो पाया है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्दी फंक्शनल हो जाएगा तो इस अभियान को और गति मिलेगी।
1: इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, थीम जन विश्वास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
4: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री

0: गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
2: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज

0: का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत तो उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को

0: उसके चलते भी रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है। उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के संघर्ष

सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे। ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सोल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने, और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो है वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे।
और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है।

0: हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह के ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए

0: कंपटीशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए हैं। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है, और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है, और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित।

0: मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा,
1: जी
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, भाव जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसे संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसे जब भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम सुनते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन नीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से। तो इस

0: इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014

0: को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है।

0: विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is

0: जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: मरकजी काबीना के सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के साथ एक मीटिंग में नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। जायजे के दौरान जनाब सोमनाथन ने तमाम मुतालिका तरफेन के दरमियान गहरे तालमेल के साथ बिला रुकावट, शफाफ और महफूज दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारें और ज़िला इंतजामिया नीट के दोबारा इम्तिहान को बिला रुकावट मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से गहरे तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे कबल इस माह के आगाज में जनाब सोमनाथन मरकजी हुकूमत और मुतालिका एजेंसियों के सेक्रेटरियों के साथ इंतजाम का जायजा ले चुके हैं। इधर NTA ने इस माह की 21 तारीख को होने वाले NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान की विंडो में 15 मिनट का इजाफा किया है और इसे 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये आकाशवाणी है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाज डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इन हमलों के नतीजे में पहले ही 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलफ हो चुकी हैं। अमरीकी एलची को नई दिल्ली में वजारत खारजा ने अमरीकी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी ने तलब किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि उसने एक बार फिर शहरी जहाजरानी के खिलाफ इंतहाई मोहलिक कुव्वत के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तशवीश से उन्हें वाकिफ कराया। वजारत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नाकाबिल कबूल है और एक मुश्किल वक्त में एक हसास इलाके में बैनुल अक्वामी सरहदों में कारोबार के तहफ्फुज़, सलामती और इस्तेहकाम को कमजोर करती है। अमरीका के शाज डिफियर से दरख्वास्त की गई कि वह अपने हुक्काम को भारत की सख्त तशवीश से वाकिफ कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि खित्ते में कार्रवाई में शामिल अमरीकी फोर्सेज शहरियों की जिंदगी के नुकसान की रोकथाम के लिए सभी जरूरी इकदाम करें। ये दूसरी मरतबा है कि अमरीकी LG को वजारत में तलब किया गया। भारत के 3 मल्लाह जिनके बारे में इब्तदाई इत्तिलात मिली थी कि वो लापता हैं, तस्दीक हो गई है कि वो एक हमले में अपनी जानें गंवा बैठे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आबनाए हुरमुस से रवाना होने वाले भारतीय जहाज़ों पर ड्रोन हमले कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने इन वाक़यात को कतई तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। उनका ये बयान भारत की जानिब से अमरीका के शॉज डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किए जाने और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फौजों के जारी हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराने के बाद सामने आया है। इससे कबल दिन में ईरान ने कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की थी और इन्हें हलाकत खेज करार दिया था और वाशिंगटन पर लाकानूनियत पर मबनी कार्रवाई में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया था जिससे आलमी अमन और समुद्री सरहद की सलामती को ख़तरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और बैनुल अक़वामी बिरादरी से जोर देकर कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए। मगरबी एशिया में लड़ाई को रोकने की सिफारती कोशिशें आज भी नतीजा खेज साबित नहीं हुईं। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमरीका के साथ किसी मुजवजा माहदे पर अभी तक कोई कतई फैसला नहीं किया है। ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की बराह रास्त तरदीद है जिसमें उन्होंने इससे पहले कहा था कि कुछ ही दिन में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि किसी कतई माहदे के बारे में या दस्तखत किए जाने की कोई तकरीब मुनक़िद होने के बारे में बात करना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात के ज़्यादातर मतन को मुसव्वदे की शक्ल दे दी गई है। मज़ीद तफ़सील मग़रिबी एशिया के हमारे नामा निगार से।
2: मग़रिबी एशिया के लिए ये नई सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। मुजव्वज़ा हमले रोक देने के सदर ट्रंप के ऐलान के बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि खित्ते में वसी तर तनाज़े को टाला जा सकता है। हालांकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि किसी भी हतमी समझौते को मंजूरी नहीं दी गई है और कई अहम उमूर हल तलब हैं। अहम नुकात में ईरान का एटमी प्रोग्राम, मुंजमिद इसासों को जारी करना और आबनाए हुरमुज़ के तरफ मुस्तकबिल में सिक्योरिटी बंदोबस्त शामिल हैं। इस सूरत हाल में जबकि मुज़ाकरातकार पसे पर्दा बातचीत में मसरूफ़ हैं, पूरे खित्ते में फौजी सरगर्मियाँ भी जारी हैं जिससे यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या सिफारती पेशरफ्त को नाकाम बना सकता है। दुबई से विनोद

0: कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: सियोल की एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर यून सुक यूल को आज 30 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें शुमाली कोरिया के साथ कशीदगी बढ़ाने के लिए ड्रोन कार्रवाई का हुक्म देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ के ऐलान को जायज ठहराने का कसूरवार पाया। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जेल में बंद साबिक सदर को दुश्मन को फायदा पहुंचाने और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात का कसूरवार करार दिया। साबिक वजीर दिफा किम योंग हुन को भी इस कार्रवाई के दौरान उनके रोल की बिना पर 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साबिक सदर यून ने शुमाली कोरिया को मुश्तैल करने के लिए अक्टूबर 2024 में ड्रोन मिशन का हुक्म दिया और मार्शल ला नाफिज करने का पस मंजर तैयार किया। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों किसानों खातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी कायद बनाने की हुकूमत की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत अपनी जुर्रतमंदाना पहल की बदौलत उमंगों भरे इकदामात के जरिए आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ यकजा किया गया, जिससे आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भारत की आवाज़ की गूंज सुनाई दी। भारत ने न सिर्फ अपने पुराने ताल्लुकात को मुस्तहकम किया बल्कि नए दोस्त भी बनाए, जिससे मुल्क की खारजा पॉलिसी में एक नई तवानाई पैदा हुई है। जबकि भारत पहले का नज़रिया मुल्क की खारजा पॉलिसी में लगातार सबसे ऊपर रहा। भारत की आलमी मसरूफियात में इंसानी बुनियादों पर मदद और कुदरती आफात के दौरान बचाव कार्रवाइयों ने अहम रोल अदा किया। श्रीलंका के शुमाली साहिल पर समंदरी तूफान दितवा की वजह से नवंबर 2025 में सैकड़ों लोग हलाक हो गए, हजारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा और अहम बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। इस दौरान श्रीलंका के आवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु का आगाज किया, ताकि श्रीलंका को फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और कुदरती आफत के दौरान राहत पहुंचाई जा सके। भारत की खारजा पॉलिसी की अहम झलक उस वक्त नजर आई जब कोविड-19 बहरान के दौरान भारत ने अपनी इंसानियत मरकूज सिफारतकारी के तौर पर वैक्सीन मैत्री पहल का आगाज किया। भारत ने जनवरी 2021 से 99 मुल्कों और अक्वामे मुत्तहदा के 2 इदारों को 30,12,00,000 से ज़्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ऑपरेशन सागर बंधु और वैक्सीन मैत्री जैसी मुतासिर कुन पहल के इम्तजाज की बदौलत भारत गुज़िश्ता 12 साल में आलमी कायद बनकर उभरा है। इंसानी बुनियाद पर मदद और इलाकाई साझेदारी के तई अहदबस्तगी की जड़ें भारत की वसुधैव कुटुंबकम जैसी सकाफती इकदार में पैवस्त हैं। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: पीवी सिंधु सिडनी में जारी ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दर्जे की भारतीय खिलाड़ी ने चीनी ताइपी की चिन सू यू को एक तरफा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-6 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभिंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाढ़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शॉज डिफेयर जैसन वीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। स्वर सहयोग रानू सिंह और प्रस्तुति रजत कुमार की।

नमस्कार श्रोताओं, हिंदी रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रानू सिंह। श्रोताओं, अपनी इस पत्रिका के द्वारा हम साहित्य की विशेषताओं की चर्चा आपसे करते हैं और आज भी हम ये करने जा रहे हैं। श्रोताओं, जब भी बात साहित्य की होती है, संवेदना स्वयं वहां अपना स्थान बना लेती है। संवेदना, अधिकतर लोगों को यही लगता है कि यह दुर्बलता का प्रतीक है, परंतु संवेदना आपको दुर्बल नहीं बनाती। प्रायः यह विचार आता है कि अधिक संवेदनशील व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, वे निर्णय व्यावहारिक होकर नहीं ले पाते। परंतु सत्य यह है कि भावुक होते हुए यदि आप किसी परिस्थिति में निर्णय ले पाते हैं, तो आप अपने भीतर किसी प्रकार के अपराध बोध में जीवित नहीं रहते। आप भावुक हैं, अर्थात आप सबकी भावना को समझते हैं और अंततः आप कोई ठोस निर्णय लेते हैं। इसलिए संवेदनशील होना आपकी दुर्बलता नहीं, आपके भीतर की शक्ति को प्रदर्शित करता है। आज के समय में जहां एक सड़क पर कोई घटना हो जाए, तो इंसान पहले मोबाइल फोन निकालकर उसे अपने कैमरे में सुरक्षित करने के लिए तत्पर हो जाता है, बिना ये सोचे कि इस परिस्थिति में उसका दायित्व क्या है। ये संवेदनहीनता का प्रमाण बनता है। श्रोताओं, आज की दुनिया इतनी स्वार्थी होती जा रही है कि किसी की सहायता करने के पूर्व भी हम हानि और लाभ का विचार अपने मस्तिष्क में ले आते हैं। यदि ऐसे समय में साहित्य के अध्ययन से हम में संवेदना जागृत होती है, तो इसमें हमारा ही लाभ है। तो श्रोताओं, ऐसी बातें हम करते रहेंगे। यहाँ समय हो चला है संपादकीय का। श्रोताओं, आज के संपादकीय में हम आपसे एक ऐसी साहित्यकार की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं जिनकी रचना ने विश्व मंच पर हिंदी को अपनी पहचान दिलाई। वह पहचान जो समय के साथ थोड़ी धुंध अपने ऊपर लपेट ली थी, उस धुंध को उन्होंने अपनी स्याह से साफ कर दिया। इतना साफ कि उसकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशा में होने लगी। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की विजेता गीतांजलि श्री की। आपको बता दें, यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली हिंदी लेखिका हैं, जिन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, जो हर साल अंग्रेजी में अनुदित हुई किताब को दिया जाता है। इसके लिए कुछ नियम हैं कि किताब किसी भी भाषा में लिखी हो सकती है, पर अंग्रेजी अनुवाद यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होनी चाहिए। श्रोताओं, जब विश्व स्तरीय मंच पर हिंदी रचना की प्रशंसा होती है, तो यह हम भारतीयों के लिए भी गर्व का विषय बन जाता है। साथ ही साथ ऐसे क्षण हिंदी के महत्व का अनुभव कराते हैं, हिंदी में पढ़ने लिखने वालों को प्रेरणा देते हैं कि वे इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गीतांजलि श्री का जन्म 12 जून 1957 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ। दिल्ली में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और अध्यापन के कार्य में जुड़ गई। अध्यापन करते हुए उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। उनकी पहली कहानी बेलपात्र थी, जो कि हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लिखना उन्हें बहुत प्रिय था और लगभग 1990 से वे निरंतर लिखना प्रारंभ कर चुकी थी। उनकी हर रचना कुछ नवीनता लिए पाठकों के बीच उपस्थित होती। उनका पहला उपन्यास माई माँ बेटी के संबंध में छुपे कई अनगिनत पर्दों को खोलती है, तो उनके द्वारा रचित हमारा शहर उस बरस बाबरी मस्जिद के बाद दिल्ली के दीवारों पर पड़ी दरारों को दिखाती है। उनके उपन्यास खाली जगह ने बम विस्फोट और उसके बाद होने वाली त्रासदी का काल्पनिक और यथार्थवादी चित्रण किया है, जो कि मर्मांतक है। उनका उपन्यास रेत समाधि 80 साल की एक अम्मा पर केंद्रित है, जो अपना बचपन ढूंढने पाकिस्तान जाती है। इसे उन्होंने बिल्कुल वैसे लिखा है जैसे वो स्वयं वहां हो। वे इसकी चिंता ही नहीं करती कि साहित्य के कुछ मानक भी हैं। वे बस अपने विचारों के साथ बहती चली जाती हैं। भाषा को जब जहां चाहती तोड़ती हैं, मरोड़ती हैं, लय में शब्दों को इकट्ठा करती हैं और एक ऐसा चित्र तैयार करती हैं जो एकदम नया है, जिसकी कल्पना बिंदु तक पहुंचना भी असंभव है। गीतांजलि श्री एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने साहित्य को स्वतंत्र रूप में स्वीकार किया है। किसी भी बंधन में उन्हें विचारों का बंधना स्वीकार नहीं। साहित्य बिल्कुल हमारे हृदय समान होता है, कभी चंचल तो कभी अडिग। एक रूपता इसकी पहचान नहीं, बल्कि इसकी पहचान है इसकी विविधता। श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे संपादकीय। संपादकीय के बाद अब समय हो चुका है जरा सोचिएगा। श्रोताओं, हमारे माता पिता हमें बहुत स्नेह करते हैं। उनका ये प्रयास रहता है कि वे अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। परंतु आज इसमें एक समस्या आ गई है। अपने काम के कारण

0: या कोई निजी समस्यावश लोग अपने परिवार से दूर हो गए हैं। कुछ लोगों को यह स्वतंत्रता का आभास कराता है, क्योंकि ऐसे में ना वो किसी का रोकना टोकना सुनते हैं और ना ही दूसरों की समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। परंतु ये सदा के लिए सही नहीं है। जिसे हम स्वतंत्रता का नाम दे रहे हैं, वह वास्तविकता में हमें अकेलेपन का आदी बनाता जा रहा है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे संबंधों को समझना भूलते जा रहे हैं, दादा दादी नाना नानी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इन संबंधों की सुंदरता से वे दूर हो रहे हैं। उनके भीतर संयम नहीं आ रहा, जो कि उनके भविष्य के लिए गलत है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वे एक अच्छे इंसान बने, तो हमें हमारे बुजुर्गों से अपने बच्चों का स्नेह बढ़ाना होगा, जिसकी पहल हमें ही करनी होगी। जरा सोची की बात, अब समय है आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने की। तो आइए सुनते हैं संजीव कुमार आलोक से उनकी कहानी खट्टा मीठा।
1: रानी आज काफी उदास थी, मानो ऐसा जैसे वह दया की पात्र बन गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अधी और उसके रिश्ते एक दिन ऐसे बन जाएंगे कि उसके चाहने से भी यह रिश्ता टूट नहीं पाएगा। वह मन ही मन अधीर को अपना सब कुछ मान चुकी थी, लेकिन उसमें इतनी साहस नहीं थी कि वह आगे बढ़ सकती थी। वह अपने प्यार का इजहार अधीर से नहीं कर पाई। वह मन ही मन कह उठी, अधीर, मैं कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं? पर क्या तुम भी मुझसे प्रेम करते हो या नहीं, यह मुझे पता नहीं। वहीं अधीर भी रानी के साथ बिताया हुआ उस बचपन को नहीं भूल पाया था। खुशी के दिन एक साथ बिताए थे। उन दोनों के दिलों में बचपन की यादों में खट्टा मीठापन है, खेल की मस्ती है। बचपन से दोनों एक दूसरे के खुशी के लिए जीते रहे हैं। देखते देखते दोनों कब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, यह दोनों को पता ही नहीं चला। आज वे दिन दूर जा चुके हैं, लेकिन उस समय मन की स्लेट पर बने रानी की वह भावुक भोली मूरत अभी तक अधीर के दिल में ज्यों की त्यों है। अधीर कभी भी उसे नहीं भूल सका। मन में यादों को समेट वह दौड़ रहा था। उम्र का गणित अपने अपने तरीके से हल करने का प्रयत्न कर रहे थे। आज बहुत अरसे के बाद किसी काम से अधीर का बाढ़ आना हुआ था। बचपन की एक एक यादें उसे याद आने लगी। रानी के साथ बिताए उन पलों को याद कर अधीर के मन को थोड़ा सुकून मिल रहा था। आज भी अधीर रानी के साथ बिताए उन पलों को भूल नहीं पाया था। यादों में दिन कब बीत गया अधीर को यह पता ही नहीं चला। शाम को अधीर गंगा किनारे घूमने निकल गया। गंगा की रेत पर वह धीरे धीरे पांव बढ़ा रहा था। तभी मानो उसकी नज़रों ने ऐसा महसूस किया कि कुछ दूरी पर चल रही वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रानी है। यह महसूस कर अधीर के पांव खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे वह रानी ही है, ऐसा अधीर को विश्वास होने लगा। स्थान और समय को भूलकर अधीर चिल्लाया, रानी! वह ठहर गई, धीरे से पीछे मुड़ी। वह रानी ही थी। उसे देखकर ऐसा लगा मानो अधीर बचपन में लौट आया है। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। खुशी की लहरों को वह संभाल नहीं सकी। कितने दिनों बाद दिखे हो, कहाँ रहते हो, एक सांस में वह सब कुछ कह गई। आजकल मैं पटना में रहता हूँ, किसी काम से बाढ़ आया था, मैंने हंसकर जवाब दिया। चलो यह अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। मैं आश्चर्यचकित रह गया और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। रानी, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझा, आखिर तुम किस मंजिल की बात कर रही हो? तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो गई, तुमने जो चाहा वह तुम्हें मिला। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने मेरे गालों पर एक साथ कई तमाचे रसीद कर दिए हो। उसकी व्यंग भरी बातों का शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने भी हंसते हुए कहा, पैसा से खुशी नहीं खरीदी जा सकती रानी। आज भले मेरे पास धन दौलत और शोहरत है, पर दिल पर जो जख्म है उसे आज तक ठीक नहीं कर सका। फिर यह धन

दौलत मेरे किस काम का है? अधीर यह सवाल खुद से पूछो, आखिर इन सब बातों का जिम्मेवार कौन है? हाँ हाँ मानता हूँ, इन सब के लिए तुम मुझे जिम्मेवार ठहरा रही हो। मानता हूँ कि उस समय के जो हालात थे उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सका। जात पात ऊंच नीच इस समाज की देन है। यह समाज इंसान इंसान को बांट दिया है। मेरे घर वाले हम दोनों की शादी को तैयार नहीं हुए थे, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें और इस शहर को छोड़कर दूर जाना पड़ गया। लेकिन तुम्हारी यादों को आज भी दिल में बसाए जी रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वह एकदम रोने ही लगी। मैंने धीरे धीरे उसके रोने का कारण जान लिया। उसकी बातों से मैं व्यथित हो गया। मैं ही दोषी हूँ, यह सोचकर मेरा मन मुझे कचोटने लगा। मुझ में उसकी तरफ देखा नहीं गया। उसके साथ बिताए हुए लम्हे मेरी आंखों के सामने तैरने लगी। उनका यह आश्रय था, तेरे ही कारण हुआ, तू ही दोषी है। मेरा मन घबराया, मैं बेचैन हो गया। मुझसे यह सहन नहीं हो रहा था। आखिर मन में पक्का निश्चय कर मैंने कहा, रानी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वह आश्चर्य से मेरी ओर देखती हुई चौंकी, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने नज़र उठाकर मेरी ओर देखा, मेरी दृष्टि में उसे सत्य का दर्शन हुआ, फिर भी वह चुप रही। मैंने उसकी चुप्पी तोड़ी, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? जो गलती मुझसे हुई है उसे अब मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। बातें भरोसे की नहीं अधीर, यह पाखंड समाज हम दोनों को एक नहीं होने देगी। तुम जैसा सोचते हो, जैसा कह रहे हो, यह संभव नहीं है। रानी जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। गलती तो उन हैवानों को जिसने तुम्हारे साथ, फिर सजा की हकदार तुम नहीं, वह हैवान है जिन्होंने तुम्हारे साथ हैवानियत की। पाखंडी समाज को अगर सजा देनी है तो वह तुम्हें नहीं, उन हैवानों को दे। उन्हें समाज से बहिष्कृत करें। मेरे मन का सुशिक्षित विवेकशील मानव जाग गया। उसने मुझे वहां से भागने नहीं दिया। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार रानी को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया वालों से लड़ना क्यों ना पड़े। पर रानी ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर मिलने का वादा कर वहां से चली जाना चाहती थी, जबकि मैंने मन में ही उसे अपनाने का फैसला कर लिया था। फिर आज उसकी दिल की बात जाने बिना कैसे जाने देता? मैं फिर बोल पड़ा, मेरे सवाल का यह जवाब नहीं है रानी। मैं जानती हूँ तुम जो जवाब सुनना चाहते हो वह मेरी आत्मा जवाब देना नहीं चाहती। मैं तुम्हें अपने दुख के सागर में डुबोना नहीं चाहती। तुम क्यों अपनी जिंदगी मेरे खातिर बर्बाद कर देना चाहते हो? जिस तरह पहले तुम मुंह मोड़कर चले गए थे, आज भी मेरी जिंदगी से चले जाओ। मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अपना भी लोगे तो यह समाज तुम्हारे और मेरे पीठ पीछे तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगी। समाज उन हैवानों को गलत नहीं मानती, बल्कि वह मुझे बदचलन कहते हैं। बोलो, क्या तुम एक बदचलन लड़की के पति कहलाना पसंद करोगे? इसलिए मैं कह रही हूँ, तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। रानी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि काश यह हिम्मत मुझ में पहले आई होती तो शायद आज यह दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। अब मुझे लोगों की परवाह नहीं है। लोग क्या सोचेंगे या उनकी अपनी सोच है, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता हूँ। लेकिन हाँ, तुमसे शादी कर समाज के लोगों पर एक तमाचा रसीद जरूर कर सकता हूँ कि तुम जैसी लड़की को भी एक नई जिंदगी शुरू करने का अधिकार है। पर अधीर दुनिया वाले को नहीं जानते। जिस जग को मैं भूलने का प्रयास कर रही हूँ उसे तुम मुझसे शादी करके क्यों ताजा कर देना चाहते हो? मुझ जैसी लड़की को शादी करने का अधिकार इस समाज ने नहीं दिया है। तुम इसकी चिंता मत करो, बस शादी के लिए हाँ कर दो। इस पाखंडी समाज के लोगों को जवाब देने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। बस मेरे दिल के जख्मों पर अपनी रजामंदी की हाँ से घाव को भर दो। हम दोनों कल ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरी
जिद भरी बातें सुनकर

0: रानी धीरे से बोली, तुम बिल्कुल पागल हो। और शादी के लिए हामी भर दी। उसकी स्वीकृति पाकर मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और लोगों की भीड़ में उसे गले लगा लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे आज मुझे मेरी असली मंजिल मिल गई।
1: समाज को एक सही दिशा दिखाती हुई कहानी खट्टा मीठा अभी हम सुन रहे थे संजीव कुमार आलोक के द्वारा। इस कहानी के बाद अब समय है कि हम थोड़ा कविताओं का आनंद लें। तो आइए सुनते हैं विनोद कुमार चौधरी से उनकी कुछ
2: मेरी पहली कविता है पार्क की घास। प्रतिदिन कुचला जाता हूँ मैं नए नए आगंतुकों से, उनके किस्म किस्म के जूतों चप्पलों से, जाने कैसे कैसे कदकाठी के लोग कुछ अत्यंत भारी मेरे सीने को रौंदते चले जाते हैं। मैं उनका नाम भी नहीं जानता और जाने कितने आए और चले गए, मैं उन्हें पहचानता तक नहीं। कितने बच्चे मुझ पर धमाचौकड़ी करते रहते हैं और प्रेमी जोड़े तो अक्सर मेरे देह पर ही लेट जाते हैं। मैं उनके बदन की गर्मी महसूस करता हूँ, प्रेम में तपिश लिए उनके बदन सारे, और कई बार तो मुझे चादरों से ढककर पिकनिक मनाते लोगों को मेरे दम घुटने का अंदाज़ा तक नहीं होता। मैं थक जाता हूँ इस सप्ताह भर की लगातार लोगों की चर्या से, आपाधापी और बेचैन आहटों से, सूरज की किरणें और बरसात के थपेड़ों से भी मैं उतना क्लांत नहीं होता जितना कि इन मानवीय कृत्यों से। मैं चीखना चाहता हूँ इस उत्पात के विरुद्ध, मैं चीखना चाहता हूँ इस उत्पात के विरुद्ध, पर विवश हूँ, पार्क की घास हूँ। मेरी यही नियति है और कोई पगडंडी पर उगी हुई दूब नहीं या पहाड़ पर पनपी हुई जंगली विस्तार नहीं, मैं एक वृंत हूँ। चिड़ियाघर जैसा बंद किनारों में उगाई गई जीवन बेल, मैं मरमर कर मुस्कुराने को मजबूर हूँ, मैं पार्क की घास हूँ। अगली कविता है यथार्थ या आभास। लोग हैं जो हमेशा नेट से जुड़े रहते हैं, 24 घंटा हर लम्हा, या नेट उनका एक समाज है। समाज से ज़्यादा रंगीन, ज़्यादा चटकीला, ज़्यादा हसीन, जब वे कनेक्ट नहीं होते दम घुटता है उनका। यथार्थ बर्दाश्त के बाहर है, वे अकेले हो जाते हैं, टापू की तरह, समंदर में प्यासे की तरह, अवसाद के शिकार, जैसे समाज से दूर हो गए वो। दुनिया से कटे महसूस करते हैं, दुनिया से जुड़े रहना, वर्ल्ड वाइड वेब में रहना उनकी मजबूरी है। उनके बगैर वे पर कटे पंछी हैं, कहीं कोने में दुबके हुए मेढक शायद, नेट उनकी दुनिया है, ये हाथ हेलो, लोल ट्रोल, वायरल डिलीट, लिंक बॉक्स, चैट बॉक्स, लाइक कमेंट उनके जीवन के अंग बन उनके स्वभाव में घुलते जा रहे हैं। उसके बगैर इस सारी दुनिया में उनका जी नहीं लगता, आभासी दुनिया उसका स्वप्न नहीं यथार्थ है, क्योंकि यथार्थ भी एक स्वप्न है, आभासी दुनिया हमारी दुनिया का नया अवतार। अगली कविता है मैं नहीं जानता। जाने कितने फूल खिल रहे मैं नहीं जानता, कितने अंकुरों के फलक पंखुड़ियों से खिसक कर फैल गए, कितने फल पक रहे पेड़ों पर, कितनी तितलियां उड़ उड़ कर उनके डालों पर तैर रही मैं नहीं जानता, कितने फसल तैयार हो रहे हैं खेतों में, मेड़ों पर घास का फैलाव बढ़ता हुआ, कितने वृक्ष अपनी पुरानी काया पर आते जाते उड़ते बैठते पंछियों का साक्षी बनते मैं नहीं जानता, और कितनी मिट्टी घुल चुकी धार में, कितने पर्वत रेत बन गए, सोन के गर्भ में चले गए, कितनी सुगंध कलियों की फिजा में बिखर चुकी, कितना प्रेम बह चुका रिश्तों में, कितने हास्य लास्य करुणा रुदन वेदना, कितनी लीला माया राज ज्ञात नहीं। रात सोते भर में ही जीवन मैदानों में भर गया, भर गए गीत से हृदय, झकोरे सारे रच बस गए वन उपवन मैं नहीं जानता, कितनी रातें रीत गई चंदा चकोरी की कहानी, निस्तब्ध आकाश की वना

कितनी निहारिकाएं सो रही मैं नहीं जानता। तीसरी अगली कविता है मन का आकाश। वृक्षों पर पंछी का कलरव है, शाम शांत उदास है, आकाश साफ है सिवा बादल के कुछ बूंदों के, शाख टहनियों पर हरितिमा के साथ सांध्य प्रकाश है। पत्ते मूक स्थिर साक्षी हैं, गगन में कैसा

प्रतिमा के साथ सांध्य प्रकाश है। पत्ते मूक स्थिर साक्षी हैं, गगन में कैसा प्रशांत रंग, मानो समंदर सा आसमान, नीला विस्तृत अतल गहरा अनंत, अध्येता का साम्राज्य। पुष्प कुछ बोल नहीं रहे, गुलाब चुप है, पलाश चुप, शाम की लकीरें चेहरे पर मेरे मन पर उतरती हैं, शाम की लकीरें मेरे चेहरे पर मेरे मन पर उतरती हैं। झिलमिल प्रकाश बेला, कोई कोलाहल बसता नहीं मन में, कोई कलर अब रिझाता नहीं, मन शून्य भाव निश्चल, मन सा आकाश किसी अस्ताचल सा रंगता नहीं, मन का विस्तार भरता नहीं किसी उत्सव सा, मन का सैलाब डुबोता नहीं कोई प्रेम दीप, मन है कि प्रसरित है सुबह के कोहरे सा निमीलित, मन है जो प्रसरित है सुबह के कोहरे सा निमीलित। अगली कविता का शीर्षक है जीवन गीत। चिमनी से धुआं निकलते घर से लगता है घर जिंदा है, चिमनी से धुआं निकलते घर से लगता है घर जिंदा है, पगडंडियों पर मरी हुई घास से कि पगडंडी जिंदा है, बुहारे हुए फर्श से कि कमरा जिंदा है, दिया बाती से आते हुए शोर से, खिड़की के पल्लों से, सूखते हुए कपड़ों से, उड़ती पतंग से कि शहर जिंदा है, खेल के मैदान से, सागर तट से, जगमग रोशनी से, बच्चे की किलकारी से, चहकती धूप से, परिंदों की उड़ान से, खुले आसमान से, नीले वितान से कि नभ में हरियाली है, खेत से खलिहान से, मवेशी के बथान से, गिलहरी खरगोश से, पत्तों के घटा घोप से, सड़क के मोड़ से, तारों भरी रात से, रिमझिम बरसात से, ज्वार और भाटों से, गिरजा घर के घंटों से, मंदिर के द्वार से, प्रणय की रात से, नदी नीर प्रवाह से, प्रेम की सौगात से, लगता है जिंदा है यह शहर, खेत पृथ्वी पवन आसमान देश, लगता है जिंदा है यह शहर, खेत पृथ्वी पवन आसमान देश। अगली कविता का शीर्षक है रचनाकार। कभी कविता को कविता कहते डर लगता है, पता नहीं वह कविता हो न हो, कभी कविता को कविता कहते डर लगता है, पता नहीं वह कविता हो न हो, शायद कोई गल्प गद्य बातचीत जुमला फर्द बयान कोरी गप निश्वास मामूली भटकन उद्गार कोई हो, या फिर मात्र कुछ पंक्तियाँ इधर की उधर की, या पति पत्नी की बात प्रेमी की मुलाकात से छूटी हुई गपशप, या कोई तीर कमान प्रत्यंचा पर चढ़ी हुई जबान, या यूं ही कुछ शब्द के मेल जोल बैर भाव प्रीत प्रेम के निःशब्द। और कभी डर लगता है रचना भी कहते, क्योंकि मूलतः हम नहीं रच सकते, क्योंकि मूलतः हम नहीं रच सकते जो बहुत पहले रचा जा चुका है। अगली कविता का शीर्षक है याद की याद। जब इस जग से विदा हो जाऊंगा तो क्या इस दुनिया की याद सताएगी, जैसे घर की याद सताती है जब दिल्ली चला जाता हूँ, या जब सुदूर हिमालय के गांवों से होकर गुजरता हूँ, क्या याद आएंगे रिश्तेदार संबंधी परिवार दोस्त पालतू कुत्ता प्लूटो, उसी तरह जैसे एक जगह छोड़ दूसरी जगह जब जाते हैं। जब इस जग से विदा हो जाऊंगा तो क्या इस दुनिया की याद सताएगी, एक पेड़ पौधे को छोड़ दूसरे पेड़ों के बीच बसने, आकाश की धूसर उदासी जब तपती है, ग्रीष्म की दोपहरिया जब बियाबान घोलती है मन में, जब सांसों से प्रेम बिछड़ जाता है, जब नीम बबूल के वृक्ष के कांटे हवा में चुभते हैं, जब सेमल के हरे पत्ते गुलमोहर के साथ ऊँगते हैं, क्या याद आएंगे दुनिया से जाने के बाद। अगली कविता का शीर्षक है

0: बहती नदी, मेरे अंदर बहती है एक नदी, जो भाव प्रेम वेदना निजता को अपने पेटी में उड़ेलती जाती है। नदी जो भाषा अर्थ अन्वित समष्टि वो समाविष्ट कर डालना चाहती है अपने भ्रूण कक्ष की डिम्बित दीवारों के बीच। नदी जो भाषा अर्थ अन्वित समष्टि को समाविष्ट कर डालना चाहती अपने भ्रूण कक्ष की डिम्बित दीवारों के बीच, जो मूल्य संस्कार प्रतीति राग पीड़ा के तटों को छूकर बहती है। नदी अपने आप से विद्रोह करती है, बिखर जाती है, तटों को छोड़ उमर पड़ती है, उफनती है, भंवर खाती, गहरी बहती, बहा ले जाती है। नदी अपने आप से विद्रोह करती, बिखर जाती है, तटों को छोड़ उमर पड़ती, उफनती है, भंवर खाती, गहरी बहती, बहा ले जाती है जीवन के सभी सत्य उपादान उत्कर्ष। फिर एक खालीपन बसता जाता है, नदी बह चुकी है, नदी बह चुकी है जीवन उत्सर्ग से, निकल चुकी है भगीरथी के मलयज घाटियों से होकर, समेटने लगी है धरती का साम्राज्य, समुन्दर से अभिसार करने लगी है, क्षितिज की भी पावन रेखा के पार तक अपने अस्तित्व में खोने लगी है नदी। समुन्दर से अभिसार करने लगी है, क्षितिज की पावन रेखा के पार तक अपने अस्तित्व में खोने लगी है नदी। अगली कविता का शीर्षक है प्रतिध्वनि। अब उसकी आवाज़ में आत्मीयता की महक नहीं, न उस प्रेम की सुगंध, न हृदय के ज्वार का शोर, न कंपन प्रेम तरंग का, न परावर्तन उस पीयूष संसार का। अब उसकी आवाज़ में आत्मीयता की महक नहीं, न उस प्रेम की सुगंध, न हृदय के ज्वार का शोर, न कंपन प्रेम तरंग का, न परावर्तन उस पीयूष संचार का। अब उसकी आवाज़ फीकी शुष्क जीवनहीन ध्वनि मात्र है। अब उसकी आवाज़ फीकी शुष्क जीवनहीन ध्वनि मात्र है, जहाँ अब जीवन नहीं खनकता, हृदय की सौंधी नरमाहट नहीं, न नैनों में आलिंगन है, न उन्माद विरह का। एक समाप्त होती निचाट धूप है, एक समाप्त होती निचाट धूप है उसकी बातों में, जिसमें सब कुछ सूख गया है, जिसमें सब कुछ सूख गया है।
1: इन्हीं कविताओं के साथ श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, परंतु जाने से पूर्व आपसे एक निवेदन कि यदि आप हमारे अंक से जुड़े कोई भी सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@aarpatna.gmail.com। तो श्रोताओं, अपने जीवन में साहित्य को स्थान दीजिए, नई कहानियों कविताओं को पढ़िए और थोड़ा लिखना भी प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जब आप साहित्य से जुड़ेंगे तो संवेदना आपके अंदर खुद ही समाहित होने लगेगी। तो श्रोताओं, अब प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ अपनी साहित्यिक साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शतदल। क्षमा कीजिएगा, साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे थे शब्द शिल्प। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात।

कुछ यादें जख्म को हरा कर देती है, दर्द देती है, तो कुछ यादें खुशियां भी दे जाती हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है। कारण जो भी हो, मगर हमारे गुजरे कल को आज में जिंदा रखती है। जी हाँ श्रोताओं।

आज का थीम हमने लिया है यादें, तो चलते हैं और कुछ याद भरे प्यार भरे लम्हों, कुछ गम भरे लम्हों को हम याद करते हैं कुछ इस तरह से। तू याद बहुत आया हर शाम के बाद, इस डूबते सूरज की कसम, इस दिल पे कोई नाम नहीं लिखा तेरे नाम के बाद।

इतनी यादें तेरी पर तू मेरे पास नहीं, इतनी बातें हैं करने को मगर तू मेरे साथ नहीं। अब तो आ जाओ मिटा दो ये फासले, रह नहीं पाएंगे एक पल यूं जुदा तेरे बिना।

यादों की कीमत वो क्या जाने जो खुद यादों को भुला दिया करते हैं। यादों का मतलब तो उनसे पूछो जो यादों के सहारे सांस लिया करते हैं।

तेरी यादों को पसंद आ गई है मेरी आँखों की नमी, हंसना चाहूँ तो रुला देती है तेरी कमी।

आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी। जब हम न होंगे तब हमारी बातें होंगी। कभी पलटोगे जिंदगी के ये पन्ने, तो शायद आपकी आंखों से भी बरसाते होंगी।

0: जुबान से तुम्हें कह सकते नहीं, इसलिए हमेशा फरियाद करते हैं। जब भी दिल धड़के तुम्हारा जोर जोर से, समझ लेना हम तुम्हें दिल से याद करते हैं।
1: वो जब याद आ

यादों ने जब करवट ली तन्हाई में, तेरे पास होने का वो एहसास याद आया। प्यार की सौगात मुझको जो तू दे गया, तेरी जुबां का हर वो इजहार याद आया।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में शर्मीली फिल्म का ये गीत। नीरज की लिखी इस रचना को तर्ज दिया है एस डी बर्मन ने।

0: यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा
0: यहाँ

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है उपकार फिल्म से मुकेश की आवाज में। गीत लिखा है कमर जलालाबादी ने और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दो बदन फिल्म का ये गीत। शकील वदानी की लिखी इस गीत को संगीत दिया है रफी ने।

PNR at 90. श्रोताओं, मेरे जीवन साथी फिल्म का यह गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार हैं मर्जू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

श्रोताओं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं शक्ति फिल्म का ये गीत। शब्द हैं आनंद बख्शी के और इसे संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: श्रोताओं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गायस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से

0: ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय जूलियट अरकेल। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata.